0: और 4 गेंद में 3 विकेट पर 157 रन बनाकर जीत हासिल की। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 32 गेंदों में 82 रन बनाए और अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: इसके अलावा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब भी जीत लिया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने भारत की मेजबानी में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने ब्रिक्स नेताओं का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, जय हो दिल्ली, अब पेकिंग में मिलेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हिंदुस्तान में है। पत्र लिखता है, खनिजों को हथियार न बनाए। अमर उजाला की सुर्खी है, ब्रिक्स का अब साझा लक्ष्य सर्वजन हिताय। राजस्थान पत्रिका ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट लिमिटिंग ओवरशूट के हवाले से लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग की पहली लड़ाई हारे, दशकों तक रहेगा ज्यादा गर्मी का दौर। लोकसत्य ने स्वदेश लौटने पर विचार कर रहे लोगों पर लिखा है, पश्चिमी सपनों पर वीजा की कैंची, भारत लौट रहा टैलेंट। अमरीका यूके कैनेडा से शुरू हुआ रिवर्स ब्रेन ट्रेन। दैनिक भास्कर ने सोशल मीडिया अटेंशन पर लिखा है, डिजिटल दौर में शॉक कंटेंट का खेल जिंदगियां बर्बाद कर रहा। हिंदी दिवस पर आज कई समाचार पत्रों ने विशेष आलेख प्रकाशित किए हैं। हिंदुस्तान ने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, निबिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल, प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश की धड़कन है हिंदी।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए ब्रिक्स नेताओं का आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। आज हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। भारत ने ओमान तट पर व्यापारिक पोत पर हुए हमले की निंदा की। और क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर रिकॉर्ड 8वीं बार महिला एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi thanks BRICS leaders for making Delhi summit productive and outcome-oriented. Union Home Minister Amit Shah says BJP-led NDA governments in 21 states will introduce uniform civil code before 2029. Festival of Ganesh Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion. Hindi Divas being celebrated today, Raj Bhasha Awards for 2025-26 to be presented at Mumbai Conference. India condemns attack on merchant vessel off Oman coast, 13 Indian crew members rescued. Dheeraj Boma Devra scripts history by becoming first Indian male recurve archer to win gold medal at World Cup final in Mexico. And in cricket, India thrashed Sri Lanka by 72 runs to win record extending 8th Women's Asia Cup title.

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी

0: मसाओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: क्या मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड।
3: चाय चाय चाय
4: बिंदास
1: मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

नमस्कार, मुरादाबाद, सुप्रभात। मैं हूं आपका आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। आज 14 सितंबर है, गणेश चतुर्थी की पावन पर्व की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले आपको गणपति बप्पा मोरिया। गणपति भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख शांति और खुशियां बनी रहे। और कहते हैं ना, इंसान इस दुनिया में आता है, कुछ वक्त बिताता है और फिर आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है सिर्फ अपनी यादें। तो आज इसी खूबसूरत सुबह की शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे ही गीत के साथ। श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ और यह है एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आप सुन रहे हैं। 8:20 हो गए, मंडे है, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, एक नए हफ्ते की शुरुआत है। और जब एक नया हफ्ता आता है तो एक नई उम्मीद जुड़ जाती है पूरे हफ्ते से कि इस हफ्ते कुछ तो नया करना है, कुछ तो बेहतर से बेहतरीन करना है और कुछ चीज़ें हमें अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छे प्लान्स बनाने और उन पे काम करना है, उन पे डिस्कस करके उन्हें एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ना है। कुछ ऐसे ही थॉट्स अगर आपके मन में भी आज की सुबह आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं थॉट्स के साथ आगे बढ़िए। एक खूबसूरत नगमा मैंने आपके लिए निकाल दिया है अपने रेडियो सेट से। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में इस गाने को सुनेंगे आप मेरे साथ और ऐसे ही करेंगे आज के सफ़र की बेहतरीन शुरुआत। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। और दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ इंसान के पास रह जाती है, वो है मैं, मेरी यादें। इसीलिए आज जो वक्त है ना, उसको अच्छे से इंजॉय कीजिए, अच्छे से बिताइए, क्योंकि कल सिर्फ यादें होंगी, इंसान नहीं। सुन रहे हैं आप बिंदास मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर में वापस लौट कर आएंगे। आइए करते हैं इस गाने से शुरुआत आज के सफर की, बेहद ही खूबसूरत गीत, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अपनापन का गीत है, एंजॉय करिए, वॉल्यूम बढ़ाइए और जुड़ जाइए मेरे साथ आज की सुबह। सुप्रभात।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
3: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
4: लेकिन सोनिया
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
4: नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन।
5: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

एक रिश्ता फिल्म का नाम बहुत ही खूबसूरत था, एक गीत, इसको सुनते हुए हमें और आप आगे बढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग, 8:32 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को बहुत बहुत स्वागत है आपका, लेडीज एंड जेंटलमैन। और देखिए, 3 सालों से हम आपकी सुबह को बिंदास बनाते हैं इस स्टेशन पे, जहां ढेर सारी बातें होती हैं और तमाम सारे लिसनर हमारे साथ जुड़ते हैं हर सुबह, और इतनी सारी नई नई बातें होती हैं यार। गुड मॉर्निंग,

0: Absolutely. भाई मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जब कुछ लोग अपने ऑफिस निकलते हैं तो कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान होती है और कुछ लोगों के दिमाग में टेंशन, यार आज फिर मंडे आ गया है, फिर से ऑफिस जाना है, फिर से बहुत सारे काम निपटाने हैं। एंड फाइनली कुछ कुछ जगहों पे तो छुट्टी भी है, बिकॉज आज गणपति जो आ गए हैं घर पर, है ना। कई घरों में अभी पूजा की तैयारियां चल रही होंगी, कुछ घरों में अभी बप्पा को जो है विराजमान किया जाएगा और बहुत सारी पूजा अर्चनाएं, तमाम सारी चीजें होगी, प्राण प्रतिष्ठा और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी शुरू होने वाली है ना। तो आज तो शाम की बहुत ही भव्य आरती होने वाली है आपके यहाँ पर, मुझे पता है। चलिए पापा अगर आपके घर आए हैं तो जरूर सारी आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे और सारे विघ्नों को जरूर हरेंगे। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई साहब मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, देखिए दिन कैसा जाएगा ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन दिन की शुरुआत कैसे करनी है ये हमारे हाथ में होता है। तो बस एक अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ कीजिए अपने दिन की शुरुआत। और वैसे भी आज तो गणेश चतुर्थी है, शुभ दिन पर एक छोटा सा काम जरूर कीजिए, पुरानी टेंशन पीछे छोड़िए, भगवान गणेश का नाम लीजिए और खुद से कहिए आज कुछ अच्छा जरूर होगा। जब आप ये मैनिफेस्ट करेंगे, जब आप ये पॉजिटिविटी के साथ बोलेंगे तो डेफिनेटली आज कुछ आपको अच्छी गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी। अपने जहन में, अपने दिमाग में अच्छा सोच के घर से बाहर निकले। और आज बस इतना ही कहना चाहता हूं, जब आप अच्छा सोच ही रहे तो एक अच्छी सी मुस्कान भी अपने चेहरे पर रख के अपने ऑफिस पहुंचिए। देखिए आज की शुरुआत अगर अच्छी होगी तो यकीन मानिए पूरा हफ्ता भी अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं मुरादाबादी से, इसी बात पे कुछ मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं। रामगंगा बिहार से हमारे साथ जुड़ी हैं सरिता जी, लिखती हैं आनंद भाई गुड मॉर्निंग, आप कैसे हो, आपकी आवाज के साथ सुबह की चाय का मजा ही अलग होता है। ऑफिस निकलने के लिए तैयार हो रही हूं और आज का दिन अच्छा ही जाएगा यही सोच के मैं भी निकल रही हूं और आपकी पूरी टीम को गुड मॉर्निंग। रोहित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त, ये मुझे मैसेज करते हैं काशीराम से, लिखते हैं आनंद जी कैसे हालचाल हैं आपके, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ मेरे भाई। एंड ये लिखते हैं कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, किसी भी काम की शुरुआत जो है हमेशा कल पर नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता कल हो ना हो, इसीलिए आज जो करना है वो अभी से करना है। वेरी नाइस यार। पूजा जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं गायत्री नगर से, लिखती हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग सुप्रभात, सुबह सुबह आपका शो सुनकर दिन की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है। गणपति बप्पा मोरया, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू पूजा जी, आपको भी। कटघर से हमारे पास मैसेज पहुंचा है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, लिखते हैं हैप्पी गणेश चतुर्थी, थैंक यू सो मच। अमित जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मंझोला से, लिखते हैं आनंद भाई रोज आपकी बातें सुनते हैं, दिन की शुरुआत अच्छे से करते हैं, बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शालिनी जुड़ चुकी है मेरे साथ हनुमान नगर से, लिखती हैं घर में काम करते हैं, दिन की शुरुआत ब्रेकफास्ट बनाने से होती है और जब हम रेडियो पे आपको सुनते हैं और आपके गाने सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है, क्या बात है। इतने मैसेजेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह सुबह आप लोग इतनी प्यारी प्यारी पॉजिटिव बातें करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसी बात पे एक और खूबसूरत गीत आपके रेडियो सेट में निकाल रहा हूं एंड वापस आएंगे तो फिर आपसे कुछ और खास बातें करेंगे, आज के दिन के बारे में बात करूंगा कि वो विशेष है आज का दिन, क्या कुछ खास है आज के दिन में, इस पे हम जरूर चर्चा करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और बाकी अगर आप भी मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई मैसेज हम तक छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं 9837896896 पे, अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं 9837896896 पर। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आज की सुबह आपके रेडियो सेट पे निकाल रहा हूँ जो कुछ तारीफें करेगा आज की मॉर्निंग आपकी। बहुत ही प्यारा गाना है, आई लव दिस सॉन्ग। आज की सुबह अगर आपने किसी को ये बोल दिया ना बॉस तो मजा आ जाएगा। क्या कह रहे हैं पाजी, जरा सुनते हैं इनके दिल की बात, आप भी कुछ ऐसी तारीफ कर दो।
1: बहुत खूबसूरत हो
0: अभिजीत भट्टाचार्य,
1: खूबसूरत
0: साथ में नीरज पंडित,
1: बहुत खूबसूरत हो
0: सुबह सुबह,
1: खूबसूरत हो,
0: ऐसी कोई तारीफ कर दे तो दिन बन जाता है। म्यूजिक है जतिन ललित का, बहुत ही खूबसूरत गाना है, इसी को सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं और अभी लौट कर आएंगे तो आपसे और भी बातचीत करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: Das Morning. Das Morning.
1: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: उदित नारायण, साधना सरगम की बहुत प्यारी आवाज, जो जीता वही सिकंदर का ट्रैक आपके रेडियो सेट पे मंडे की मॉर्निंग निकाल दिया मैंने।
1: चाहे तुम कुछ ना कहो,
0: व्हाट अ सॉन्ग,
1: मैंने सुन लिया।
0: सच में यार, कुछ गाने ना दिल को टच कर जाते हैं। जोशीला मंडे, आप सुन रहे हैं आनंद को जी। चलिए पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में, क्यों स्पेशल है। फिलहाल घड़ी मिला लो, घड़ी घड़ी वक्त बता रही है 8:48, 12 सेकंड, 14 सितंबर की सुबह। आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप। चलिए पहले बात कर लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों के बारे में, क्या कुछ खास है आज की 14 सितंबर की तारीख में। तो आपको बता दें, डेनमार्क में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता मिली थी सन 1770 में आज के दिन, श्रोताओं। और आपको बताते चलें, आज के दिन रूस आधारित तौर पर एक गणतंत्र घोषित हुआ था सन 1917 में आज के दिन। और लूना चंद्रमा 2 के सहत पर जो है सहत उतरा आज के दिन, श्रोताओं। और ये चंद्रमा की आपको पता चले शतक तक पहुँचने वाला मानव निर्माता पहली और ये वस्तु थी जिसमें काफ़ी ये अंतरिक्ष स्पर्ध की शुरुआत जो थी वो आज के दिन 1959 को की गई। और आपको बताते चले आज के दिन खनिज तेल उत्पाद देश ने मिलाकर ओपेक की स्थापना की थी सन 1960 में आज के दिन। और एक और खास चीज़ आज के दिन हुई जिसने इतिहास को थोड़ा सा यूनिक बना दिया।
2: पहला नशा
0: तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, नशा अगर कामयाबी का हो, नशा अगर सक्सेस का हो, कुछ पाने का हो, तो यकीन मानिए वो नशा आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बताते चले पैरा ओलंपिक सन 2016 में भारत के अब तक कुल 4 पदक हुए सन 2016 में, श्रोताओं। आज के दिन 14 अगस्त को, चलिए ये तो आज के दिन से जुड़ी बातें हो गई। और आपको बताते चले साजन प्रकाश ओलंपिक के लिए सीधी योग्यता हासिल करने वाली पहली भारतीय तैरक हैं। 1993 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन। इसके अलावा गोपाल दास परमनंद जी का जन्म हुआ आज ही के दिन सन 1914 में। और राजकुमार कोहली फिल्म निर्माता है, 1930 में इनका भी जन्म हुआ था आज ही के दिन। और रोबिन सिंह जो भारतीय क्रिकेटर है, 1963 में आज के दिन 14 सितंबर को इनका भी जन्म हुआ, श्रोताओं। एंड मोहन थपलियाल, इनका भी जन्म हुआ था जो कथाकार है, 1921 में आज के दिन। ज्ञानचंद घोष जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा काफी पॉपुलर पर्सनालिटी रही, आज के दिन इनका जन्म हुआ 1894 में। ये थे आज के दिन से जुड़ी कुछ विशेष बातें। आपको बताते चले आज के दिन काफी कुछ मनाया जाता है, जैसे राष्ट्रीय हिंदी सप्ताह दिवस आज मनाया जाता है, हिंदी दिवस आज सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 सितंबर को। इस पर बात करने वाले हैं जरा सी देर में, तो अभी लौट कर आता हूँ। आप ऐसे ही ट्यून रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। मंडे की सुबह है, वेरी गुड मॉर्निंग।

0: मेरा नाम आनंद है और मैं कार्यक्रम करता हूँ कौन सा बिंदास मॉर्निंग। अब बिंदास मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहेंगे ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यार, मतलब बता पाना क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। एनीवेज वेलकम बैक, आज हिंदी दिवस है यार, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की मतलब वो भाषा जिसपे हमें बहुत गर्व होता है, बहुत प्राउड होता है ना। भले ही आजकल हम एडवांस दिखने के लिए इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आई नो दैट, जैसे हम भी करने लगते हैं कभी कभी, छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स से हम थोड़ा सा स्मार्ट दिखते हैं ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। आप जितना शुद्ध हिंदी में बात करोगे, जितना आप यू नो साफ और क्लैरिटी के साथ बात करोगे, मुझे लगता है आप उतनी कनेक्शन और कनेक्टिविटी बिल्ड कर पाओगे। यू नो दिस इज़ माई थिंक, ऐसा यू नो मेरा ऐसा मानना है, सोचना है। मैं भी प्रयास करूंगा कि आज हम हिंदी में आपसे टॉक करें। एंड और अभी फिलहाल बड़ा मुश्किल हो रहा है यार, अभी फिलहाल मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मतलब अगर आपको अपने विषय में, अपने बारे में, अपने वॉइस नोट हिंदी में बोल के अपने परिचय को देना हो तो आप कैसे देंगे? जैसे मेरा नाम आनंद है, मैं FM मुरादाबाद में कार्यक्रम करता हूँ और मैं रेडियो उद्घोषक हूँ, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम मतलब कार्यक्रम होस्ट करता हूँ, प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूँ, तो यू नो हिंदी में अगर हमें आपसे कुछ बुलवाना हो सो आप उसको कैसे यू नो कैसे बोलोगे, ये आपका काम है। मतलब मैं आपको ये काम दे रहा हूँ कि हिंदी में आपको कौन सी चीज़ें जो हिंदी की बहुत पसंद है, कौन से शब्द है जो हिंदी का आपको बहुत अच्छा लगता है, एंड आपके लिए हिंदी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है आप मुझे बताओ यार। वैसे तो हम सभी इंडियंस के लिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हिंदी के कौन से वर्ड्स है जो आपको बहुत पसंद आते हैं, एंड क्या चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है अपनी हिंदी भाषा में, अपनी मातृभाषा में क्या चीज़ें जो आपको बहुत अच्छी लगती है आप मुझे बता सकते हैं। और अगर अपना वॉइस नोट में अपना परिचय हिंदी में दे दें आप तो मज़ा आ जाएगा। जैसे मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, हिंदी में आपको बोलना है बेसिकली, दिस इज़ योर चैलेंज। अगर आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं तो डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हिंदी दिवस पर कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आजकल पता नहीं क्यों लोगों को लगता है हिंदी बोलेंगे तो हमारी मतलब पता नहीं क्यों लगता है बहुत लोगों को मेरी वो वैल्यू नहीं होगी, मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मैं ज़्यादा एडवांस दिखूंगा। आजकल एडवांस के चक्कर में, स्मार्ट के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपने रिचुअल्स, अपने कल्चर्स एंड बहुत सारी चीज़ों से हम दूर भागते जा रहे हैं। Is it? You getting my point? And I'm sure मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। Definitely मंडे की सुबह है तो अच्छी बातें तो करनी बनती हैं। हिंदी दिवस के मौके पे आप क्या कहना चाहते हैं, कौन सा वर्ड है जो हिंदी का आपको बहुत पसंद है, जो भी आपको लगता है वो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं मैसेज करके 9837896896 पर। अपना वॉइस नोट भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं। विक्की सागर मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग, और इसी बीच हेलो सर कैसे हाल चाल है, माई नेम इज़ प्रिंस, हाई प्रिंस गुड मॉर्निंग। अमरोहा से मेरे साथ नेहा जी जुड़ी हैं, नमस्ते आनंद भैया कैसे हैं आप, हमारे ओके हमारे पापा का ये फ़ोन हमारे पास है और छोटे फ़ोन पर सॉन्ग सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, ऑल राइट जी, एंड जानकारी भी बहुत अच्छी देते हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू सो मच आपके इस मैसेज के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। 9 बजने को हैं, जल्दी से आप मुझे हिंदी दिवस के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं मेरे को 9837896896 पर। और जब तक आपके मैसेज आते हैं एक और हम प्यारा सा गीत सुन लेंगे, और अगर आप हिंदी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है 9837896896 पे। आज हिंदी दिवस के मौके पर अगर आपको कुछ हिंदी में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे?
1: कोई उसको पिलाने वाली,
0: ये हिंदी में बोलेंगे पाजी,
1: चाहे गोरी हो या काली हो,
0: ओह माय गॉड,
1: सीने से लगाने वाली हो।
0: आप मुझे मैसेज करना आज हिंदी दिवस के मौके पे कुछ कहना चाहते हो, कौन सा हिंदी का शब्द है जो आपका बड़ा फेवरेट है आप मुझे बता सकते हो मैसेज करके आज की मॉर्निंग। मैं लौट कर आ रहा हूँ थोड़ी देर में।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
6: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
0: अरे आनंद इज बैक।
7: एग्जैक्टली बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक एंड मंडे की सुबह एंड दिस इज माय लास्ट आवर। पता नहीं चलता यार कैसे टाइम इतनी जल्दी निकल जाता है बाबा। अभी तो लगता है मेरी एंट्री हुई थी इतनी जल्दी, टाइम कैसे भाग रहा है, कोई तो इस टाइम को पकड़ लो यार। और कल ही तो संडे था, मंडे वापस आ गया, पता नहीं चल रहा। हेलो जी, वेलकम बैक। है आज 14 सितंबर की सुबह हो गई है, जहां पर ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं और बहुत सारे घरों में गूंज रहा है गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आज की इस घंटे की शुरुआत अग्निपथ के इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ। पप्पा का बर्थडे है यार। एफएम मुरादाबाद की पूरी इंटायर फैमिली की ओर से आप सभी को विघ्न हर्ता कहा जाता है गणपति बप्पा को। मुझे यकीन है आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम श्योर बप्पा आए हैं तो वो जरूर हरेंगे आपके सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को हरेंगे। और हम भी इसी बात के साथ चलती है बप्पा का ध्यान धरेंगे।
8: मैं तेरा नाम है,
7: ओए होए
8: परवाही क्या, उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है।
7: जरा सी देर में आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। और अभी आने वाले कुछ अच्छे गाने,

0: से बढ़कर एक गाने मैंने आपके लिए लाइन अप कर रखे हैं। आज जो आपने पहना है ना परजाई जी, बड़ा कमाल लग रहा है।
1: तेनू सूट सूट कर
0: एग्जैक्टली
1: ओ तेनू सूट सूट कर दा,
0: क्या बात है
1: सूट कर दा।
0: जी आप भी हैंडसम लग रहे हो। कहाँ जा रहे हो वैसे आप? बहुत सारी जगह पर तो पता है आज आपको छुट्टियां भी हैं, क्योंकि देखो महाराष्ट्र का तो बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल है, तो ऐसे में ऑफ कोर्स वहां तो छुट्टी होना बनता है यार। लेकिन यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता किसी की छुट्टी होगी, लेकिन कोई गल नहीं जी। पैसे नहीं है अभी, सही करो यार। ये आने वाले धाकड़ गाने जरा सी देर में, मंडे की सुबह है ऑफ कोर्स यार, अच्छे गानों से महफिल सजती है बॉस।
2: तो सुबह
0: ये गाना आप सभी के लिए जरा सी देर में।
2: हो तो शाम हसी है एक दुनिया सपनों सी।
0: बस आप इंतजार करिए आने वाली कुछ अमेजिंग गाने जो आपके मंडे को और भी फैबुलियस बना देंगे यार। आज की सुबह मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, गणेश चतुर्थी का दिन है, बहुत ही प्यारा दिन है। जब भगवान गणेश का नाम लेकर हम दिन की शुरुआत करेंगे तो यकीन मानिए सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर से गणपति बप्पा मोरिया, आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी।

0: पकौड़े में तो क्या थी।
1: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: वेलकम। देखिए कुड़ी तो बहुत कुछ कहती है यार, लेकिन हर बार कुड़ी की बात थोड़ी सुनी जाती है। हाँ जी बिल्कुल, सुननी तो वैसे जरूर चाहिए यार। वेलकम बैक है वंस अगेन। 9:14 हो गए, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6। एग्जैक्टली मंडे की सुबह है, 14 सितंबर की तारीख। बहुत सारे हमारे श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। थैंक यू सो मच अपने इतने वंडरफुल मैसेज पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं, आपके मैसेजेस के लिए दिल से आभार है। शुक्राना करना तो डेफिनेटली बनता है, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ढेर सारे मैसेज आज की मॉर्निंग पहुंच रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हिंदी दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है, और हिंदी हमारे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है, हमारी खुद की एक पहचान भी है ना। तो हम हिंदी को बोलने से भी काहे कतराते हैं भैया। आज 14 सितंबर इतिहास के पन्नों में ये तारीख इसीलिए खास है क्योंकि आज के दिन हिंदी को राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी आज के दिन हमारी भाषा और हमारी पहचान को याद करने का भी दिन है। और इसी के साथ आज आप सभी को पता है हम इसी दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अपनी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आज के दिन हम भैया अपनी हिंदी को दिल से सलाम करते हैं, और इसी पर बात करने के लिए हमारे कॉलर भी जुड़े हैं। मैंने कहा था हिंदी में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हिंदी के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, आपका कोई फेवरेट वर्ड है हिंदी का, कौन सा शब्द है जो हिंदी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आइए जरा बात करते हैं भाई से, कौन कहां से जुड़े हैं। हाय नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है?
1: बेहतर, काफी बेहतर।
0: चलो बहुत अच्छी बात है, बेहतर ही रहने चाहिए। बताइए जी कहाँ से कॉल किया है आपने, आपका नाम? सर आपकी वॉइस सुबह सुबह बहुत ब्रेक हो रही है। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, इनका कॉल तो हो गया है डिस्कनेक्ट, लेकिन कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 9837896896 पे। एंड सच में इतने वंडरफुल मैसेज आपने पहुंचाए हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमारे पास शिखा ने मैसेज किया है मानसरोवर कॉलोनी से। शिखा लिखती है, आनंद यार सुबह सुबह बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हिंदी में तो यार जितनी बातें करेंगे वो कम ही है, और हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी के बारे में तो मैं जितना बोलूँगी उतना ही कम है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा शिखा जी, थैंक यू सो मच। बाकी एक भाई साहब ने मुझे हिंदी में कुछ बोल के भेजा है, तो आइए जरा इनकी आवाज़ को सुनते हैं, ये सुबह सुबह क्या पहुंचा रहे हैं। अब ये तो यही, जब हम तक पहुंचेगी इनकी वॉइस तो पता लगेगा। आइए जरा सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं आज की मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
2: नमस्कार आनंद भाई, मैं निपेंद्र चौधरी एडवोकेट मुरादाबाद से, और अभी लाइव आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ प्रयागराज से। यहाँ एयरपोर्ट पर मेरा बारल चाप प्रयागराज के नाम से रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर जो भी मेरे कारीगर वगैरह हैं वो सब हिंदी बोलते हैं, और बाहर के जो ग्राहक आते हैं वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, लेकिन हिंदी का स्कोप ज़्यादा है क्योंकि हिंदी में हम लोग आसानी से समझ भी लेते हैं ग्राहक के बारे में, ग्राहक क्या बोल रहा है, लिख भी लेते हैं और पढ़ भी लेते हैं और अच्छे से बोल भी पाते हैं। तो हिंदी काफ़ी अच्छी बेस्ट भाषा है, और हिंदी में मैं बोलना चाहूँगा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यानी हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदी हम लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखती है। धन्यवाद,
0: थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले तो आप प्रयागराज से जुड़े हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट निपेंद्र जी, आप जुड़े, आप प्रयागराज एयरपोर्ट में आपका रेस्टोरेंट है आपने बताया, जब कभी आना होगा तो जरूर आपके रेस्टोरेंट पे आएंगे भाई, थैंक यू सो मच। मेरे साथ अमित भाई जुड़ चुके हैं, अमित वर्मा जी लिखते हैं, हेलो जी हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी एफएम मुरादाबाद के निरंतर श्रोताओं को, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये हमारे लिए पूजनीय है। एब्सोल्युटली भाई, मैं भी इस बात को बिल्कुल अग्री करता हूं, थैंक यू सो मच। और बाकी आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं मेरे साथ 9837896896 पे। 9:18 हो रहे हैं, आने वाला गाना दुरंधर से गाना आ रहा है जरा सी देर में, सिमरन चौधरी बिल्कुल इस गाने को आप सुनेंगे जरा सी देर में, राइट हियर विद मी। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं मेरे साथ आज की सुबह, एक ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, ऑफकोर्स अच्छी बातें हो रही हैं 14 सितंबर की तारीख।
3: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
4: क्या? मेरी कसम
3: मिस कर दिया तो रीलोड।
5: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग, सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
8: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

वेरी वेरी वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक विशाल मिश्रा की आवाज अभी आप एंजॉय कर रहे थे आनंद के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ कोर्स अच्छे गाने सुन के मजा आ जाता है जो भी कहो। एग्जैक्टली बंदे का नाम आनंद है, बंदा हाजिर है। मंडे की सुबह 14 सितंबर आपको तो पता है मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और मुरादाबाद की पीतल की जो पहचान है सिर्फ इंडिया में नहीं है विदेशों में भी है, ऑफकोर्स आप सभी जानते हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे हैं मुरादाबाद के गजानंद। कैन यू इमेजिन एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया में मुरादाबाद के गजानंद पहुंचे हैं भाई। और क्या है ये पूरा सीन चलिए आपको बताता हूँ। एंड आपको पता है भैया प्रतिमाओं के काम को लेकर मुरादाबाद में जो जिस तरीके से काम चल रहा है मतलब मानना पड़ेगा यार। और आपको बता दें फिलहाल अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी आयोजित हो रहा है भव्य गणेश उत्सव एंड इसमें मुरादाबाद की गजानंद की जय जयकार गूंज उठी है। जी हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं मतलब जो भारतीय वहां पर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मुरादाबाद की फेमस सिलेक्टेड इंटरनेशनल से मतलब जो है इंटरनेशनली गणपति जी की प्रतिमाओं को मेटल से तैयार करके ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट किया है। एंड आपको बता दें ये पहला मौका है जब मुरादाबाद की किसी फर्म की गणपति पप्पा की प्रतिमा इतनी सुंदर तैयार कर बिजनेस ऑर्डर पर ऑस्ट्रेलिया में जो है ये पहुंचे हैं और यहाँ की गजानंद जी की पूजा ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। आप सोचिए मुरादाबाद की गजानंद जी अमेरिका के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी पहुंचे हैं जहां पर बड़ी धूमधाम से इस गणपति बप्पा की जो है वहां पर प्रतिमा को पूजा जा रहा है, बहुत अच्छे से उनकी पूजा अर्चना होगी और मतलब अपने मुरादा

मंडे का दिन है 14 सितंबर को। आज रथ यात्रा दोपहर 2 बजे से होगी, मूर्ति स्थापना शाम 4 बजे होगी आज, और आज आरती है भव्य, इसके अलावा प्रसाद वितरण भी है आज ही, और बाकी आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां भी होने वाली हैं। आपको बता दें आज ही के दिन, और ये कहाँ पर होने वाली है भैया? बाजारगंज की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो है आज गणपति उत्सव की तैयारी होगी बहुत ही धूमधाम के साथ। गणपति चौक बाजारगंज में जो है गणेश उत्सव की तैयारी हो गई है, और मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर किसी न किसी से कनेक्टिविटी बनाऊं और जानने की कोशिश करूं आज क्या स्पेशल होने वाला है वहां पर। तो अगर आज मुरादाबाद में आप निकल रहे हैं तो बड़ी हर्ष उल्लास के साथ जो है आपको रथ यात्रा देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक जो है गणेश चतुर्थी का आयोजन बड़े हर्ष उल्लास के साथ किया जा रहा है, और आप सभी को भी भैया हम यही कहना चाहते हैं गणपति बप्पा मोरया। तो आज मुरादाबाद में इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, और ये जो महाराष्ट्र का फेस्टिवल है ना, अभी ये पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट होता है गणेश चतुर्थी। भाई गणपति बप्पा का दिन है तो ऑफकोर्स हर जगह पर सेलिब्रेट तो होना बनता है। फिलहाल आपको वेदर की बात बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं अगर बिजली से संबंधित कोई भी शिकायत है तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपको नंबर दे रहा हूं बिजली विभाग कंट्रोल रूम का, अगर आपको लगता है आपके एरिया में लाइट गायब हो रही है बैक टू बैक, तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। फटाफट से नंबर नोट करने का ब्रो, 9193300109 पर आप जो है कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, यहाँ पर तुरंत आपकी समस्या का समाधान होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ नंबर, देखिए अगर आपको बिजली से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप उसकी शिकायत के लिए कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ, विभाग कंट्रोल रूम का नंबर बता रहा हूँ, 9193300109। अगेन रिपीट कर दूँ फिर से, 9193300109, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज की सुबह, 9:29 हो गए हैं, वेदर की बात कर लेते हैं। तो भैया अभी करंट जो टेम्परेचर है वो 29 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, ये आगे कितना पहुंचने वाला है मैं आपको फटाफट बता देता हूं। अभी जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा वो 31 डिग्री होगा, लोएस्ट 26 होगा। हवाएं जो है भाई साहब 5 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हैं, और इन हवाओं में हम बिल्कुल नहीं उड़ेंगे क्योंकि आप मेरे साथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे, एक बेहतरीन गाना आपके रेडियो सेट पे मैं बजाने वाला हूँ जरा सी देर में। चन्ना बेघर राजा, आप मेरे शो पे आ जाओ नहीं तो आपको पाप लगेगा। नहीं यार, आज तो गणेश चतुर्थी है, आज कुछ नहीं होने वाला फिलहाल के लिए। चन्ना एवरीबॉडी थोड़ी सी देर में गाना आपके रेडियो पर पहुंचेगा, इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए बिंदास मॉर्निंग। ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.
4: Hi guys. आज जो मैं गाना गाने जा रहा

वेलकम बैक हियर वंस अगेन. यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 विद मी लेडीज एंड जेंटलमैन. अभी आपने अच्छा से गाना एंजॉय किया. मंडे की सुबह है, आप दिल्ली रोड पे हैं या कांट रोड पे, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट. एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऑफिस इस मूड में जा रहे हैं कि शाम को गणपति उत्सव जो सेलिब्रेट करना है यार. अगर आपके घर में बप्पा आए हैं तो एक बार फिर से गणपति बप्पा मोरिया मोदक खाने को मिलते हैं यार. आई लव मोदक बिकॉज मैं बहुत वेट करता हूँ गणेश चतुर्थी का, क्योंकि मोदक मुझे भी बहुत पसंद है यार. फिलहाल मंडे की ब्रांड न्यू मॉर्निंग है, आज 14 सितंबर है. हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं. और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मुरादाबाद में भी बहुत सारे गणेश सेलिब्रेशन हो रहे हैं, उसी पर बात करने के लिए भी थोड़ी देर में हम अपने साथ पारस जी को कनेक्ट करने वाले हैं. वो क्या बताने वाले हैं, क्या स्पेशल हो रहा है, बस मैं अभी उनको लेकर आता हूं. लेकिन उससे पहले एक और रॉकिंग गाना भी जरा सी देर में आपके रेडियो पे पहुंचेगा. हिंदी मीडियम का ट्रैक गुरु रंधावा की आवाज. So don't go anywhere. 9:40 हो गए स्टेशन क्लॉक में. मैं जल्दी से लौट कर आता हूँ अभी के अभी. आप कहीं मत जाओ, ऐसे ही सुनते रहो आरजे आनंद को. लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मैं डेफिनेटली शामिल करने वाला हूँ. और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है जिसका जवाब देकर आज की सुबह आप बन सकते हैं मुरादाबाद की सुपर स्टार. बनना चाहते हो तो क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा जरा सी देर में. आई विल राइट बैक. अभी के लिए गाना लगा रहा हूँ, इसके बाद जल्दी से लौट कर आ रहा हूँ. किसी को खास इंसान को साथ लेकर आऊंगा, तो आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए. फिलहाल गाना एंजॉय कीजिए ठा ठा करके. आनंद के साथ हैं आप. गुड मॉर्निंग.

0: कमाल रिटर्न का एक गाना है, लेकिन अभी हमारे साथ पारस जी फोन लाइन पे आ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो पारस जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
0: और आपको सबसे पहले गणपति बप्पा मोरया।
1: गणपति बप्पा मोरया,
0: वेरी नाइस। अच्छा, अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, तमाम लोग आपको सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद से लाइव।
1: हाँ जी, मेरा नाम पारस अग्रवाल है, मैं श्री गणेश महोत्सव समिति बाजारगंज से एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ।
0: ऑल राइट, तो आज क्या है स्पेशल आपके वहाँ पर होने वाला है, थोड़ा सा ये बता दो यार जरा पारस जी, क्या स्पेशल आप लोग कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं गणेश सेलिब्रेशन, आप लोगों के यहाँ कब से हो रहा है ये?
1: जी, हमारे यहाँ गणेश उत्सव पिछले 27 वर्षों से हो रहा है।
0: ओह माय गॉड।
1: और आज एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन है और शाम को 7 बजे से रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें आप अपने परिवार के साथ लाभ उठाने आ सकते हैं, गणेश जी के दर्शन कर सकते हैं।
0: ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा पारस जी, अभी आपने बताया आज ये एक यात्रा के बारे में आप बता रहे हैं, ये कहाँ से इसका जो है शुभारंभ होगा और ये कहाँ कहाँ से निकलने वाली है, मतलब थोड़ा सा बता दें।
1: ये बाजारगंज गुरट्टी के पास से निकलेगी और ये पूरा एक राउंड काट के बालाजी के मंदिर से होते हुए वापस बाजारगंज में आके गणेश जी को स्थापित कर दिया जाएगा बाजारगंज।
0: अच्छा, मतलब बप्पा को लेकर आएंगे आप, तो उसके लिए एक भव्य यात्रा का आयोजन हो रहा है आज, ऐसा?
1: जी जी जी।
0: अच्छा, तो कितने बजे जो है होने वाला है ये यात्रा का शुभारंभ?
1: ये 1 बजे यात्रा का शुभारंभ होगा और 4 बजे समापन होगा। 4 बजे गणेश जी स्थापित कर दिए जाएंगे गणपति चौक बाजारगंज में।
0: बाजारगंज में, ओके ठीक है। तो मतलब उसके बाद जो है आरती वगैरह का ये रहने वाला है पूरा प्रोसेस, है ना?
1: हाँ, शाम को 8 बजे आरती चालू हो जाती है और 8:30 बजे तक आरती का समापन हो जाता है। 9 बजे से हमारे रंगारंग कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, जहाँ पे वैष्णवी कला मंच द्वारा प्रोग्राम दिखाए जाएंगे। दिल्ली से पार्टी आती है, अगले 5 दिन प्रोग्राम चालू रहेंगे।
0: क्या बात है, कब तक से? आज 14 सितंबर से कब तक रहने वाला है पारस जी, ये बताएं जरा।
1: 14 से 18 सितंबर तक रंगारंग कार्यक्रम चलेंगे। 19 तारीख को एक बहुत विशाल शोभा यात्रा जो कि मंडी चौक से चालू होके और गुरट्टी के चौराहे पे खत्म होगी और विसर्जन राम गंगा में सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के पीछे।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तमाम मुरादाबाद के लोग आपको सुन रहे हैं पारस जी, 27 सालों से आप गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन करते हैं मुरादाबाद में, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बात है। क्या कहना चाहोगे, इतने लोग हैं, आज उत्सव है, अगले कुछ दिन बापा धरती पर आ चुके हैं हम सभी के विघ्नों को हरने।
1: जी जी जी, मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि सब अधिक से अधिक संख्या में आके गणपति चौक बाजारगंज में आके कार्यक्रम देखें, उसका लाभ उठाएं। यदि किसी कारणवश वो नहीं आ पा रहे हैं तो हमने यूट्यूब पे लाइव श्री गणेश महोत्सव समिति बाजारगंज के नाम से चैनल है, आप यूट्यूब पे लाइव भी देख सकते हैं घर बैठे बैठे, उसका आनंद उठा सकते हैं।
0: वेरी नाइस, मेरा नाम भी आनंद है, मैं भी आनंद उठाऊंगा।
1: जी जी बिल्कुल,
0: है ना? तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी आपके इस भव्य महोत्सव का हिस्सा बन सकूं, अपने लिसनर को वहां तक पहुंचा सकूं या वहां की कोई लाइव अपडेट अपने रेडियो के थ्रू श्रोताओं तक हम डिलीवर कर सकें।
1: जी जी जी
0: जी। सो पारस जी, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू, आपको भी गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से। और चलते चलते कोई मैसेज देना चाहेंगे रेडियो के माध्यम से?
1: बस मैं सबसे यही विनती करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके धर्म लाभ उठाएं।
0: जी, ये एड्रेस कहाँ रहने वाला है, जैसे मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, थोड़ा सा मुझे एक आइडिया दो जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। तो
1: एग्जैक्टली गुरट्टी चौराहे से जब आप सीधे सीधे चलेंगे तो वहाँ पे आगे जाके एक मंदिर आता है, मंदिर से ढलान पे वो है गणपति चौक जो सब्जी मंडी को रास्ता जाता है।
0: ऑल राइट, ओके ओके,
1: वहीं पे सारा कार्यक्रम होता
0: है। मतलब तो वो भव्य डेकोरेशन तो डेफिनेटली हो ही गई होगी अब तक आपकी।
1: बहुत बहुत भव्य डेकोरेशन,
0: क्या बात है। तो देखिए मुरादाबादी पारस जी ने ना क्यूरियोसिटी जगा दी मेरे अंदर और आपके अंदर, तो अब जाना तो बनता है दर्शन के लिए, और आज भव्य यात्रा में कोशिश करेंगे कि हम भी पहुंचे पारस जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी जी। थैंक यू पारस जी, आपका दिन शुभ रहे और आपके पूरी टीम को हैप्पी गणेश चतुर्थी।
1: थैंक यू,
0: वेलकम भैया, बाय बाय
1: बाय बाय,
0: थैंक यू भैया।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक है। मंडे की सुबह है, ढेर सारे श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए। ढेर सारे संदेश आ रहे हैं, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, बहुत सारी कॉल्स भी मेरे पास बैक टू बैक आ रहे हैं। तो देखो, अगर कॉल नहीं उठ पा रहे अनफॉर्चुनेटली तो सो सॉरी, बट मुरादाबाद में क्या चल रहा है सारी अपडेट आपको मिल रही है। एंड अभी राइट नाउ एक कड़क क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, एक बहुत ही प्यारा गाना है, बस आइडेंटिफाई करना है कौन सा गाना है। व्हाट्सएप करना है आपने मेरे को अपने नाम के साथ, अपना सही जवाब उठाना है, अपना फोन टाइप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। मंडे की मॉर्निंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है, बस आप मेरे को बताइए कौन सा गाना है। उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड कीजिए मेरे व्हाट्सएप पे 9837896896। ठीक है जी, ये आपने व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, हमारा इंस्टा हैंडल है एफ एम मुरादाबाद 89.6 के नाम से, वहां पर आके भी आप मुझे मैसेज पहुंचा सकते हो अपने सही जवाब के साथ। बताइए जरा, जो अभी आपने गाना सुना है वो कौन सा गाना है, यही आपने मेरे को बताना है। अगेन रिपीट करूं अपना क्वेश्चन, लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है, बस आपने मेरे को मैसेज करना है कि अभी जो आपको ये गाना सुनाई दे रहा है ये कौन सा गाना है, इस गाने को आपको गेस करना है, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। चलो मैसेज करो फटाफट से 9837896896, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, मैं अभी लौट कर आ रहा हूँ, बताता हूँ कौन है आज का सुपरस्टार। फिलहाल के लिए अमेजिंग ट्रैक राइट हियर विद मी, एंजॉय कीजिए अच्छे गाने। हिंदी मीडियम का ये गाना है सूट सूट करदा, वॉल्यूम बढ़ाओ, आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ऐसे कहिए दिल से जियो बिंदास।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.
5: Abhi bajayega na bhiro.
6: बहुत सारे व्हाट्सएप आए हैं मेरे पास आपके नाम के साथ, अभी लौट कर आ रहा हूँ फटाफट से और एक छोटी सी हेल्थ टिप्स देने वाला हूँ इमीडिएटली, सो डोंट गो एनीवेयर।

0: 9:55 हो रहे हैं, मंडे मॉर्निंग है। बहुत ही अच्छा गाना भी आपने एंजॉय कर लिया आनंद के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है यार। पहले इनको सुनते हैं क्या पूछा।
1: रेडियो की दुनिया के दोस्तों, में आपका दोस्त गुलाम जिलानी पाशा सुंदरकी से आपसे मुखातिब हूँ। आप सुने FM मुरादाबाद आरजे आनंद के साथ, आप सभी को सलाम नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी।
1: आनंद सर, जो आपने सवाल किया था कि बिंदास मॉर्निंग को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रातःकाल
0: दिमाग तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, लेकिन इन्होंने बताया प्रातःकाल सौंदर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिलहाल थैंक यू सो मच आप लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए। आई एम सो ग्लैड यार, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं। अच्छा, मैं जो गाना प्ले कर रहा हूँ, पहले इसको सुनो। गाना कौन सा, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो? सो दिस इज योर हिंट, मैं आपको बता दूं, इस गाने के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन साथ में अक्षय खन्ना है, सबसे बड़ा क्लू दे रहा हूँ। अब इमीडिएटली मैसेज करो, अनिल कपूर भी है, ऐश्वर्या राय बच्चन है एंड साथ में अक्षय खन्ना है। केमिस्ट्री बहुत प्यारी है ऐश्वर्या राय बच्चन है अक्षय खन्ना की, बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही प्यारी फिल्म है और बहुत ही अच्छा ही गाना है, काफी पॉपुलर ट्रैक है। ऑफकोर्स अभी तक आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, नहीं कराए तो दोबारा सुनो। चलो जी बताओ मुझे, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब, उसको सेंड करना है आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9837896896 पर। आपको बता दे भैया, गणेश चतुर्थी पर अगर आप इको फ्रेंडली पप्पा लेकर आते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इको फ्रेंडली गणपति लेकर आए। और इसी बीच हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रदेशवासियों से अपील की है कि भैया गणेश चतुर्थी के मौके पर, विश्वकर्मा पूजा के मौके पर जो है, उन्होंने सबसे पहले तो सभी को शुभकामनाएं दी हैं और गणेश उत्सव पर जो है उन्होंने यही है भैया वोकल फॉर लोकल, जितना हो सकता है अपनी लोकल चीजों को जो है आप अपनी चीजों में शामिल करें, अपने लोकल चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दें। ये एक रिक्वेस्ट है, जो अपने लोकल व्यापारी हैं उनको भी इस चीज का कहीं ना कहीं फायदा होगा, है ना। तो जो आप लोकल में बेचारे बड़ी सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाते हैं, तो आप उनके पास जाइए, उनसे इको फ्रेंडली गणपति लेकर आइए, और इको फ्रेंडली गणपति आप लेकर आएंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, और हमारे आसपास की नदियां ये सब कुछ भी पोल्यूटेड नहीं होंगी, राइट। 9:58 हो रहे हैं, बस अभी लौट के आता हूँ, बताता हूँ कौन है आज के शो का सुपरस्टार। बहुत ही अच्छा मैंने आज की सुबह आपसे क्वेश्चन पूछा है मंडे मॉर्निंग में, एंड दिस इज वेरी इजी। फिलहाल ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ेंगे।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
2: लेकिन सोनिया
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
2: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
3: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

ये मंडे की सुबह है, 14 सितंबर की तारीख है। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो है। मॉर्निंग टाइम है पाजी, घड़ी घड़ी में वक्त हुआ है 10:03।

क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाना। सुबह सुबह ऐसे गाने सुन के सच बता रहा हूँ आपको, मजा आ जाता है यार। और इतने अल्टीमेट गाने सुबह सुबह आपको एफएम मुरादाबाद पे सुनने को मिलते हैं आरजे आनंद के साथ। वेलकम बैक है, हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी आज की सुबह जहाँ भी आप जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट है यार। फिर सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, और इसके अलावा फिर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि भैया अभी जो है मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था कि अगर आप अपने घर में गणेश जी को ला रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप इको फ्रेंडली गणपति अपने घर में लेकर आएँ। अगर आप इको फ्रेंडली गणपति लेकर आते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया होंगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी, और पूजा में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इको फ्रेंडली गणपति रखेंगे। आज 14 सितंबर है, आपको बता दें भैया गैस सिलेंडर के नए रेट भी आए हैं सामने 14 सितंबर को। आपके शहर में कितना दाम है ये हमें नहीं पता, लेकिन मुरादाबाद शहर में क्या दाम चल रहा है मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से रहेगा, और जो अभी अपन का किचन वाला सिलेंडर है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। चलिए एक बार फिर से एफएम मुरादाबाद की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हिंदी दिवस और साथ ही साथ गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि ये गणेश चतुर्थी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां जरूर लेकर आएंगे। पापा आए तो सारे कष्टों को आपके हरेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप मॉर्निंग में ऑफिस निकल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स अपने पास रखते हैं, अगर आप वो खाकर निकलते हैं तो ये आपको पूरे दिन के लिए एक्टिव कर देता है, आपकी एक्टिविटी को जो है और ज़्यादा बढ़िया कर देता है, मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो आप जो है एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स डेफिनेटली आप लेकर निकलिए अपने घर से बाहर। अगर आप जा रहे हैं तो आप साथ में एक केला भी खा के निकल सकते हैं, या कोई एप्पल, मतलब फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट आप डेफिनेटली सुबह सुबह खाकर निकलें, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है ना। तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट डेफिनेटली करें, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए। फिलहाल मुझे भी ब्रेकफास्ट करने जाना है, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ से आपको बाय बाय बोलूंगा। अभी दिलजीत दोसांझ से जुड़ी एक बड़ी ऐलान, बड़ी एक इन्फॉर्मेशन आई कि भैया नवंबर के महीने में अहमदाबाद में करेंगे परफॉर्म दिलजीत दोसांझ, जिसको लेकर बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 21 नवंबर 2026 को जो है दिलजीत दोसांझ का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सर्ट होने वाला है लंदन के बाद सीधा अहमदाबाद में, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। अभी दिलजीत पाजी के कॉन्सर्ट की तैयारियां फिर से

वापस हो गई हैं, कैसे उनकी टिकट टुकट आप ले सकते हैं, वो सारी डिटेल्स जो है मैं आपको कल बताने वाला हूँ टुमारो इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आप ऐसे ही मेरे साथ ट्यूनिंग रहिए, बहुत सारी कड़क अपडेट आपको मिलती है इसी चैनल पर। तो बस आप जो है हमारे साथ ऐसे ही ट्यूनिंग रहा करो। मैं अभी लौट कर आता हूँ। मैंने आज आपसे क्या पूछा था, मैंने कहा था कि कौन सा गाना है आपको बताना है। और कल रात के मैच आपने देखा है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले T20 मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही ग्रेट इन्फॉर्मेशन। एंड बाय द वे कल रात को जो था भाई साहब कमाल का मैच, उसके लिए तो सभी को बधाइयां, जी भर भर के कंग्रेचुलेशन। और अभी मैं लौट कर आ रहा हूँ, बता रहा हूँ कौन है आज के शो का सुपरस्टार। तालियां, 10:08 हो गए, मैं बस इमिडिएटली आता हूँ। मैं यू गया यू आया, आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो हमारे साथ। कुछ कहना चाहते हो तो आप अभी भी जुड़ सकते हो हमारे साथ, हम आपके साथ इसी स्टेशन पर हैं 9837 8968 9689 पे।

0: टच कर जाते हैं दिल को। नेहा कक्कड़, जस्सी गिल की आवाज।
1: तेरे लिए ही गावा, तेरे वास्ते लिखा हुआ गाना लिख दा यार तेरा जानी।
0: अपना प्रचार जरूरी है यार, बड़ी दूर आवे जस तेरी मारता। कैसे करना है अपना प्रचार, ये बॉलीवुड सिंगर बताते हैं पंजाबी वाले। एनर्जी का बूस्टर आपको मिल रहा है आनंद के साथ, लेडीज एंड जेंटलमैन। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा एड ब्रेक, उसके बाद बताते हैं कौन है आज के शो का सुपरस्टार।
2: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: एड ब्रेक खत्म हो गए हैं, वेलकम बैक। यार मैंने आज आपसे पूछा था ये कौन सा गाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इतना बढ़िया गाना है, ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या परफॉर्मेंस दी है इस गाने में। अच्छा चलो इसका थोड़ा सा आगे का सुना देता हूँ। अब तो आप आइडेंटिफाई कर ही लोगे यार, और कर ही लिया है, क्योंकि अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं आज के हमारे लकी कॉलर। आइए इनसे बात करते हैं, ये कहाँ निकल रहे हैं सुबह सुबह वो तो यही बताएंगे भाई, और कौन है आज की सुबह हमारे साथ आज के सुपरस्टार। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद।
3: गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हैं आप?
0: मैं बहुत ही हैंडसम हूँ यार, तुम बताओ कैसे हो?
3: एकदम फर्स्ट क्लास, आपकी आवाज सुनने के बाद और अच्छे हो गए।
0: नहीं मुझे लग रहा था तुम भी बोलोगे मैं भी बहुत हैंडसम हूँ।
3: नहीं भाई
0: नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। ना ऐसा तो नहीं हो सकता यार। अच्छा चलो अपने बारे में बताओ भाईजान, कौन कहाँ से है?
3: नासिर हुसैन बात कर रहा हूँ, रहमत नगर करोला गली नंबर 1 से। और
0: जी नासिर भाई क्या हालचाल, सबसे पहले ये बताओ मंडे की सुबह एक नई एनर्जी, एक नया दिन, फिर से वापस काम पे जा रहे हैं, सो कैसी फीलिंग आ रही है?
3: नहीं एकदम बेहतरीन फीलिंग आ रही है,
0: क्योंकि यार मुझे लगता है कि जब मंडे आता है ना तो हमें वो स्कूल वाली दिन याद आ जाते हैं, संडे के बाद यार मंडे फिर से स्कूल जाना है, वो हो रो के स्कूल जाते थे भाई
3: जी, बट अभी तो रो रो के नहीं जाना होता, अभी तो हंस के जाना काम पे होता है।
0: बहुत जरूरी यार, अगर हंस के नहीं जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा बाबा है?
3: एकदम फर्स्ट क्लास,
0: बहुत बढ़िया। अच्छा कहाँ, आपने मुरादाबाद में बताया, कहाँ रहते हैं आप?
3: गली नंबर 1 करोला मुरादाबाद।
0: अच्छा ओके, और क्या करते क्या है आप प्रोफेशनली?
3: अभी सैमसंग में एरिया सेल्स मैनेजर हूँ।
0: अरे
3: अभी रामपुर के लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि रामपुर डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ पूरा।
0: ऑल राइट, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही अच्छी बात है। और रेडियो सुन लेते हो कभी कभी टाइम मिल जाता है?
3: जी गाड़ी में जब ट्रेवल करते हैं तो मॉर्निंग में तो स्टार्ट कर ही लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया। अच्छा ये जो म्यूजिक चल रहा है, जो गाना बज रहा है, ये कौन सा गाना था ये बताओ जरा?
3: ये ताल मूवी का टाइटल सॉन्ग है।
0: अच्छा ताल फिल्म देखी है वैसे आपने, ये बताओ पहले तो ईमानदारी से।
3: देखी तो नहीं है।
0: ओ भाई मुझे मारो, लेकिन गाना तो आपने डेफिनेटली सुना होगा रेडियो पे, आई एम श्योर, इतनी बार बजाते हैं यार।
3: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
0: चलो बहुत ही अच्छी बात है नासिर जी, जोरदार तालियां। ये सिट्टी विट्टी सब आपके लिए बजा दी मैंने आज की सुबह, जितना हो सकता था भाई।
3: थैंक यू,
0: बहुत बहुत बधाइयां। और बाकी कुछ कहना चाहते हो, इतने सारे लोग रेडियो पे सुन रहे हैं चलते चलते?
3: नहीं बाकी बस यही कहना चाहेंगे कि आपका जो बिंदास मॉर्निंग है वो बहुत अच्छा शो है, और ये लोगों को मोटिवेशन देता है। अच्छा। और जो भी हम लोग मतलब डेली का ट्रेवल्स करते हैं तो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतर होता है। वैसे तो ऑल जितने भी लिसनर्स हैं आपके तो सभी मतलब आपको बहुत प्यार करते हैं, और आपकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छी है आनंद जी।
0: अच्छा, और मैंने इस बात के पैसे तो नहीं दिए थे आपको वैसे?
3: नहीं नहीं पैसे नहीं दिए, बट कुछ होती है अटैचमेंट होती है लोगों की।
0: हाँ,
3: और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मतलब दिल को छू जाने वाली बात होती है। तो बाकी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहिएगा। और बाकी मेरे सभी लिसनर्स को एक मैसेज है कि आनंद भाई को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और एफएम मुरादाबाद को, तो
0: देखो डेफिनेटली नासिर भाई बस यही चाहिए। देखो लाइफ में प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है, सबकी जिंदगी में डाउनफॉल आते रहते हैं ना, लेकिन हमें घबराना नहीं है, बस स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़ना है। एग्जैक्टली
3: नहीं भाई, हिम्मत नहीं हारना है कभी भी, और बहुत सारे अप एंड डाउन रहते हैं जिंदगी के अंदर, बट उनको कभी भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे लाइफ खत्म हो गई, वहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं।
0: ट्रू ट्रू, और बहुत सारी चीजें जानने को भी मिलती हैं यार।
3: करेक्ट, ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है ना, वो कहते हैं।
0: सही बात है नासिर भी, एकदम सही बात है। लवली टॉकिंग टू यू भाई, मंडे आपने गजब का बना दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप अपने ऑफिस पहुंचे, ऑल द बेस्ट। आपने एक फोटो शेयर करी थी, कहाँ जाम लगा हुआ है ये, कहाँ लगा था जाम?
3: ये जो रामपुर राय से 0 पॉइंट है, रामपुर वाला।
0: हाँ हाँ।
3: तो रामपुर बाईपास।
0: अच्छा
3: तो वहाँ पे काफी मतलब ट्रैफिक है इस टाइम,
0: ये स्टेशन रोड पे यार हमेशा ट्रैफिक रहता है।
3: नहीं स्टेशन रोड है रामपुर मुरादाबाद 0 पॉइंट जो है ये।
0: अच्छा ओके ओके,
3: 0 पॉइंट पे
0: तो
3: यहाँ पे जी
0: उधर जाम है।
3: हाँ काफी जाम लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे पुलिस वगैरह भी खड़ी है काफी सारी, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी कंट्रोल किया जाए, बट बहुत सारी गाड़ियां भी मतलब वेटिंग में।
0: कोई बात नहीं, जो गाड़ियां वेटिंग में जो सुन रहे हैं ना भाई, देखो आपके आगे पीछे गाड़ी में बैठे हैं नासिर साहब, आप सभी इनकी आवाज़ सुन रहे हैं और अभी हम आपके लिए गाना चला रहे हैं, ट्रैफिक की टेंशन मत लो, अच्छे गाने मूड फ्रेश कर देंगे, क्यों भाई?
3: जी जी बिल्कुल एकदम आनंद भाई, आप तो मन खुश कर देते हैं।
0: अरे नासिर जी बड़ा मजा आया आपसे बात करके, वंडरफुल टॉकिंग टू यू भाई, ऑल द बेस्ट, पहुंचो अपने ऑफिस, ठीक है सर?
3: यस थैंक यू सो मच,
0: बाय जी, लवली वंडरफुल डे, लवली टॉकिंग टू यू भाई, बाय बाय,
3: थैंक यू आनंद भाई,
0: ओके भैया।
4: हे किम छो, मजा मा छो,
0: थैंक यू नासिर भाई, लवली टॉकिंग टू वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बहुत मजा आया सबसे बात करके, सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्यारे लिसनर, ये भी मुझे गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। एंड इसके अलावा शिखा हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे साथ सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लिखते हैं जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दिल बड़ा और उम्मीद को हमेशा छोटा रखो, क्या बात है यार। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाह हुसैन अंसारी, डॉक्टर शेर शारिक अली, महराज अंसारी, बाबू अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लिखते हैं आनंद जी कैसे हैं आप, आपका शो बिंदास मॉर्निंग बहुत अच्छा लगता है एंड आप काफी अच्छे गाने प्ले करते हैं, हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं। नाइट क्लब जाके इसी बात पे एक वॉइस नोट और मेरे पास आया, जरा ये भी सुनते हैं।
5: आनंद सर कैसे हैं आप? मैं शेरपुर माफी से सालिम अंसारी, बहुत लंबे समय के बाद आपका शो सुना है, बहुत अच्छा लग रहा है और आपने जो सवाल पूछा है सॉन्ग है ताल से ताल मिला,
0: क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही जवाब दिया, थैंक यू सालिम मेरे भाई, थैंक यू पार्टिसिपेटिंग, ताल से ताल मिला। मेरे पास मैसेज पहुंचा है विभोर का, हाय विभोर भाई व्हाट्सएप क्या हालचाल, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग विभोर भाई, गुड मॉर्निंग जी। सना तुर्क, नाजिया तुर्क हमारे साथ जुड़ी है एंड ये आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं पहुंचा रही है सभी को। इसके अलावा गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं पहुंचाती हैं ललिता कश्यप नवीन नगर से, लिखती हैं आनंद भाई गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है सभी को, गणपति बप्पा मोरया, आपको भी गणपति बप्पा मोरया। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, आई लव योर शो, थैंक यू। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है यहाँ पर अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक एंड आदित्य कसाना का लदावली कांट रोड से, इन्होंने भी सही जवाब दिया है आज की सुबह, दिल तो मैं भी लेके जा रहा हूँ आपका, कल वापस दे दूंगा आके, है ना। अभी के लिए मेरे साथ यहाँ पे कोमल जुड़ चुकी हैं, कोमल हाय गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप, थैंक यू सो मच। इसके अलावा अमित वर्मा जुड़ चुके हैं, प्रिंस, विकी, सागर, अमरोहा से नेहा एंड जय श्री राम, दुर्गेश सैनी कल्याणपुर से मुझे मैसेज पहुंचाते हैं आज की मॉर्निंग, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। अभी के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और जिन लोगों ने मुझे टेक्स्ट मैसेज किए थे उनको भी दिल से थैंक यू, खुशी आ गई नेक्स्ट कंपनी देने आपको, उसके साथ एंजॉय कीजिए। एंड एक मैसेज मेरे पास आया है यहाँ पर, आनंद भाई कैसे हालचाल है, निपेंद्र चौधरी एडवोकेट मुरादाबाद से मैसेज कर रहे हैं, प्रयागराज से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर आपको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और आप बहुत अच्छा शो करते हैं, थैंक यू मेरे भाई। राजू यादव बुंदेलखंड से मेरे साथ जुड़े हैं आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं हमीरपुर से। और एक और मैसेज मेरे पास पहुंच गया है, हाय नमस्ते, वंडरफुल टॉकिंग टू यू आनंद जी, कैसे हैं आप? रिहाना मेरे साथ जुड़ी हैं रानी नागल से, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हैं और साथ में बबली अंजान, गीता कश्यप, लक्ष्मी भाभी भी जुड़ी हैं आज की सुबह। चलिए भाई किसी का मैसेज रह जाए तो सॉरी यार, माफी चाहूंगा, बाकी अभी आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं, मैं यहां से निकलना चाहूंगा, कल मिलते हैं, बाय एंड वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी, बाय बाय।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी यस। अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM.
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.

14 सितंबर की तारीख है, दिन है मंडे का, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खूबसूरत सा दिन। और दोस्तों आज घर घर में विराजेंगे हमारे प्यारे से गणपति बप्पा, और बप्पा के साथ आएंगे नई उम्मीद, नई शुरुआत और ढेर सारी पॉजिटिविटी। कहते हैं ना, जहाँ गणपति बप्पा का आशीर्वाद होता है वहाँ मुश्किल रास्ता रोकती नहीं है बल्कि रास्ता दिखाई देता है। तो आज बप्पा से बस इतनी सी प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और चेहरे पर मुस्कान रहे, हर मन में विश्वास रहे और जीवन की हर नई शुरुआत बप्पा के आशीर्वाद के साथ हो। तो हम सब मिलकर बोलेंगे गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। और हरतालिका तीज भी है, तो हमारी जितनी भी फीमेल्स हमें सुन रही हैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। करेंगी बहुत सारी बातें एंड बहुत सारा फन और बहुत सारी चीज़ें आज होने वाली है हमारे शो में, ठीक है। तो उसके लिए आपको बने रहना है खुशी के साथ, एंड खुशी जब आती है तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है आप सभी के लिए। एंड आपके मैसेजों की यहाँ पर बारिश भी होने लगी है झमाझम, उनको भी शामिल करेंगे। लेकिन एक अमेजिंग सा ट्रैक सुनते हैं आज की सुबह।

ट्रिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ। और दोस्तों, भाषाएं कई हैं हमारे देश की पहचान, लेकिन हिंदी में बसता है दिल का अरमान। इसमें है माँ की ममता, अपनों का प्यार, हिंदी है हमारे जज्बातों का खूबसूरत संसार। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हिंदी सिर्फ शब्दों की भाषा नहीं है, ये वो एहसास है जिसमें हम बिना सोचे अपने दिल की बात कह देते हैं। तो आइए अपनी हिंदी पर गर्व करें और दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें और अपनी पहचान को और मजबूत बनाएं। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हिंदी दिवस का इतना ब्यूटीफुल सा डे है एंड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ जो कि बहुत इजी है। लेकिन उससे पहले आपके संदेशों को भी शामिल कर लेते हैं आज की सुबह। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी आज की सुबह में मैसेज पहुंचाते हैं। उसके अलावा अगला मैसेज हमारे पास यहां पर आया है। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, डिस्ट्रिक्ट रामपुर से ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं। ओल्ड लिस्टनर है हमारी सना तुर्क एंड नाजिया तुर्क। और ये ट्रैक सुना चाहती हैं दिल डूबा, वो हो कहाँ डूबा है दिल। हाँ अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। आदरणीय प्रसारक जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आपको भी आदाब। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं ताज मोहम्मद अंसारी जी आज की सुबह, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है। गुड मॉर्निंग खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। मंडे की शुरुआत, देखिए मंडे का दिन है, वीक की शुरुआत है और हम अच्छे ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। ये हमें मैसेज पहुंचाती है आज की सुबह अफरोज फातिमा जी। और साथ में लाइबा है, इनके सिस्टर है नजमा, रामपुर से शबनम जी हैं। नेक्स्ट मैसेज आज की सुबह में पहुंचाते हैं। जय माता दी, राधे राधे खुशी जी, लाजवाब प्रस्तुति। अजीत कसाना जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं आज की सुबह। साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं, कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। बाकी दोस्तों, आज की सुबह आप भी अपने संदेश हमें पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना संदेश पहुंचाएगा। और आज हिंदी दिवस के मौके पर ना हम आपसे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछने वाले हैं, है ना, और हम आपसे ना लाइव बातचीत करने वाले हैं। तो कौन होंगे वो जिनसे हम कॉल पर बात करेंगे, वो तो हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। थोड़ा पेशेंस रखिए एंड अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है वो सारी अपडेट आपको मिलने वाली है ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ, मुस्कुराते भी रहिए, क्योंकि सुबह की शुरुआत हमेशा प्यारी सी स्माइल के साथ होनी चाहिए ना।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: नहीं दोस्तों, हम तो जानते हैं देखिए कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, एंड क्योंकि आप इतना एक्टिव रहते हैं एंड हर शो में आप पार्टिसिपेट करते हैं और इतने ध्यान से आप हर बातों को सुनते हैं, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फटाक से आप आंसर पहुंचाते हैं, इतना लगाव है आपको एफएम मुरादाबाद से। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार करते हैं आप। आप सभी का खुशी बहुत बहुत स्वागत करती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर और ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना अफरोज की रिक्वेस्ट पर, अफरोज फातिमा जी की रिक्वेस्ट पर, और यहाँ पर कुछ और खूबसूरत मैसेज आए हैं उनको हम शामिल करेंगे, लेकिन अपने मुरादाबाद की आज खास अपडेट भी आप तक शेयर कर देते हैं। दोस्तों आज शहर में आज से गणेश चतुर्थी और श्री गणेश महोत्सव की शुरुआत हो गई है। जगह जगह सुबह से हवन पूजा के साथ शुभ मुहूर्त में बप्पा गणपति जी की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। बड़ा बाजार, बाजारगंज, चक्कर की मिलक और कटघर, उड़पुरा समेत कई इलाकों में पापा के स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी है। बड़ा बाजार स्थित गणेश भवन में 15 सितंबर से रोज शाम भजन और सुंदर झांकियों का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं मुरादाबाद के मशहूर पीतल बाजार में इस बार गणेश जी की पारंपरिक मूर्तियों के साथ झूले वाले गणेश जी की खूब मांग देखने को मिल रही है। पीतल की मूर्तियां 500 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक की कीमतों में उपलब्ध है और इनकी मांग महाराष्ट्र और बेंगलुरु तक है। और इस बार एक खूबसूरत संदेश भी सामने आ रहा है कि कुछ गणेश निमिताओं कुछ गणेश समितियां नदी में विसर्जन की बजाय बप्पा को घर के मंदिर में ही सम्मान पूर्वक विराजमान रखने की अपील कर रही हैं, यानी आस्था के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जाएगा। और मुरादाबाद में गूंज रहा है एक ही जय जयकारा, गणपति बप्पा मौर्य। बप्पा का आशीर्वाद हर घर में सुख शांति और खुशियाँ लेकर आए। एंड आज मुरादाबाद का वेदर कैसे रहने वाला है, मौसम कैसे रहने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। आपको जुड़े रहना है खुशी के साथ, बने रहिए और आपकी जो यहाँ पर संदेश आ रहे हैं उनको भी शामिल कर लेते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है कश्मीर से महराजुद्दीन जी का आज की सुबह, और ये कहते हैं आरजे खुशी जी गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। अगला मैसेज हमें पहुंचाते हैं आदरणीय प्रसारक जी को हमारा आदाब, आपको भी आदाब। धनोरी तीली वाला से अपना मैसेज पहुंचाते हैं निसार सलमानी जी, नौशा सलमानी, आपका हर पल खुशियों भरा हो, सेम टू यू सर, हम भी यही कामना करते हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ये मैसेज अपना पहुंचाते हैं हरिओम महेश्वरी जी मुरादाबाद लाइन पार से, हैप्पी गणेश चतुर्थी आरजी खुशी, सेम टू यू सर। अगला मैसेज हमारे पास आया है जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी जी, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को। दुर्गे सैनी जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। अगला मैसेज हमें मिला है यहाँ पर मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद, इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग आरजी खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। आपका शो रेगुलर सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, प्रस्तुति बहुत ही अच्छी होती है आपकी, और हम एक सॉन्ग सुनना चाहते हैं, मैं ना भूलूंगा। अरे वाह क्या बात है, हाँ बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, एवरी डे रेडियो सुनना है। अगला मैसेज हमारे पास किन के आए हैं ये भी हम शामिल करेंगे आकर, क्योंकि बैक टू बैक मैंने बहुत सारे संदेश शामिल किए हैं ना। और हाँ एक क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ, याद है ना आपको, बस लौट कर आती हूँ छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के उस पर। आप कहीं मचाइए यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश खुशी को पहुंचाइएगा, हम भी सब्री से इंतजार करते हैं आपके प्यारे प्यारे संदेशों का। और आज की सुबह मैं एक ट्रैक यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, बहुत ही यू नो अमेजिंग ट्रैक है, दिलजीत दोसांझ जी की आवाज में, तो सुनते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं।
1: आ मेरे पास आ जाना, उन्हें यार कहते हो के बार जाना। love.

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपके लिए तोहफा तो लेकर आए हैं, लेकिन हाँ, एक सवाल का तोहफा लेकर आए हैं आपके लिए। और एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा हम आप सभी से पूछना चाहते हैं आज की सुबह। तो क्या आप सब तैयार हैं?

देखिए दोस्तों, आज हिंदी दिवस है ना, और इसी खास मौके पर हम आपसे एक इंटरेस्टिंग सा, बहुत सिंपल सा आज की सुबह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि आप ना उस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्वेश्चन पूछूं, लेकिन जो आंसर देना हमारे लिसनर, वो मैं ऑन ईयर जोड़ना चाहती हूँ, किसी को कनेक्ट करना चाहती हूँ। कौन है वो ऐसे लिसनर जिनको मैं आज की सुबह कॉल पर कनेक्ट करके और उनसे रैंडमली सवाल पूछूं और वो उसका राइट आंसर दे, कैसा रहेगा ये आइडिया? बेस्ट है ना वैसे एवरीवन। तो चलिए, एक हमारे जो लिसनर है, कौन जुड़ने वाले हैं आज की सुबह हमारे साथ, वो आपको मैं बताऊंगी। और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो चलिए जल्दी से मैं बता

समय बताती हूँ, पहले वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 11:14। और दोस्तों आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाते हैं 14 सितंबर को। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, ये हमारे जज्बातों को शब्द देने का एक खूबसूरत जरिया है। हर साल 14 सितंबर को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और दोस्तों 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए ऐतिहासिक दिन की याद में 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की हुई। इस एक दिन का मकसद है हिंदी के प्रति सम्मान बढ़ाना, इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना और अपनी भाषा से जुड़ाव को और मजबूत करना।

और दोस्तों अब बात कर लेते हैं महिला एशियन कप 2026 की अपडेट। आपको बता दें महिला एशियन कप 2026 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 72 रनों से हराकर खिताब अपने नाम किया, लेकिन जीत के बाद एक दिलचस्प बात सामने आई है। एसीसी के प्रमुख मोहसिन नवी के हाथों भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। इसके चलते टीम को बिना ट्रॉफी लिए ही लौटना पड़ा। मुख्य कोच अनमोल मजुमदार ने साफ कहा कि टीम एसीसी के फैसले के साथ और इस शानदार जीत पर पूरी टीम को गर्व है एंड हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की शानदार जीत। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने चीन को वन जीरो से हराकर लगातार तीसरी बार एशियन कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस जीत के साथ टीम ने जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी टीम को बधाई दी है और 17वें मिनट में निर्णायक गोल करने वाले सानिका चंद्रकांत मानी समेत खिलाड़ियों की शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचानी है, बस मैं लौट कर आती हूँ कुछ खूबसूरत ट्रैक उस पर। देखिए हमारी इंडियन महिला क्रिकेट टीम ने कमाल कर दिखाया है, तो ये ट्रैक तो बनता है आज की सुबह। क्यों भाई, सही कहा ना, सही कहा कहा ना खुशी ने।

बिल्कुल दोस्तों, देखिए अब बातों से काम नहीं चलने वाले हैं, है ना। अब हम क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हम आज की सुबह पूछने वाले हैं, क्योंकि आज नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो क्यों ना आज थोड़ी सी इंग्लिश को हिंदी से मिलाया जाए। आजकल हम नंबर भी इंग्लिश में बोलना पसंद करते हैं, जैसे कि 9587 58, इस तरह से बोलते हैं ना, है ना। लेकिन आज मेरा छोटा सा हिंदी चैलेंज है, मैं आपको नंबर इंग्लिश में बोलूंगी और आपको उसका जवाब हिंदी में देना है। तो तैयार हैं आज आप? हमारे आज के हिंदी चैलेंज के लिए तो मैं सोच रही हूँ किनको कॉल किया जाए आज की सुबह, या यू नो, चलो आज की सुबह कॉल कर ही लेते हैं। हाँ, लाइव कॉल करते हैं और जानते हैं कि कौन हमारे साथ इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो राइट नाउ किनको कॉल किया जाए? चलिए आज की सुबह करते हैं एक मैम को कॉल और उनके साथ खेलते हैं ये ब्यूटीफुल चैलेंज। वैसे दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। हाँ, अच्छा, कौन कौन तैयार है? यस, जल्दी से लेकर भेजिए जो इस चैलेंज को मेरे साथ खेलने के लिए तैयार है, तो वो फटाफट से अपना यस यहाँ पर मैसेज करके भेजें। मुझे मालूम होगा कि कौन कौन मेरे साथ हमारे लिसनर हैं जो इस गेम को खेलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। जो सबसे पहले यस का जवाब हमें पहुँचाएगा वो उसी को हम कॉल करने वाले।

मैसेज आए हैं, मैं उनको जल्दी से शामिल करती हूँ। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगी, आपका रविवार भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और उम्मीद है कि आज से शुरू हुआ है आपका ये नया सप्ताह भी खुशियों, सुकून और अच्छी यादों से भरा रहे। आपका इसी तरह अपने प्यार और खूबसूरत अंदाज में इस शो को सजाती रहें और हम सभी के साथ अपनी अच्छी अच्छी बातें साझा करती रहें। सच कहूँ तो आपका शो सुनकर सुबह और भी खूबसूरत लगने लगती है और आज की सुबह ये ब्यूटीफुल मैसेज हमें पहुँचाते हैं आसिफ जी फ्रॉम इटली से, और ये सुबह एक ट्रैक सुनना चाहते हैं आज की सुबह, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। ये बड़ा कश्मकश हो जाती है चीज़ें जब दिल के हमने सुनते हैं और दिल हमारी नहीं सुनता है, उस समय भी क्या करते हैं समझ नहीं आता है। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, आरजी खुशी जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, विकी सागर जी अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। अगला मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया राइट नाउ रानी नांगल से रिहाना जी का, हेलो मैम गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ललिता कश्यप जी का नवीन नगर मुरादाबाद से, खुशी जी गुड मॉर्निंग, कैसे हाल है आपके? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। आज गणपति पापा आ रहे हैं एंड आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, सेम टू यू। और इन्होंने एक बड़ी प्यारी सी लाइनें लिखकर भेजी हैं, गणपति पापा मौर्या खुशियों से भर जाए संसार, खुशी मैम की जीवन में रहे सदा सुख समृद्धि अपार, पापा हर मुश्किल को पल में आसान कर दें और हर सुबह नई उम्मीद और हर शाम मुस्कान से भर दें। ओके थैंक यू। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि माथे पर पापा का आशीष रहे, घर पर खुशियों का एहसास रहे, खुशी मैम की हर दुआ कबूल हो जाए, गणपति पापा की कृपा से हर सपना पूरा हो जाए, बोली दिल से गणपति पापा मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। अरे वाह, इतना प्यारा मैसेज रेडी करके आपने भेजा है, थैंक यू। कहती हैं कि बाहर का मौसम बहुत ही औसम हो रहा है, कभी धूप निकल जाती है तो कभी बादल आ जाते हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अरे वाह क्या बात है। और मैम एक गाना सुनना चाहती हैं आज की सुबह, बिल्कुल सुनवाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें यस का जवाब भेजा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारे पास मैसेज आया है, मैं उनको भी शामिल करूंगी यहाँ पर, लेकिन कुछ यहाँ पर ट्रैक प्ले करते हैं उसके बाद बातचीत करेंगे। और आप ये साथ अगर हिंदी चैलेंज खेलने के लिए तैयार है ना, तो अपना यस का आंसर यस भेज दीजिएगा अपने नाम के साथ, पर मैं करने वाली हूँ कॉल आपको।

0: आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है मॉर्निंग मसाला और मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। तो दोस्तों आज नेशनल हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष में हमने आज एक सिंपल सा हिंदी चैलेंज रखा है और हमारे साथ हमारी एक मैम भी जुड़ गई हैं जो रेगुलर लिसनर हैं, वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं और चलिए उनसे ऑन एयर बात करते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। राधे राधे।
1: राधे राधे खुशी। राधे राधे,
0: कैसी हैं आप?
1: मैं तो बढ़िया हूँ खुशी। सबसे पहले तो हड़ताल का तेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: आपको भी मैम,
1: सभी बहनों को, महिला सुहागिन महिलाओं को, जैसे पार्वती जी का सुहाग बना है उसी तरह सभी महिलाओं का सुहाग बना रहे, पार्वती माता और शिव जी हमेशा कृपा बनाए रहे अपनी।
0: गणेश चतुर्थी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं मैम।
1: गणेश चतुर्थी की, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी भी है, दोनों ही आज एक ही दिन पड़ गया है। ये
0: बिल्कुल पूरा परिवार एक ही दिन साथ में है, माँ पार्वती, शिव जी और गणेश भगवान भी,
1: शंकर परिवार का पूरा आज दिन है।
0: हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मैम आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी उपलक्ष में हमने आपसे ना एक हिंदी चैलेंज रखा है और सबसे पहले आपका यस आया है तो मैंने कहा मैम बहुत इंटरेस्टेड है इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए तो मैम से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। तो मैम आपको भी मालूम है कि आजकल हम लोग जब किसी को मोबाइल नंबर बताते हैं या कुछ भी किसी को पैसे देने होते हैं तो हम इंग्लिश में ही यू नो बताते हैं और तो बस आज की सुबह मैं भी आपसे इंग्लिश में कुछ वर्ड पूछूंगी, आपको उसका हिंदी में रिप्लाई देना है, ठीक है? तैयार हैं आप?
1: हाँ ट्राई करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो आज की सुबह हम आपसे पूछने वाले हैं
1: 25
0: कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट है हमारा 42
1: 42।
0: हाँ वेरी गुड। अब हम आपसे पूछने वाले हैं 58
1: 68।
0: नेक्स्ट है हमारा 69। अभी
1: उनहत्तर। ओके।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल गुड मैम, सही जवाब दिया है आपने। 85
1: 85
0: एग्जैक्टली राइट। एंड नेक्स्ट है मेरा 94
1: 94 99
0: एग्जैक्टली राइट। आपने तो दिया है सही जवाब, क्या बात है मैम।
1: नहीं क्योंकि हिंदी बच्चों को पैसे से देने में तो खुशी हम हिंदी में ही बोलते हैं, अगर शॉप पे जाते हैं बेटा ना।
0: हाँ जी।
1: तो अपना मतलब भाषा को, राष्ट्रभाषा को अपना इस्तेमाल करना चाहिए ना कि इंग्लिश को।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली मैम
1: जी।
0: और हिंदी में कुछ कहना चाहेंगे आप? आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है इस मौके पर,
1: बस इस पे हम यही कहेंगे सभी को कि ज्यादा से ज्यादा अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बहुत लोगों को बेटा ना बोलने में शर्म आती है हिंदी की, देखिए वो सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है हम हिंदी में कैसे बात करें,
0: जी, जी,
1: है ना
0: जी।
1: पर अपने जो हमारी मातृभाषा है इसमें शर्माना नहीं चाहिए, अपने खुद को हिंदी में ही बोलना चाहिए। क्योंकि मैं देखा अभी जापान गए थे बेटे के पास,
0: जी, जी, मैम।
1: वहां पे बेटा इंग्लिश भी नहीं चलती।
0: ओके।
1: वो अपनी जैपनीज लैंग्वेज बोलते हैं ना कि इंग्लिश। तो मतलब ज्यादातर इंग्लिश नहीं बोलते और अपनी भाषा बोलते हैं जैपनीज भाषा, तो इसलिए अपनी उनको भी नहीं वो लग रहा है ना कि अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही, तो मुझे अपनी भाषा बोलने में शर्माना नहीं चाहिए।
0: हमें गर्व के साथ अपनी हिंदी में,
1: जहाँ से है बिलोंग करते हैं हम अपनी भाषा वहाँ का ही बोलेंगे।
0: बिल्कुल मैम।
1: हाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि सामने वाला हिंदी नहीं समझ पा रहा है वहाँ पे इंग्लिश बोलना चाहिए, बट जो अगर हम हिंदी में हिंदी से बात कर सकते हैं तो वहाँ पे हिंदी का ही बोल इस्तेमाल करना चाहिए
0: उपयोग करना चाहिए हिंदी का।
1: जी, जी, जी, जी।
0: और हिंदी में कोई कविता है आपको याद मैम?
1: हिंदी में बच्चों का थी बहुत पोयम
0: जो आपकी टाइम की आपको याद हो अभी भी?
1: हम छोटे छोटे बच्चे हैं, नाम हमारे हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने में गोली खाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, भारत किसान बढ़ाएंगे।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल कर दी, आपके लिए जोरदार तालियां आज की सुबह। मोस्ट वेलकम मैम, एंड वंस अगेन आपको हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: हाँ हाँ, खुशी आपको भी और सभी सुनने वाली हमारी सुहागिन महिलाओं को भी हरतालिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहिए, एंड आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं सर सवर की, नजर ना लग जाए आपको, काला टीका लगा कर रखिएगा। मोस्ट वेलकम, नाइस टॉकिंग टू यू मैम।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैम का नाम तो हम बताना आपको बता देते हैं, ये अलका वर्मा जी हैं बुद्धि बिहार से, हमारी रेगुलर लिसनर जिनकी आप वॉइस एवरी डे सुनते हैं वॉइस नोट, और मैम कोई अगर गाना सुनना भी चाहती है ना तो वो गुनगुना कर बताती हैं। अब आपने गेस कर लिया ना, हाँ जी वही मैम है। एंड अभी हम आपके यहाँ पर जो मैसेज आए उनको भी शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट मैसेज मेरे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? हाँ जी बिल्कुल, दुआएं हैं आपकी, हम बहुत अच्छे हैं। ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं रिहान अली जी जामा मस्जिद से, गली नंबर 3 से, और ये कहते हैं मैम एक ट्रैक हमें भी सुनवा दीजिएगा, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुलाम जलानी पाशा जी का मैसेज हमारे पास कुंदरकी से आया है आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपका शो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गणेश जी आप पर कृपा बनाए रखें हमेशा। और ये मैसेज हमें पहुँचाते हैं कार्तिक कश्यप बैंक कॉलोनी से, एंड इन्होंने भी गाने की रिक्वेस्ट भेजी है, बिल्कुल सभी के गाने हम यहाँ पर प्ले करेंगे, आप बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
2: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM। सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद। अगर

म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादी अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी। समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ पूरे 12 बज चुके हैं और दोस्तों बात कर लेते हैं आज मुरादाबाद के मौसम की। जी हाँ, अधिकतर बादल छाए रहने से लेकर तूफान रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। दोस्तों तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस एंड मौसम मतलब अधिकतर बादल छाए रहेंगे और छुटपुट गरज चमक के साथ बारिश या बौछार पड़ने की संभावना है। देखिए मौसम तो बदलता रहता है लेकिन हाँ, आप अपना ख्याल अच्छे से रखिए। इस मौसम में मानसून है और जब भी अगर घर से बाहर जाएं तो छाता रेनकोट साथ रखें क्योंकि बारिश कभी भी हो जाती है ना। सावधानी के साथ रहेगा एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। आज की सुबह आप सबने पार्टिसिपेट किया, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और हमारे पास यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नाम नहीं लिखा, बस गुड मॉर्निंग विश किया है। अगला मैसेज हमारे पास आए रामपुर से नरेश पाल जी का, नमस्ते खुशी मैम, आपको भी नमस्कार सर। और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं, पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में। तो चलिए दोस्तों, अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे सी यू सून 3 से 5। ओके, तो आप अपना ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, नई बातों के साथ, नई एनर्जी के साथ एंड नए गानों के साथ हाजिर होंगे हम फिर से एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। तब तक के लिए आपको बने रहना है, सुनते रहना है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिएगा, ठीक है एवरीवन। वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल एफएम मुरादाबाद लिसनर्स को। और बाकी आज हरतालिका तीज भी है, उस पावन पर्व की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपको पता ही है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी है, तो आपको विशेष हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में बात करना मतलब अपने आप में एक गर्व की बात है और कभी भी जब आप किसी से सामने वाले व्यक्ति से बात करें, मुझे लगता है कि लैंग्वेज ना, भाषा वो बोलनी चाहिए जिस भाषा से हमारी बात को सामने वाले इंसान अच्छे से समझ पाएँ, आसान तरीके से समझ पाएँ, तो उस भाषा का हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों दोस्तों, और हम तो हिंदुस्तानी हैं तो प्राउडली हिंदी में बात कीजिएगा गर्व के साथ। अभी मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। पिछले दो एपिसोड में हमने HPV वैक्सीन को लेकर डर, अफवाह, पीरियड्स और बांझपन की बात की। आज हम एक और जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, मान लिया कि टीका जरूरी है, सुरक्षित है और अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आम परिवार क्या करे, कहाँ जाए, कितना खर्च होगा, क्या सरकारी अस्पताल में मिलेगा, क्या पहले रजिस्ट्रेशन होगा और क्या सिर्फ बेटी का टीका ही काफी है या फिर घर की बड़ी महिलाओं को भी कुछ करना चाहिए। इस सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ फिर से है टीकन देवी और सुनीता। सुनीता, अब आपका मन कैसा है?
1: अब पहले जैसा डर नहीं है, पर अब चिंता दूरी है। प्रक्रिया की, कहाँ जाए, किस से पूछे, कागज क्या लेंगे, भीड़ होगी या नहीं, लौटना ना पड़ जाए, हमारे जैसे परिवारों में यही व्यवहारिक बातें भी बड़ा फर्क डालती हैं।
2: बिल्कुल, और सही स्वास्थ्य सेवा तभी काम आती है जब वह लोगों की पहुंच के अंदर हो, समझ में आए और लोग बिना शर्म बिना डरे सेवाओं का लाभ उठा सकें। इसलिए आज हम सिर्फ क्या नहीं कैसे की बात करेंगे।
0: तो सबसे पहले सीधी सूचना, उपलब्ध सरकारी सामग्री में साफ

0: खुशी की बात है। इसका मतलब ये है कि रोकथाम सिर्फ शहरों के बड़े निजी अस्पताल या पैसे वालों तक सीमित ना रहे। गांव, कस्बे, कम आय वाले परिवार सबकी बेटियां सुरक्षा पाएं।
1: लेकिन सिर्फ मुफ्त कहना काफी नहीं, लोगों को रास्ता भी साफ चाहिए। तो टीकन भाभी, कोई परिवार क्या क्या कर सकता है?
0: पहला रास्ता, अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल या सरकारी मेडिकल कॉलेज में जानकारी लें। दूसरा, यदि स्कूल से सूचना आए तो स्कूल से पूछें कि कैंप कहां और कब लगेगा। तीसरा, अपने इलाके की आशा एएनएम या स्वास्थ्य कार्यकर्ता से बात करें। चौथी बात, जहां लागू हो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। पांचवा, यदि कोई बात समझ ना आए पूछने में शर्म ना करें, स्वास्थ्य सेवा सवाल पूछने वालों के लिए ही है।
2: यूविन का नाम तो सुना है पर सबको मोबाइल चलाना थोड़ी आता है।
0: बिल्कुल सही, इसीलिए डिजिटल सुविधा एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता नहीं। अगर मोबाइल इंटरनेट ओटीपी ये सब मुश्किल लगे तो सीधे स्वास्थ्य केंद्र जाओ या आशा से मदद लो, तकनीकी मदद के लिए छाटने के लिए नहीं।
1: यह बिंदु बहुत अहम है। भारत जैसे समाज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स उपयोगी हैं, लेकिन उनमें वर्ग, लिंग और पहुंच की असमानताएं भी होती हैं। इसलिए सेवा का ऑफलाइन रास्ता हमेशा मजबूत रहना चाहिए।
2: हाँ, हमारे यहाँ तो कई घरों में मोबाइल भी पति के पास रहता है। ऊपर से ऐप डाउनलोड, नाम लिखना, अंग्रेजी पढ़ना सब आसान नहीं।
0: तो फिर सीधा रास्ता अपनाओ, स्वास्थ्य केंद्र जाओ, यही तो सरकारी व्यवस्था का मतलब है, जनता को दरवाजे पर सुविधा मिले।
1: जरा दृश्य बता दें, सुनीता, टीकन भाभी और मैं आपका दोस्त सरकारी केंद्र पहुंच गए हैं। सुनीता के मन में हिचक है और उन्हें लग रहा है लोग क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे, कहीं डांट ना दें। लेकिन कई परिवारों को भी यही स्थिति होती है। तो अब आप जरा अपना अनुभव श्रोताओं के साथ साक्षा करें।
2: मैं तो सच कहूँ, पहली बार गई तो लगा कोई कहेगा इतनी देर से क्यों आई या पहले जानकारी क्यों नहीं ली, पर जब वहाँ बैठी एएनएम बहन ने ठीक से समझाया तो आधा डर वहीं उतर गया।
0: यही तो भरोसा बनता है। स्वास्थ्य व्यवस्था का चेहरा सिर्फ इमारत नहीं, वहाँ बैठा इंसान भी होता है। अगर वह सम्मान से बात करें तो सेवा का असर दोगुना हो जाता है।
1: और यही एक भी सीख है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सिर्फ इंजेक्शन या दवा नहीं, संवाद, सम्मान और भरोसा भी है, खासकर महिलाओं और किशोरियों के लिए।
2: एक और बात समझ में आई, हम बेटी के टीके के लिए गए थे पर वहाँ महिलाओं की जांच की भी बात हुई। पहले तो लगा यह अलग मुद्दा है, फिर समझ आया कि नहीं, यह जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अधिकार संदेश साफ कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। कम उम्र की लड़कियों के लिए समय पर HPV वैक्सीन और महिलाओं के लिए नियमित स्क्रीनिंग। इसका मतलब ये नहीं कि टीका सब कुछ अकेले कर देगा, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा की एक श्रृंखला है। पहला कदम टीका, बाद के वर्षों में जांच और समय पर पहचान।
1: और उपलब्ध सरकारी संचार में यह भी कहा गया है कि महिलाओं के लिए सर्वाइकल जांच नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में निशुल्क उपलब्ध हो सकती है, तथा समय पर पहचान जीवन रक्षक हो सकती है। यानी घर की बड़ी महिलाओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह तो लड़कियों की बात है, इससे क्या लेना।
2: यही बात मेरे मन को लगी, मैं बेटी के साथ गई थी पर वापस आते वक्त लगा कि मुझे खुद भी अपनी जांच के बारे में पूछना चाहिए। हम औरतें अक्सर यही सोचते हैं, अभी क्या जरूरत है, सब कुछ लक्षण होने तक देखेंगे, पर जब तक देर हो जाए तो।
0: इसीलिए जागरूकता जरूरी है, जो बीमारी रोकी जा सकती है उसे चुपी और देर के भरोसे ना छोड़ा जा सके।
1: अब बात करते हैं उस घरेलू तनाव की जो अक्सर फैसले के रास्ते में आता है। मान लीजिए माँ तैयार है पर दादी कहती हैं हमारे जमाने में यह सब नहीं था। पति कहता है देख लो मुझे नहीं पता। पड़ोसन कहती है सरकारी चीज है संभल कर जरा। ऐसे में क्या करें?
2: यही तो हुआ मेरे साथ, एक तरफ बेटी का भविष्य, दूसरी तरफ घर की अलग अलग आवाजें। फिर लगा कि अगर मैं हर किसी को खुश करने लगूंगी

0: तो शायद सही फैसला कभी नहीं ले पाऊंगी।
1: इसीलिए निर्णय की दूरी साफ रखो, घर की राय सुनो, पर अंतिम आधार प्रमाण हो। जो बात डॉक्टर, मंत्रालय, वैज्ञानिक, जागरूकता सामग्री और विश्वसनीय स्रोत कह रहे हैं वही प्राथमिक होनी चाहिए। परिवार का डर सम्मान के लायक है, पर झूठ का आधार नहीं।
0: और अब मुझे यह भी लगता है कि एक माँ को सिर्फ भावुक कहकर किनारे नहीं कर देना चाहिए। वह सवाल पूछ रही है, इसका मतलब वह जिम्मेदार है।
1: सही कहा, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में माताओं की भूमिका केंद्रीय होती है, लेकिन उन्हें जानकारी और सहारा दोनों चाहिए, सिर्फ निर्देश नहीं।
2: यह बात नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और संचार कार्यकर्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यदि अभियान में सम्मानजनक संवाद नहीं होगा तो अफवाह खाली जगह भर देगी। यदि परिवार को सिर्फ आदेश मिलेगा, समझ नहीं, तो भरोसा नहीं बनेगा। इसलिए ऐसे सेल के जैसे कार्यक्रम जहां सवाल छोटे नहीं माने जाते हैं।
0: टीकन भाभी, जब मैं केंद्र गई थी वहां किसी ने कहा कि पहले रजिस्टर हो जाओ, फिर तारीख मिलेगा। किसी ने यू विन कहा, मुझे लगा फिर वही मुश्किल।
1: पर तुमने पूछा ना?
0: हाँ पूछा, तब समझ आया कि विकल्प है। अगर ऑनलाइन मदद मिले तो ठीक है, नहीं तो केंद्र पर ही जानकारी मिल सकती है। पहले मैं पूछने से डरती थी, अब नहीं।
1: यही नागरिक समझ है, मुझे नहीं आता, कह देना हार नहीं है, मुझे समझाइए, कहना अधिकार है।
2: यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। श्रोताओं ध्यान से सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं में जानकारी मांगना झिझक की नहीं अधिकार का विषय है, खासकर उन समुदायों के लिए जो अक्सर औपचारिक संस्थानों में से दूरी महसूस करते हैं।
0: और एक बात, जब मैंने सुना कि यह लड़कियों के लिए मुफ्त है तो मन में एक राहत आई, पर साथ ही एक दर्द भी है। कितनी बार महिलाएं और लड़कियां ऐसे चीजों से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सुविधा उनके लिए है।
1: यही सूचना असमानता है, सुविधा होती है पर खबर पहुंचती नहीं, या खबर पहुंचती है तो उसके साथ अफवाहें भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए जानकारी को सिर्फ जानकारी देना काफी नहीं, उसे समझ में आने वाली भाषा में भरोसे वाले माध्यम से पहुंचाना भी जरूरी है।
2: और यही कारण है कि सामुदायिक रेडियो, स्थानीय स्वास्थ्य संवाद, आशा कार्यकर्ता, स्कूल, महिला समूह, ये सब इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक दिल्ली वाला संदेश तभी असर डाल करता है जब वह गांव की बोली, कस्बे की चिंता और घर की रसोई तक पहुंचे।
0: हम जैसे घरों में तो रेडियो की बात मोबाइल से ज्यादा भरोसेमंद लगती है, क्योंकि यहाँ कोई हमारे ही जैसे लोगों की भाषा में बात करता है।
1: हाँ, क्योंकि ये उपदेश नहीं, साथ चलने वाली बातें होती हैं।
2: अब एक उपयोगी सूची बना लेते हैं। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष की है तो आप क्या करें? पहला, निकटतम सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला अस्पताल या स्कूल कैंप की जानकारी लें। दूसरा, आशा, ANM या डॉक्टर से पूछें कि HPV वैक्सीन कहां और कब उपलब्ध है। तीसरा, यदि उपलब्ध हो तो यू विन पर पंजीकरण की जानकारी लें। चौथा, किसी भी फॉरवर्ड वीडियो या बिना स्रोत के दावे की अंतिम सच को ना माने। पांचवा, बेटी से खुलकर बात करें, उसे बताएं कि यह सुरक्षा का कदम है। छठा, घर की 30 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में भी पूछें। सातवा, किसी भी झिझक या भ्रम को लेकर वापस सवाल पूछने से ना हिचकें।
0: यही सूची में लिख लेना चाहती हूँ, क्योंकि बातों में बहुत कुछ भूल जाती हूँ, पर लिखी चीजें साथ रहती हैं।
1: लिखो और चाहो तो दीवार पर चिपका दो, जैसे ही राशन की सूची लगती है वैसे ही सेहत की सूची भी लगे।
2: बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि स्वास्थ्य भी घरेलू योजना का हिस्सा होना चाहिए, कोई आकस्मिक घटना नहीं।
0: टीकन, अब मैं बेटी के टीके लेकर तैयार हूँ, पर एक अजीब सी बात है, पहले जो डर था अब उसी की जिम्मेदारी आ गई है। लगता है अब मुझे औरों को भी बताना चाहिए।
1: यही तो सार्वजनिक भलाई है, जब एक घर समझता है तो अगला घर थोड़ा आसान हो जाता है। तुम अपने पड़ोसन से कह सकती हो, मैंने जाकर पूछा, मुझे ये जानकारी मिली, ये उपदेश नई अनुभव साझा करना है।
0: मैं अपनी जानी को भी कहूँगी कि अपनी जांच के बारे में पूछे। वह हमेशा कहती हैं, हमारे लिए कौन सा समय है। अब मैं कहूँगी, समय नहीं बताना, निकालना पड़ता है।
1: सही, और ये सिर्फ बीमारी से लड़ने वाली बात नहीं, अपने जीवन की कीमती पहचान की बात है।
2: यही बुनियादी संदेश है। महिलाओं की सेहत फुर्सत का विषय नहीं है। बेटियों की रोकथाम और माताओं की जांच दोनों परिवार की मुख्य जिम्मेदारी है, अतिरिक्त बोझ नहीं।
1: और मैं यही कहूँगी, सरकारी दरवाजा तभी अपना लगता है जब हम उस तक जाने की हिम्मत करें। डर, संकोच और क्या कहेंगे को पीछे छोड़ो, पूछो, समझो, फिर फैसला करो।
0: और मेरी तरफ से, मैं अब सिर्फ अपनी बेटी को टीका दिलवाने नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर की महिलाओं की जांच की बात भी उठाऊंगी, क्योंकि सुरक्षा आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
2: बहुत सही, यही सेहत सही लाभ करी। एक सवाल से शुरू होकर पूरे परिवार की समझ तक पहुंचना। यदि आपकी बेटी 14 वर्ष है, अपने नजदीक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जानकारी लें। और यदि आपके घर में 30 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं हैं, तो सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में अवश्य पूछें। अगले कार्यक्रम तक याद रखिए, सही जानकारी, समय पर कदम, सम्मानजनक संवाद, यही असली सुरक्षा है। अंत से पहले आज की मुख्य बातें। एक, 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है। दूसरा, जहां सुविधा हो यूविन पर पंजीकृत और अपॉइंटमेंट की जानकारी ली जा सकती है। जहां ना हो सीधे स्वास्थ्य केंद्र या आशा ANM से संपर्क करें। तीन, डिजिटल सुविधा मदद के लिए है, बाधा के लिए नहीं। चौथा, सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में किशोरियों का टीकाकरण और वयस्क महिलाओं की नियमित स्क्रीनिंग दोनों महत्वपूर्ण हैं। पांचवा, परिवार की राय सुनिए, पर अंतिम निर्णय प्रमाणित जानकारी और डॉक्टर की सलाह पर टिकाइए। छठा, सवाल पूछना शर्म नहीं, अधिकार है। सातवा, जो सुविधा आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना। सातवा, जो सुविधाएं आपके लिए बनी है उसके बारे में जानकारी लेना, यह आपकी ताकत है। और साथियों, यह एक बात और जोड़ना जरूरी है, जब हम कहते हैं कि सेवा सरकारी केंद्र पर उपलब्ध है, तो उसका मतलब सिर्फ जाइए और इंजेक्शन लगवा लीजिए नहीं होता है। इसका मतलब भी है कि नागरिक को सेवा के बारे में स्पष्ट सूचना मिले, सम्मान मिले और उसके सवालों को हल्के में ना लिया जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब स्वास्थ्य जवाबदेह हो और लोग उस जुड़ने का भरोसा रख। सार्वजनिक स्वास्थ्य तभी मजबूत होगा जब व्यवस्था जवाबदेही हो और लोग उससे जुड़ने का भरोसा रखें।
1: और जवाबदेही तो दो तरफ से होती है, व्यवस्था को समझना चाहिए और लोगों को पूछना चाहिए। कई बार हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि यह हमारे बस की बात नहीं, यही दूरी कम करनी है।
0: अब मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी बेटी का मुद्दा नहीं है, हमारे पूरे मोहल्ले का मुद्दा है। क्योंकि अगर एक घर जानकारी से जुड़ा है और दूसरा अफवाह से, तो फर्क साफ दिखेगा।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जागरूकता अभियान सिर्फ पोस्टर लगाकर पूरे नहीं होते, उन्हें बातचीत बनानी पड़ती है। आंगन में, स्कूल में, महिला समूह में, रेडियो पर, तभी देश जीत रहता है।
2: यह बिंदु विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां भाषा, डिजिटल पहुंच और स्वास्थ्य संस्थानों के साथ दूरी जैसे चुनौतियां हों। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि सूचना जारी हो गई इसलिए काम पूरा हो गया। नहीं, इसका असली काम तब पूरा होगा जब घर की महिलाएं कहें, मुझे समझ में आ गया है।
0: सही कहा, पहले मुझे भी सिर्फ इतना पता था कि कोई नया टीका है। अब मुझे पता है क्या है, कहाँ मिलेगा, किससे पूछना है और अपने लिए क्या पूछना है।
1: यही बदलाव है, अधूरी खबर से पूरी समझ तक।
2: एक और अंतिम व्यावहारिक बात, यदि किसी कारण से पहली बार केंद्र जाकर पूरी जानकारी ना मिले, या भीड़ हो या कोई स्टाफ उपलब्ध ना हो, तो हार मत मानिए, दोबारा जाइए, आशा से पूछिए, उच्चतर केंद्र की जानकारी लीजिए। सार्वजनिक सुविधा का उपयोग करना धैर्य भी मांगता है, लेकिन उसके बिना बराबरी नहीं आती।
0: अब मैं यह भी समझ गई हूँ कि एक बार लौट आने का मतलब छोड़ देना नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल नहीं, सेहत का काम धक्का देकर नहीं, ठहर कर करना पड़ता है।
2: और शायद यही इस पूरे सिलसिले का सबसे बड़ी सीख है, सुरक्षा एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। जानकारी, सवाल, सेवा, टीका, जांच और सामूहिक जिम्मेदारी, इन्हीं से भविष्य सुरक्षित होता है। हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
2: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
2: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
3: सेहत सही तो लाभ कई।
0: सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6। अब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेहत से ही लाभ कई प्रोग्राम और मैं हूं आपका दोस्त आरजे आनंद, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। और आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है श्रोताओं। आज का एपिसोड उन माताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके घर में अभी अभी नन्ना मेहमान आया है। श्रोताओं, नवजात शिशु की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी सी गलती भी कभी कभी भारी पड़ सकती है। तो आज हमारी मदद करेंगी टीकन भाभी, वो हमें बताएंगी कि माँ और नवजात का ख्याल कैसे रखा जाए और साथ ही सही खान पान से नवजात और माँ का भविष्य कैसे मजबूत बन सकता है। भाभी बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे शो सेहत से ही लाभ कई में। भाभी, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे को जन्म के बाद शहद, घुट्टी या फिर गाय बकरी का दूध पिलाया जाता है, कुछ लोग तो पानी भी दे देते हैं। भाभी, असल में सही है क्या ये?
4: सच तो ये है कि नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा दूध ही देना चाहिए। इसे कोलोस्टोम कहते हैं, यानी बच्चे की पहली दवा है। इसमें इतनी ताकत होती है कि बच्चा बीमारियों से बचा रहता है और उसका शरीर मजबूत होता है। हमारे गांव की गीता ने अभी कुछ ही महीने पहले बेटे को जन्म दिया। घर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले शहद चटा दो, घुट्टी दे दो, लेकिन गीता ने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर साहब की सलाह मानी। उसने बच्चे को तुरंत अपना पहला गाढ़ा दूध पिलाया। आज उसका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, ना उसे बार बार सर्दी जुकाम होता है, ना ही पेट की कोई दिक्कत। याद रखिए कि ना शहद, ना घुटी, ना गाय बकरी का दूध और ना ही पानी, बच्चे की असली ताकत तो उसकी माँ के दूध में होती है।
3: भाभी, कभी कभी बच्चे का जन्म ऑपरेशन से होता है, ऐसे में माँ को होश आने में समय लग सकता है, उस वक्त नवजात को डब्बे बंद दूध या बोतल से दूध दिया जा सकता है क्या?
4: बिल्कुल नहीं। अगर माँ को होश आने में कुछ घंटे लग रहे हैं तो उस दौरान माँ के साथ आए हुए किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को चाहिए कि शिशु को माँ की छाती से लगाकर जल्द से जल्द स्तनपान शुरू करवाए। शिशु को तो ना डिब्बे बंद दूध देना चाहिए, ना ही पानी और ना ही किसी और का दूध। बच्चे के लिए सबसे अच्छा और सुरक्षित दूध सिर्फ उसकी माँ का ही होता है। और एक बात खास याद रखे, बच्चे को कभी भी बोतल से दूध ना दे। बोतल से संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और बच्चे की सेहत खराब हो सकती है, इसीलिए बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करना।
3: भाभी, अक्सर कहा जाता है कि बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर ही दूध पिलाना बहुत जरूरी है, लेकिन इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है?
4: देखिए, बच्चे को जन्म के 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाने के कई फायदे हैं। सबसे पहले तो बच्चे को कोलोस्टम मिलता है, इसे बच्चे का पहला टीकाकरण कहा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी ताकत होती है जो बच्चे को बीमारियों से बचाती है। दूसरा फायदा कि बच्चा जब माँ के शरीर से सटा रहता है तो उसे पर्याप्त गर्माहट मिलती है, इससे वो आराम और सुरक्षित महसूस करता है। तीसरा, माँ को भी इसका फायदा होता है, प्रसव के बाद उसका रक्तचाप कम हो जाता है और सेहत जल्दी ही संभल जाती है। साथ ही साबित हुआ है कि अगर बच्चे को जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराया जाए तो नवजात शिशु की कुछ मौतों में से करीब 22% रोकी जा सकती है।
3: भाभी, डॉक्टर कहते हैं कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा आहार है, आखिर इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं?
4: इसमें वो सब कुछ है जिसके नवजात को शुरुआत में सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जैसे बच्चे के शरीर को बढ़ाने के लिए ताकत चाहिए तो उसमें प्रोटीन है, दिमाग को तेज और शरीर को गर्म रखने के लिए फैट है, ताकत देने के लिए कार्बोहाइड्रेट है, हड्डियां मजबूत बनाने और खून बनाने के लिए विटामिन और मिनरल्स है। माँ के दूध में ऐसी ताकत होती है जो बच्चों को बीमारियों से बचाती है, मतलब बच्चा अगर सिर्फ माँ का दूध पिएगा तो उसे बाहर से दवा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए खाना भी है और दवा भी। होती है।
3: भाभी, अक्सर माँ को समझ नहीं आता कि बच्चे को कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और अगर बच्चा कम वजन का पैदा हुआ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए।
4: बच्चा जब भी चाहे, चाहे दिन में या रात, माँ को बार बार दूध पिलाना चाहिए। बच्चा रोकर या इशारा करके बता दे कि उसे भूख लगी है, ऐसे समय पर दूध रोकना नहीं चाहिए। अगर बच्चा कम वजन का है यानी 2.5 किलो से कम, तो उसे और भी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। ऐसे बच्चों को हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना जरूरी है। अगर बच्चा माँ का दूध ढंग से नहीं पी पा रहा है तो माँ अपना दूध निकाल कर कप या छोटे साफ चम्मच से उसे पिला सकती है। हमारे गांव की सरोज का बेटा 2.5 किलो से भी कम वजन का पैदा हुआ था। शुरू में सबको चिंता थी कि बच्चा कमजोर रह गया है, लेकिन सरोज ने आशा बहन की सलाह मानी। उसने बच्चे को हर 2 घंटे पर दूध पिलाया। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हो गया।
3: भाभी, कैसे समझे कि बच्चा पूरा दूध पी रहा है और उसका पेट भर रहा है?
4: देखिए, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। अगर बच्चा दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब कर रहा है तो समझे कि उसे पर्याप्त दूध मिल रहा है। दूसरा, बच्चा अगर चैन से सो रहा है, जागने पर खेल रहा है और रो रो कर परेशान नहीं कर रहा है तो ये भी अच्छी निशानी है। और कुछ और सबसे पक्की बात ये है कि उसका वजन धीरे धीरे बढ़ता है।
3: भाभी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ठीक से स्तनपान नहीं कर पाता, ऐसे में माँ को अपना दूध निकालकर बच्चे को पिलाना पड़ता है, लेकिन ये काम कैसे किया जाएगा? कई बार इसे लेकर माँ बहुत घबराती है।
4: देखिए, दूध पिलाते समय माँ को आरामदायक स्थिति में होना चाहिए, पीठ के पीछे सहारा लेकर आराम से बैठना चाहिए ताकि थकान ना हो। बच्चे को भी कमर और नीचे के हिस्से से सहारा देकर गोद में अच्छे से पकड़ना चाहिए। बच्चे की पोजीशन बहुत जरूरी है, उसका पूरा शरीर और चेहरा माँ की तरफ होना चाहिए। और हाँ, जब बच्चा सही तरह से दूध पी रहा हो तो उसे गटकने की हकी सी आवाज भी सुनाई देती है। माँ और बच्चे दोनों आराम में हो तभी स्तनपान सही तरह से हो पाता है।
3: भाभी, कई बार मैं सुना है कि नई माओं को दूध पिलाते समय तन में सूजन, दर्द या सख्त जैसी परेशानियाँ हो जाती है, ऐसे में क्या करना चाहिए?
4: बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की परेशानी आम है। अगर माँ को ऐसा लगे तो सबसे पहले स्तन की धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। दूध पिलाने से पहले गर्म तौलिए से सेकने से भी आराम मिलता है।
3: अच्छा, मतलब मालिश और गर्म से काम आता है, लेकिन शिशु को दूध पिलाने में परेशानी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
4: इसके लिए माँ को आरामदायक अवस्था में बैठना चाहिए, शिशु को सही ढंग से स्तन से जोड़ना चाहिए। अगर स्तन ज्यादा भरा हुआ हो तो थोड़ा सा दूध पहले निकाल ले, इससे स्तन नरम हो जाएगा और बच्चा आसानी से मुंह में पकड़ पाएगा।
3: दूध पिलाना बच्चे के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन क्या माँ को भी इसका कोई फायदा होता है?
4: माँ के लिए भी बड़े फायदे हैं। जब बच्चा जन्म लेते ही दूध पीना शुरू करता है तो माँ का गर्भाशय सिकुड़ने लगता है, इससे पेसेटा भी जल्द बाहर आ जाता है और प्रसव के बाद ज्यादा खून बहने का खतरा भी कम हो जाता है। दूध पिलाने वाली माताओं को अपने खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन में 3 बार खाना खाए और वो भी पहले से करीब 1.5 गुना ज्यादा। बीच बीच में 2 बार हल्का फुल्का नाश्ता भी जरूरी है।
3: अच्छा भाभी, खाने में खास तौर पर क्या होना चाहिए?
4: हर दिन कम से 5 तरह की चीजें जरूर खानी चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, दूध, दही, फल और अनाज, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेंगे।
3: दोस्तों, आज की बातों से साफ है, माँ का दूध न सिर्फ बच्चे के लिए अमृत है बल्कि माँ की सेहत के लिए भी ढेर सारे फायदे लेकर आता है। याद रखिए, सेहत सही तो लाभ कई। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और माँ और बच्चे की सेहत पर फिर हम अहम बातें करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार। यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
6: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम सोच बदलो में। जी हाँ श्रोताओं, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे आनंद और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और श्रोताओं, आज सोच बदलो प्रोग्राम में हम बात करेंगे समाज के उन छोटी छोटी बातों को जो हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालती है, उन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में मैं अकेला आपका साथ नहीं दे रहा हूँ, मेरा साथ निभाने के लिए कुमकुम मेरी प्यारी सी दोस्त मौजूद है इस प्रोग्राम में। हेलो कुमकुम, आप कैसे हो?
5: हेलो आनंद, मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी बहुत अच्छे हैं।
3: बिल्कुल, हम जब अपने श्रोताओं से बात करने आते हैं तो हमारे अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा टेंशन चल रही हो लेकिन यहाँ स्टेशन में आके सब भूल जाते हैं और सब मधुर मधुर हो जाता है। क्यों, सही कहा ना?
5: बिल्कुल, मैं जिस टेंशन के साथ आई थी मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ कि मुझे दिक्कत क्या थी।
3: यार यही तो रेडियो की एक पावर होती है कि आप जो मर्जी मतलब जो है सोच लो लेकिन जैसे ही माइक ऑन बटन ऑन आपकी टेंशन छू मंतर, मतलब ऐसा लगता है कि एक नया जन्म ले दिया है हमने थोड़े टाइम के लिए। करेक्ट?
5: या बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हम नहीं है, कुछ नए जनरेट हो गया है।
3: एब्सोल्युटली सही कहा। सो चलिए श्रोताओं, आज जो है इस प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाएंगे और आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में सोच बदलो प्रोग्राम में मोबाइल की दुनिया या रिश्तों की दूरी।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आपके आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। आज की बात बहुत सिंपल है। हम अक्सर कहते हैं ना, आज हमारा मूड नहीं है, पढ़ाई करने का मूड नहीं है, एक्सरसाइज करने का मूड नहीं है, काम करने का मूड नहीं है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर हम हर जरूरी काम सिर्फ मूड देख कर करेंगे तो हमारी जिंदगी कितनी पीछे रह जाएगी, पता है ना आपको। मूड बदलता रहता है लेकिन हमारे गोल्स रोज नहीं बदलने चाहिए। यही जगह है जहाँ डिसिप्लिन यानी अनुशासन काम आता है। डिसिप्लिन कहता है मन करे या ना करे, जो जरूरी है उसका छोटा सा हिस्सा आज जरूर करें। तो आज का हमारा यही ब्यूटीफुल कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। मेरे साथ में यहाँ पर रीना भी हैं और करेंगी बहुत सारी बातें। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला। बताइए रीना, कैसे हाल चाल है आपकी?
1: मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो आजकल?
0: मैं भी ठीक हूँ। और रीना, क्या तुम भी ऐसा करते हो? अरे यार, बस 5 मिनट और सोने दो ना, अभी मैं उठ जाऊंगी।
1: यार पता नहीं, लेकिन मुझे ना अभी सुबह सुना ठंड लगने लग गई है।
0: और अभी मौसम में बहुत बदलाव आ गया है ना, चेंजेस हो गए हैं। जन्माष्टमी के बाद कहते भी हैं कि सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं और सुबह सुबह हल्की गुलाबी ठंड लगने लगी है। हाँ
1: ये तो है, मन नहीं करता मेरा सच में ना। पहले मैं जल्दी उठ जाती थी, लेकिन अब एक्चुअली क्या होता है कि बस यही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा और सो लेती हूँ, और थोड़े के चक्कर में ना लेट हो जाती हूँ। फिर मैं
0: फिर घड़ी की तरफ देखते हैं और
1: जल्दी उठ।
0: सुबह का अलार्म शायद हमारी जिंदगी का सबसे ईमानदार दोस्त है, पता है। वो रोज कहता है उठ जाओ, और हम कहते बस 5 मिनट और। फिर 5 मिनट, 10 मिनट होते हैं, 10 से 20, और 20 से अचानक अरे इतनी देर कैसे हो गई। यही छोटी सी आदत हमें बताती है कि डिसिप्लिन कितना जरूरी है। जल्दी उठना ही डिसिप्लिन नहीं है, असली डिसिप्लिन है जो तय किया जाता है उसे निभाइए। अगर आज आपने तय किया है कि 10 मिनट वॉक करेंगे तो 10 मिनट ही सही, लेकिन कीजिए जरूर। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस अपने फैसलों को अपने मूड से थोड़ा ऊपर रखिए, क्योंकि सुबह की पहली छोटी जीत पूरे दिन का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहती हूँ कि अगर आपने खुद से प्रॉमिस किया है ना कि सुबह मैं जल्दी उठूंगा और मैं सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करूंगा, वॉक करूंगा, मेडिटेशन करूंगा या करूंगी, तो आप ना उसको आलस पर मत टालिए, आप मूड पर मत टालिए कि आज मेरा मन नहीं है, आज नहीं कर मैं कल से शुरुआत करती हूँ। तो ये चीजें ना आपको आपकी जो डेडिकेशन है, जो आप करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपका पीछे छूट जाएगा। तो आपने जो खुद से वादा किया है उसको निभाइए और अपनी लाइफ में देखिएगा फिर कितने चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ जब इम्प्रूव होगी, जब आप एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे और आप फिट रहेंगे, तो फिर आपका हर चीज में, हर काम में आपका मन लगेगा। क्यों रीना?
1: बिल्कुल, ये तो तुमने सही कही है कि हर काम में मन लगता है, और जब आप सुबह, लेकिन वो तब है कि जब आप सुबह जल्दी उठते हो तब, क्योंकि एक्चुअली मैंने ये चीज फील किया है जब मैं सबसे पहले उठती थी सुबह सुबह। एक तो वातावरण बिल्कुल शांत, अलग ही नेचुरल हवा आपकी बॉडी के अंदर फील होता है, और सच में ऐसा लगता है कि भाई ये दुनिया है। और जो सुकून मिलता है ना सुबह उठने में, अगर आप लेट उठते हैं तो उसके बाद आप खुद भी फील करेंगे कि आपका सर भारी भारी होने लग जाता है और फिर सारा काम डिले हो जाता है। पहली बात तो ये,
0: फिर पूरे दिन की ना बैंड बज जाती है,
1: कोई भी काम आप ढंग में नहीं कर पाते
0: इसीलिए रीना आपने बोला ना कि सुबह का वो खूबसूरत सी सुबह, खूबसूरत सी वो ठंडी नेचुरल हवा जब हमारी बॉडी को छूती है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिविटी आती है, और वो गोल्डन मॉर्निंग ना हर कोई नहीं देख पाता है। बहुत लकी लोग होते हैं जो सुबह सवेरे का आनंद ले पाते हैं, सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाते हैं। क्यों रीना?
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वही हैबिट बहुत अच्छी होती है। आप चाहते कि सुबह जल्दी उठ जाइए, फिर दिन में सो जाइए जब आपको टाइम मिलता है,
0: दिन में रेस्ट कर सकते हैं आप। ये बात तो बिल्कुल सही की है रीना।
1: लेकिन अगर आपने सोच लिया कि भाई लेट उठना है और फिर दिन में भी सोना है, तो एक तो पहली बात तो आप दिन में सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका पूरा दिन अजीब सा रहेगा, मन भी भारी
0: लीजी लीजी रहता है ना, आलस आता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एवरीवन, एवरी मॉर्निंग आपको जल्दी उठना है। लेकिन जल्दी उठने के लिए ना आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा, ये तो याद रखो यार। अब आप रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, हाँ, और आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह क्यों नहीं उठ पाता, कैसे उठ पाएंगे आप? जब आप जल्दी सोएंगे तभी तो आप जल्दी उठ पाएंगे ना। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ एवरीवन कि रात का अपना रूटीन अच्छा रखोगे ना, तो अर्ली मॉर्निंग का रूटीन भी आपका अच्छा ही होगा।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, अदरवाइज फिर तो कुछ भी ठीक नहीं होता है, हर चीज चेंज होता है, चला जाता है आपकी जिंदगी में। और अगर मैं बात करूँ एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज के बाद और साथ ही साथ ये कहा जाता है सुबह का जो आप पढ़ते हैं ना,
0: दादी जी मम्मी पापा कहते थे बेटा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में,
1: वो पूरा दिन दिमाग में रहता है, अगले दिन तक मतलब तुम्हें हमेशा के लिए याद रहता है।
0: हाँ,
1: और ये बात फैक्ट है,
0: ये असर भी करती है ना।
1: हाँ, एक तो देखिए आपको परेशान करने वाला कोई नहीं होता है, आप
0: और आपकी बुक्स आपके साथ होती है और बिल्कुल सुनसान, कोई एक भी आवाज नहीं आती आपके कानों तक, पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, तो आप सुबह पढ़ सकते हैं आसानी से। और पढ़ाई का मूड का इंतजार मत कीजिए। सुबह के टाइम में ये भी होता है ना कि उठ जाते हैं, किताबें हाथ में ले लेते हैं, लेकिन वही फिर नींद आती रहती है और किताबों के साथ साथ खुद ही सो जाते हैं। मेरे साथ कभी मतलब बहुत बार हुआ है ऐसे, जब मैं स्कूल टाइम में अक्सर मेरे से होता था कि जब मैं सुबह पढ़ती थी उस टाइम हमारे घर में ये था कि दिन में कोई तुम्हें बोले ना बोले, लेकिन 4 बजे जरूर मम्मी पापा उठा देते थे हमारे कि अब तो तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। अब मम्मी पापा उठा के चले जाते, मैं बुक हाथ में लिए मस्त नींद में सोती रहती, मेरी मम्मी आती एक चपाटा मार
2: पर नींद सारी गायब हो जाती है।
0: हाँ, तो इसीलिए मन पर मत आश्रित रहिए कि जब मन करेगा जब भी हम पढ़ेंगे। मन तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मन को मनाएंगे, क्योंकि मन पर काबू करना इतना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ आपको ही परिश्रम करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार थोड़ा थोड़ा करते रहना। आज सिर्फ 30 मिनट पढ़िए, कल सिर्फ 30 मिनट, एक महीने में सोचिए कितने घंटे हो जाएंगे। आपको एक दिन में पूरा सिलेबस खत्म नहीं करना, बस आज एक छोटा सा टारगेट पूरा करना है। तो किताब खोलिए, फोन साइड में रखिए और खुद से कहिए मुझे पूरा नहीं करना, मुझे बस शुरू करना है। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे ना कि मैं पूरा करूंगी या पूरा करूंगा या बुक आज ही मैं खत्म कर लूंगा, तो ये आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करने से ही पूरा होता है। कहते हैं ना, जब हम बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो खुद पर आजमाइए ये चीजें और सोचिए कि मैं थोड़ा ही पढ़ूंगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि एग्जाम्स के टाइम ही हम पढ़ लेंगे, तो वो चीज नहीं होता है, और यही रीजन है कि हमारे मार्क्स कम आते हैं, फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं यार मैं क्या क्या पढ़ू, क्या पढ़ सकता हूँ। जब आप खुद खुद सोच कर देखिए, जब आप खुद एक दिन में एक बुक कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो एग्जाम के टाइम में जब इतने कम समय में 5-6 बुक्स कैसे आप कवर कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है।
2: राइट, तो उसके लिए जैसे आपने कहा रीना कि एवरी डे आप 30 मिनट्स पढ़िए, टाइम दीजिए, और ऐसे जब आप रेगुलर 30 मिनट्स अपनी बुक को देंगे जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट है आप वो पढ़ेंगे, तो इजीली आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और आपके माइंड पर प्रेशर भी नहीं पड़ेगा।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ता है। अदरवाइज एक दिन पढ़ेंगे तो भाई सच बता रही हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे आप। और सबसे जरूरी बात है हैबिट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम एक चीज छोड़ देते हैं ना, दूसरी बार उसकी हैबिट डालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बहुत कठिन होता है। और सबसे आज के टाइम में क्या है, मैं खुद से ही कन्वर्ट करती हूँ, किसी के ऊपर नहीं करना है। जब मैं खुद फोन चलाती हूँ तो कब से 7 से 10 बज जाते हैं मुझे भी नहीं पता चलता,
2: नहीं पता चलता यार।
0: तो वैसे ही सोचिए, आज मैं सच बताऊँ तो मैं लिखने बैठी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि 2 घंटे में सिर्फ 2 क्वेश्चन ही मैं कंप्लीट कर पाई हूँ। मतलब इतनी स्लो मेरी राइटिंग हो गई है, पहले ये था कि मैं जल्दी जल्दी लिखती थी,
2: 1 घंटे में इतने सारी पेपर्स हम कंप्लीट कर देते थे।
0: देखिए, देखा होगा 2 घंटे का पेपर होता था और कितने क्वेश्चन होते थे, हम फटाफट क्वेश्चन आंसर कर देते थे। लेकिन अभी मैं लिखने बैठी हूँ तो मुझे खुद रियलाइज हो रहा है कि मैं 2-3 लाइन लिखते लिखते मेरे हाथ दर्द होने लगे, मन ही नहीं कर रहा है कुछ लिखने का।
2: वो इस वजह से हो रहा है ना, क्योंकि काफी लॉन्ग टाइम हो गया।
0: हाँ, हैबिट खत्म हो गई, हैबिट सबसे बड़ी बात है।
2: अब फोन चलाने की हैबिट है, उंगलियां चलवा लो मोबाइल,
0: ऑनलाइन जमाना है, AI है, कुछ पूछना होता है उससे पूछ लेते हैं, वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें आने के बाद ना ये असर हमारे ऊपर ही पड़ रहा है।
2: हाँ।
0: क्योंकि हम जो खुद से लिखते थे, खुद से दिमाग लगाते थे, वो चीजें हम नहीं लगा
2: नहीं कर पा रहे हैं। Exactly.
0: तो मुझे लगता है कि भैया फोन को साइड रखिए और खुद से आप करके देखिए,
2: थोड़ा अपने दिमाग को भी दौड़ाइए।
0: हाँ, और आपको पहले वाला जो लाइफ होता था ना उसकी अनुभूति होगी, और फिर आपका दिमाग है ना, मतलब पूरा दिन किताबों में रहेगा, जो भी आप काम उसमें आपका दिमाग रहेगा, एक्स्ट्रा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
2: अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज करने का, सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज एक्सक्यूज क्या है?
0: एक्सक्यूजेज होगा,
2: एक्सक्यूज है, देखिए यहाँ पे।
0: हाँ, एक्सक्यूज।
2: एक्सरसाइज करने का सबसे पॉपुलर एक्सक्यूज क्या है? कल से कल सुबह से ही वॉक करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से योगा करूंगी, लेकिन वो कल आता ही नहीं है मैडम। एक्सरसाइज शुरू करने के लिए आपको 2 घंटे नहीं चाहिए, शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की वॉक से हो सकती है, और अगर किसी दिन मन नहीं है तो खुद से कहिए सिर्फ 5 मिनट और कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग अक्सर पूरे काम से डरता है। शुरुआत से नहीं। याद रखिए, फिटनेस का रास्ता मोटिवेशन से नहीं रूटीन से बनता है। आज सिर्फ 10 मिनट अपने शरीर को दीजिए, शायद यही 10 मिनट आगे चलकर आपकी सबसे अच्छी हैबिट बन जाए। यूरिना,
1: हाँ ये तो देखो तुमने सही बात कही है कि हैबिट आगे चलकर बनी जाती। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत करो पहले। अगर सोचते रह जाएंगे आज करेंगे कल करेंगे
2: तो करेगी कल, तो कल तो आएगा ही नहीं,
1: नहीं।
2: हाँ, कल कभी आएगा नहीं और हम फिट रह नहीं पाएंगे। तो फिट रहना है आपको, यंग दिखना है ना बिल्कुल शिल्पा शेट्टी की तरह, तो आपको ना एक्सरसाइज भी करनी होगी।
1: जी अब सोच के देखिए वो 51 की है।
2: अरे यार 16-13 साल की लड़की है टक्कर देती है। हाँ आजकल के जितने भी यंग्स गर्ल्स हैं उनके यू नो बराबरी वो लेबल पर रहती हैं।
1: मतलब उनके बराबर तो हम भी नहीं है यार, सच बताओ तो। वो जितना मतलब
2: उनकी बेबी
1: हैं,
2: तो उनकी बेबी हैं वो, अभी भी लगती नहीं है कि उनकी बेबी हैं। ऐसा लगता है कि अभी उनकी शादी हो जाएगी दोबारा से,
1: अभी वो 2-3 शादी कर लेंगी तब भी चल देगी
2: वो यंग लगेंगी यार। तो इसीलिए हाँ। मैं आपसे कह रही हूँ दोस्तों, आप भी एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो एंड वॉक करो, क्योंकि जो फिट है वो हिट है। और आप भी चाहते हैं ना कि आप भी हिट रहेंगे एकदम शिल्पा शेट्टी की तरह, आप भी हिट दिखना चाहती है, फिट दिखना चाहती है और हिट भी होना चाहती है। तो बस उसके लिए आप अपना ख्याल रखो, हेल्दी डाइट लो, एवरी डे एक्सरसाइज करो एंड माइंड भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है आपको।
1: और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुम भूल गई हो बताना।
2: अच्छा बताइए मैम।
1: खाना
2: नहीं, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है यार, कभी कभी चलता है वो भी हेल्दी, ठीक है, रेगुलर नहीं खाना है, क्योंकि आपका घर का बना हुआ सबसे हेल्दी फूड होता है।
1: हाँ और वो आप खाएंगे तो मुझे लगता है कि आप सबसे ज्यादा हेल्दी भी रहेंगे।
2: हेल्दी रहेंगे और घर पर हम एकदम, हमें पता है कि हम किस चीज से बना रहे हैं।
1: और आप अपनी मर्जी से बना सकते हो, जितना जो चीज डालना है आप आसानी से डाल सकते हो।
2: इजीली
1: आपको लगता है कि भाई हम मिर्च में ज्यादा नहीं खाते तो बहुत कम क्वांटिटी में डालेंगे, लेकिन बाहर थोड़ी पता है कि आपके मूड के हिसाब से कोई तो खाना नहीं बनाता,
2: नहीं बनाएगा। या आई एग्री विद यू,
1: उनसे बल्कि आप बोलें ऑर्डर भी करेंगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे अच्छा मिर्च कितना डालना चाहिए, अच्छा सर तेल कितना डालो, ये कभी नहीं पूछता है कोई भी। तो सोच कर देखिए, बाहर के खाने अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं कहती अच्छे नहीं होते, टेस्टी भी होते हैं, मजा आता है खाने के, खाने खाकर।
2: भैया ये लड़की हमेशा खाने की बातों पर ही आ जाती है, क्योंकि ये खाने पीने की बहुत बड़ी शौकीन है। और मुझे लगता है कि जो खाने पीने का शौकीन होता है ना, वो इंसान कहीं भी जाए उसको ना वो अपने ट्रैक पे आ ही जाता है। तो रीना बहुत बड़ी फूडी लड़की है, इनफैक्ट मैं भी फूडी हूँ बट रीना से ज्यादा नहीं, रीना
1: मैं
2: से
1: ज्यादा गाइस।
2: नो,
1: देखो मैं इसके साथ रहती हूँ, आप नहीं रहते तो आपको नहीं पता है।
2: अच्छा दोस्तों ऐसी बात है, तो एक दिन आप ऑफिस जरूर आइए और
1: लेकर आइए,
2: ये तो ठीक है। चलो
1: चलिए फिलहाल अपने,
2: अभी तो अभी हम आपको कुछ देते हैं, वो क्या है एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक यहाँ पर हम लेते हैं और वो एक प्यारा सा गाना आपको सुनवाते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और भी गपशप करेंगे एंड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन बातें आपके लिए लेकर आए हैं। तो बस आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: क्या बात है श्रोताओ, खुशी ने आपको बहुत ही अच्छा तोहफा दे दिया है और इस तोहफे के बाद हम फिर से कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातें करने के लिए। फिलहाल हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फोन और डायरेक्शन। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अभी फोन हाथ में है, आई नो मुझे पता है कि आप सभी के हाथ में भी फोन है, खुद से पूछिए मैं इसे किस काम के लिए खोल रहा हूँ। कभी हम नहीं पूछते, इसे नहीं सोचते भी नहीं है कि आखिरकार हम फोन उठा रहे हैं तो किस काम के लिए उठा रहे हैं, मतलब करने जाते हैं कुछ और करने कुछ और लग जाते हैं।
1: अगर हाँ, ये जैसे आपने बोला अभी वाली बात बोली है कि फोन किस लिए चलाते हैं, हम फोन उठाते हैं क्योंकि चलो अपनी आज दोस्त से बात कर लेते हैं, मम्मी को कॉल लगा लेते हैं, और कॉल लगाते तो नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम पे पहुंच जाते हैं, हाँ फेसबुक पर पहुंच जाते हैं,
0: रील्स देखने शुरू देते हैं, अच्छा स्टोरी लगाना है।
1: फिर जब एक घंटा हो जाता है ना, जब डाटा का नोटिफिकेशन आता है कि 50% आपका डाटा खत्म हो गया है, तभी याद आता है अरे मम्मी को कॉल करना था।
0: हाँ, उसके बाद हम मैसेज देखते हैं, काम करने या बस आदत से है। हम कहते हैं एक रील देखता हूँ, और फिर मतलब हम यही सोचते हैं ना कि हमें एक रील देखना है, लेकिन एक रील के चक्कर में हम ना जाने दूसरा तीसरा 3-2 घंटे कब खत्म हो जाते हैं, हमें भी कुछ नहीं पता होता है, आधा घंटा निकल जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब है फोन छोड़ना नहीं, मतलब फोन का इस्तेमाल आप तय करें, फोन आपकी अटेंशन तय नहीं करे। काम के 20 मिनट में नोटिफिकेशन बंद करके देखिए, हो सकता है आपको पता चले कि आपके पास समय की कमी नहीं थी, बस फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके काम के ऊपर था। वो तब होएगा जब आप फोन की नोटिफिकेशन बंद करेंगे। एक्चुअल क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, इनफेक्ट पूजा भी करते हैं ना, और फोन का नोटिफिकेशन आ गया तो आरती छोड़ेंगे, पहले मैसेज देखते हैं और पूजा करेंगे, साथ ही साथ अगर भगवान जी के भोग भी लगा रहे हैं ना, फोन आ गया किसी का, जरूरतमंद इंसान का, वही फेवरेट वाला इंसान है, मन पसंदीदा इंसान है, तो पहले फोन अटेंड करेंगे, वो भगवान जी को बोलेंगे 2 मिनट रुक जाओ, बाद में भोग लगा दूंगी मैं आपका। और ये होता है, मंदिर में जाएंगे तो देखिए माथा टेकने से पहले हम रील बनाते हैं, स्नैप बनाते हैं, पहले वीडियोस बनाने लग जाते हैं, फोटो खिंचवाने लग जाते हैं, और भगवान से कहते हैं अरे भगवान दर्शन तो हम कर ही लेंगे आपका, टेंशन मत लो, सब्र रखो आप, हम उल्टा भगवान को सब्र दिलाने लग जाते हैं।
1: तो रीना जैसे आप बोल रहे हो बिल्कुल कि फोन जो है हमारा नोटिफिकेशन, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें नोटिफिकेशन ऑफ रखना चाहिए ताकि हम डिस्टर्ब ना हों, है ना। और जैसे आपने कहा कि हम टेंपल में पूजा कर रहे हैं तो कोई नोटिफिकेशन आता है तो हमारा तुरंत माइंड वहाँ पर चला जाता है, तो हमारा माइंड वहाँ से ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना तो पूरा फोकस एक ही काम पर रखिए, अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए, उससे क्या होगा आपके काम में ना मन लगा रहेगा और आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे फोकस्ड के साथ। तो अब नेक्स्ट टाइम आपको याद रख

0: है जब भी आप कोई काम करें तो नोटिफिकेशन ऑफ रखें, ठीक है। चलो अभी हम अब अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हमारे घर के लोगों से डिसिप्लिन सीखना हो तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। घर में कितने लोग हैं जो मूड देखकर जिम्मेदारी निभाते हैं। माँ का मूड हो या ना हो, घर संभालना होता ही है। पिता का मन हो या ना हो, काम पर जाना ही होता है। एक वर्किंग पर्सन थका हुआ हो सकता है फिर भी जरूरी काम करता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मूड से बड़ी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आराम जरूरी नहीं। आराम भी डिसिप्लिन का हिस्सा है, बस फर्क समझिए। जरूरत के समय पर आराम करना और हर जरूरी काम को आप आलस के नाम पर टालना दो अलग अलग बातें होती हैं। आज खुद से यही सवाल पूछिए, मैं सच में थका बस टाल रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना रीना, कि हम ना हमारे पास काम होता है और हम उसको बेवजह टाल देते हैं कि नहीं अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में कर लूंगा। जबकि आप थके वके कुछ नहीं होते हैं, बस आप अपने मूड के ऊपर चले जाते हैं कि आज मन नहीं है। लेकिन आपको ना ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, जब भी आपको लगे कि मेरे पास टाइम है और मुझे मेरे अर्जेंट काम करना है, तो उस समय पे ना आप आलस बिल्कुल ना करें, उस काम को टाले नहीं, उस काम को उसी समय पर करें। और हाँ, अगर जब आप लग रहा है आपको कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, बहुत मैं टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो तब आपको रेस्ट करना चाहिए। उस समय पे आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि रेस्ट भी जरूरी है। जब हमारी बॉडी रेस्ट करेगी तभी आप उस कोई भी काम को अच्छे से कर पाएंगे।
1: ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा है, क्योंकि बॉडी भी रेस्ट मांगती है। और सबसे बड़ी बात है कि नींद पूरा करिए। जब तक आप नींद पूरा नहीं करेंगे कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। पूरा दिन आपका बोरियत फील होगा। और साथ ही साथ आप अपनी जिंदगी में एक गोल्स जरूर बना कर रखिए। कई बार हम डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि हम शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। रोज 2 घंटे एक्सरसाइज, रोज 5 घंटे पढ़ाई, आज फोन बिल्कुल नहीं, और 3 दिन बाद पूरा प्लान बंद। इसीलिए टारगेट छोटा रखिए। 15 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट वॉक कीजिए, 5 पेज बुक पढ़िए। छोटा टारगेट पूरा करना है, 10 मिनट वॉक कीजिए, 5 पेज बुक पढ़िए। छोटा टारगेट पूरा होगा तो कॉन्फिडेंस भी आएगा और फिर कॉन्फिडेंस आप अगला स्टेप लेने में मदद करेगा। याद रखिए, छोटी जीत मिलकर बड़ी आदत बनती है। आपको आज पूरी जिंदगी बदल ली, बस आज एक छोटा सा हिस्सा बेहतर बनाना है और अपने लिए सोचना है। क्योंकि देखिए, हम लास्ट सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। इसीलिए बड़ा स्टेप लेने से पहले छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाइए, तभी जाकर वो बड़े बड़े कदम में परिवर्तन हो जाते हैं।
0: रीना, ये एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया है कि अगर आपको टेरेस पर जाना है और आप चाहते हैं कि बस मैं सीढ़ियां ना चढ़ूं, फटाक से उड़कर पहुंच जाऊं, तो ऐसे हाथ पैर में चोट लगने का खतरा होता है ना। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ेंगे तो आप मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे और आप सुरक्षित भी रहेंगे, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको क्या करना है।
1: अरे साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं छोटा जॉब नहीं करूंगा,
0: हाँ।
1: मैं कम पैसों का जॉब नहीं करूंगा।
0: लोग ऐसा भी सोचते हैं,
1: मुझे तो सीधा 50,000 चाहिए, 1,00,000 चाहिए। तो भैया ऐसा नहीं मिलता है कभी भी। आपको एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तभी उसी हिसाब की आपकी सैलरी भी बढ़ती है
0: उसी अकॉर्डिंग।
1: अदरवाइज आप सोचेंगे कि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे अभी अभी 1,00,000 रुपए मिल जाए, तो पॉसिबल ही
0: नहीं है।
1: आप ऐसे करेंगे, ऐसे सोचेंगे तो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे।
0: तो आपको ना ऐसा नहीं सोचना है डायरेक्टली। देखिए, आप कोई भी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो, और पहली बार तो ये है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और जब आप शुरुआत करते हैं, आज आपको 20,000 मिल रहे हैं, कल आपको 40,000 भी मिलेंगे, क्यों रीना। तो धीरे धीरे पेशेंस रखिए, सब चीजें होती हैं, मिल जाती हैं। लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है अपना लाइफ में। और ऑफिस में कभी ऐसा होता है कि काम बहुत ज्यादा है और मन नहीं करता, आज कुछ नहीं करूंगा, लेकिन फिर काम सामने देखकर समझ में आता है कि भागने से काम कम नहीं होगा। ऐसे समय पर एक तरीका अपनाइए, प्रायोरिटी यानी सबसे जरूरी काम पहले। पूरी लिस्ट देखकर परेशान मत होइए, बस 3 जरूरी काम लिखिए। पहला काम पूरा कीजिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कई बार हमारी प्रॉब्लम काम की इक्वालिटी नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग का जो कंफ्यूजन होता है ना। इसलिए आज का रूल आप बनाइए, एक समय में एक काम कीजिए, फोकस करिए। काम धीरे होगा तो भी चलेगा, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्यों रीना।
1: ये तो बिल्कुल तुमने सही कहा है, लेकिन देखिए सही के साथ साथ हम एक म्यूजिकल ब्रेक भी ले लेते हैं भैया, ये भी बहुत जरूरी है।
0: जब हम बातें करने शुरू करते हैं,
1: भैया मैडम बोलती रहती हैं, गाना तो सुनाती नहीं है।
0: तो हम वही कह रहे हैं, जब हम बात करने शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने श्रोताओं को दें। लेकिन उससे पहले गाना भी बहुत प्यारा सा, जो रीना जी की पसंद पर हम प्ले करने वाले हैं, और वो आपको भी पसंद आएगा, ठीक है। तो आप बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए गुनगुना।

0: रहिए और एंजॉय कीजिएगा हमारे शो को। आई होप आपको ये शो इंटरेस्टेड लग रहा होगा, मुझे मालूम है। वैसे अपने फीडबैक
1: की गाना सुनाऊंगी, जिंदगी एक सफर है सुहाना,
0: यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो कल का किसी को नहीं पता होता है क्या होने वाला है, इसीलिए दोस्तों आज आपको ये पास वक्त है, आपके पास ये टाइम है, इसे एंजॉय करो। जो भी काम करना है उसे कर लीजिए, कल पर बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है।

0: श्रोताओ, बहुत ही शानदार आपने गाना सुना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ कल क्या हो किसी को नहीं पता होता है। कल की इनफैक्ट बात छोड़िए, आपको सेकंड का भी नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाएगा। इसीलिए जिंदगी में जो भी आप काम करें सोच समझ के करें, और कुछ भी काम कल के परसों के ऊपर या आधे घंटे दो घंटे के ऊपर डिपेंड मत रहिए, उसके ऊपर मत छोड़िए। जो करना है अभी करना है और शुरू करना है, बस कर दीजिए। तो अब हम बात करने वाले हैं गुस्से पर डिसिप्लिन। ये हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि हम ना चाहते हुए सामने वालों को पता नहीं क्या कह देते हैं। इसीलिए पहले अपने आप पर कंट्रोल करिए, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। डिसिप्लिन सिर्फ पढ़ाई और एक्सरसाइज में नहीं है, हमारे व्यवहार में भी चाहिए। गुस्सा आए और हमने तुरंत बोल दिया, मैसेज आया और हमने तुरंत जवाब दे दिया, किसी ने कुछ कहा और हमने उससे ज्यादा कह दिया, बाद में सोचते हैं काश मैं ये नहीं कहता, यानी इमोशनल डिसिप्लिन काम आता है। गुस्सा आए तो तुरंत रिप्लाई मत कीजिए, 10 सेकंड रुकिए, गहरी सांस लीजिए, अगर जरूरत हो तो कहिए मैं थोड़ी देर बाद बात, क्योंकि हर फीलिंग्स पर तुरंत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी रिएक्शन को रोकना भी सबसे बड़ी जरूरत है, और ये हमारे अंदर सबसे कम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो जैसा बोलता है भैया उसको हम वैसा ही रिप्लाई देते हैं। तो सोचिए आप में और सामने वाले इंसान में क्या ही डिफरेंस रह गया, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो उसने बोला आपने रिटर्न कर दिया है। इसीलिए जब आपको लग रहा है, और सबसे बड़ी बात है आपको रिश्ता बचाना है, आपको दोस्ती बचाना है, और साथ ही साथ आप अपना गुस्सा किसी ऊपर ना दिखाए, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं किसी से नहीं बोल सकता हूँ, तो जो आपका मन करे, गाना सुनने का मन करे गाना सुनिए, अकेले बैठने का मन करे अकेले बैठिए, लेकिन किसी को अपशब्द वचन ना बोले, क्योंकि एक बार जब ये जुबान से फिसल जाती है ना, दोबारा वापस नहीं आती है। ये दूसरे इंसान को भी घाव देती है और आप उसके नजरों में बुरे भी बन जाते हो। इसीलिए अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो इंसान कंट्रोल करना सीख जाता है वो दुनिया का बेहतरीन इंसान बन जाता है।
1: बिल्कुल, क्या बात है यार रीना, तुम तो इतनी प्यारी बातें करती हो, मुझे पता नहीं था, आज ही पता चल रहा है तुम्हारे साथ बैठकर, वैसे मजा आ रहा है इस बातचीत में। अब हम बात करते हैं रीना, हम दूसरों से क्या प्रॉमिस निभाने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन खुद से क्या प्रॉमिस, कल से जल्दी उठूंगा, इस महीने में पैसे बचाऊंगा।
0: बात ये है कि हम दूसरों का डिसीजन मान लेते हैं, अपना डिसीजन,
1: हम दूसरों से क्या प्रॉमिस निभाने की पूरी कोशिश करते हैं रीना, चाहे कुछ भी हो जाए, भाई मैंने उसको प्रॉमिस किया है तो वो मैं निभाऊंगा, दिन रात चाहे मुझे जागना पड़े। अब एग्जांपल आप ही ले लेते हैं, देखो आपकी बहन ने आपको काम दिया शॉपिंग करने के लिए कि मेरे लिए ड्रेस खरीद के लाओ, तो आप कितना रिसर्च कर रहे हो उसके लिए, परेशान कितना हो रही हो, पर भाई काम दिया है, प्रॉमिस दिया है, निभाना पड़ेगा, है ना। लेकिन खुद से किया प्रॉमिस, कल से जल्दी उठूंगी, इस महीने पैसे बचाऊंगी, अब फोन कम चलाऊंगी, और फिर खुद ही भूल जाती हैं, है ना। लेकिन दोस्तों खुद से किया छोटा प्रॉमिस निभाने से सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए आज बड़ा प्रॉमिस मत कीजिएगा, सिर्फ एक छोटा सा प्रॉमिस खुद से कीजिए, आज मैं अपना एक जरूरी काम पूरा करूंगा या पूरा करूंगी, ठीक है। जब वो पूरा हो जाए खुद को क्रेडिट जरूर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ दूसरों की तारीफ से नहीं आता, खुद को बार बार साबित करने से आता है, जो भी हूँ वो मैं कर सकती हूँ। तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़िए, और अभी फिलहाल हमें भी दीजिएगा जाने की अनुमति, हम आपसे मुलाकात करेंगे नई बातों के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और कभी बात करेंगे तो बताएंगे रीना जी ने किस शॉप से शॉपिंग की थी, क्योंकि ये बहुत रिसर्च कर रही हैं, एंड बताएंगे आपको, ठीक है। बस आप ऐसे एंजॉय करिए, बिंदास रहिए, और हाँ आपको कोई भी काम कल पर नहीं टालना है, आपको जो करना है आज ही कीजिए।
0: नहीं गाइस, जो करना है 10 दिन बाद करेंगे।
1: अरे अरे यार ये क्या था,
0: मतलब अगर हम ऐसा एग्जांपल देते ना किसी को, तो वो सोचता है कि नहीं यार अभी करना है, जल्द करना है।
1: हाँ, तो आपको अच्छे से अपने काम को करना है और अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करना है, क्योंकि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, और ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, पता नहीं है दोबारा मिले या ना मिले, ये जो जन्म मिला है, जो जिंदगी मिली है ना, इसको खुलकर दीजिए, जो करना है वो कर डालिए, पर अच्छा काम करना है।
0: चलिए बाय
1: बाय।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियो कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपका फेवरेट प्रोग्राम चल रहा है खेती किसानी। किसान भाइयों, कैसे हालचाल हैं आप सभी के? मैं उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज का विषय बहुत खास है, आज की वार्ता बहुत स्पेशल है किसान भाइयों। आज का विषय है गन्ने की फसल प्रबंधन। इस पे हम ढेर सारी बातचीत करेंगे और एक बार फिर से एके जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ ढेर सारी बातचीत करने के लिए और इस पे और खास चर्चा करने वाले हैं आज हमारे साथ खेती किसानी के प्रोग्राम में। तो सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में।
4: आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। मेरा सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को मेरी ओर से और चंबल फर्टिलाइजर की ओर से नमस्कार
2: जी। तो एके सिंह जी, आप आज जो है गन्ने की फसल के बारे में हमारे किसान भाइयों को तमाम जानकारियां देने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारियां सुनकर हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न होगा भारत सरकार की जो ये
4: पीएम प्रणाम योजना है,
2: पीएम प्रणाम योजना के बारे में।
4: और पीएम प्रणाम खास तौर से जो जो हमारी खेती है, जो हम जो मतलब फसल उगाने का तरीका है
2: जी,
4: उसमें जो पोषण का तरीका है, उसके उसका संज्ञान भारत सरकार ने वैज्ञानिकों के द्वारा लिया है। और उसमें प्रयास ये है कि जो जो जो उर्वरकों का इस्तेमाल हो रहा है
2: जी, जी।
4: वो संतुलित हो और सही ढंग से हो, जिससे कि उनका जो अतिरिक्त इस्तेमाल है या सही ढंग से जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उससे जो होने वाले नुकसान है, उनसे हमारी खेती बचे। नंबर एक तो उसका ये उद्देश्य है। तो उसके लिए सरकार ओवरऑल बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है, जैसे कि शैक्षणिक योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी जानकारियां लोगों तक जो उपलब्ध जो हो रही है सरकार की तरफ से, जिससे उनको जो जानकारी मिल रही है कि संतुलित उर्वरक उपयोग के क्या लाभ है। बहुत सारे उर्वरक ऐसे भारत सरकार की ओर से लाए जा रहे हैं जिनमें एक संतुलन के रूप में ही जो पोषक तत्व उपलब्ध है, जिनको कि हम एनपीके बोल देते हैं। बहुत से एनपीके ऐसे भी हैं जिनमें सल्फर का भी पोषक तत्व है। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, ये सारे पोषक तत्व करीब करीब उसमें उपलब्ध होते हैं। तो ओवरऑल एक ही उर्वरक में हमें सारे पोषण उपलब्ध हो जाते हैं, तो हमें अलग से उर्वरक और किसी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की कुछ योजना है। इसके अलावा ये है कि ओवरऑल अगर हम जो देखें तो एक समग्र रूप में जो खेती में जो खर्चा है उसको कम करना का उद्देश्य है। तो वो ऐसा खर्चा नहीं है कि खाद के ऊपर ही, मतलब सरकार ये चाहती है कि जो अपना खाद है उसके ऊपर ही खर्चा कम हो, जो हमारे किसान है जो वो खेती पे खर्चा कर रहे हैं उसमें भी कमी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनके खर्चे में कमी होगी तो उनकी आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि भी होती। दूसरा ये है कि जो हमारे अपने जो संसाधन है, अपने संसाधन जैसे गोबर की खाद है
2: जी,
4: कंपोस्ट खाद है
2: जी,
4: इसके अलावा जो फसल अवशेष है, फसल अवशेष मान के चलो जैसे कि हमने धान उगाया, धान का ऊपर का हिस्सा हमने अनाज ले लिया, पुआल रह गया उस, ठीक है, अब जो वो है हम उसको सुधारे तो बेकार की चीज है, नहीं, जितना पौधे ने जो पोषण उसमें से खेत में से लिया है, लगभग उसका 50-60% जो भी उसने उसमें से तत्व लिए वो उस चीज में उपलब्ध होते हैं। 30-40% सिर्फ अनाज में गए हैं, बाकी पौधे में, अगर वह पौधे का जो अवशेष है जिसको हम फेंक रहे हैं, अगर हमने उसको सड़ा के खेत में ही इकट्ठा किया या खेती जो जो मिट्टी उसमें मिला दिया, तो वो एक तरह से उर्वरक का ही काम करेगा, पोषण का ही काम करेगा। और अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे, मिट्टी की जाँच कराएंगे, तो उसी अनुपात में हम जो उर्वरक का इस्तेमाल है उसमें कुछ कमी ला सकते हैं, जिससे हमारे खर्चे कम होंगे। तो भारत सरकार का बड़ा ही एक अहम जो एक तरह से मतलब प्रयास है कि कैसे भी टिकाऊ खेती की तरफ हम जाएं, जो हमारी जो उर्वरक जो आयतित उर्वरक हैं उनके जो इस्तेमाल में जो मतलब जो है एक तरह से अंधाधुंध उनका जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें जो कैसे कमी लगाई जाए, या जो उनका असंतुलित जो उपयोग हो रहा है उसको जो जो एक तरह से संतुलन में लाया जाए, और जो हमारे खेती में संसाधन अपने हैं जो कि पोषण है हमारी फसल के लिए, जो कि एक तरह से जो हमारी खेत की मिट्टी है उसके लिए आहार है, वह हम ज्यादा से ज्यादा जागृत करें, हम उसके बारे में जानकारी रखें और उसका हमारे किसान लाभ ले सकें, जिससे कि हम धीरे धीरे टिकाऊ खेती की ओर बढ़े। टिकाऊ खेती से अर्थ ये है कि ऐसा न हो कि हम इसी तरह से जो जो हमारे उर्वरक है या जो मतलब पोषण है उसका असंतुलित इस्तेमाल किए और जो हम लगातार जो फसलें उगाते जा रहे हैं उससे बहुत अत्यधिक जो मतलब जो दोहन करते रहे, तो एक दिन ऐसा न हो कि हमारे खेत अच्छी फसल न उगा पाए। तो ये पीएम प्रणाम का एक अहम उद्देश्य जो ये है, इसके लिए सरकार हर स्तर पर कार्य कर रही है, हम लोग भी जागरूकता का अभियान अपनी ओर से जारी रखते हैं, किसानों को समझाते हैं, गांव गांव जाके मीटिंगें अन्य कार्यक्रम इस तरह से आयोजित करके संतुलित उर्वरक उपयोग में हम अपनी जानकारी देते हैं। हमारी कृषि की प्रयोगशालाएं भी हैं, उनसे मिट्टी की जाँच हमारे यहाँ पे जो फ्री होती है, लगभग साल के लगभग 3000 सैंपल हम जो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट सीधे फार्मर तक पहुँचाते हैं और उसके साथ साथ उनको समझाते भी हैं कि इस रिपोर्ट में क्या है और किस तरह से आपने जो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है, पोषक तत्वों का इस्तेमाल करना है और अपने खेत को कैसे स्वस्थ रखना है।
5: बीच मेरा प्रश्न रहेगा सर कि प्रधानमंत्री द्वारा उर्वरक उपयोग के बारे में जो संबोधन दिया गया है उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को भी दीजिए।
4: आनंद जी, वो जो संबोधन है वो खास तौर से जो प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी है कि जो भी उर्वरक है उनका हम सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर सही ढंग से इस्तेमाल होगा तो उनकी सही मात्रा का इस्तेमाल होगा, अगर सही ढंग से हम जो है उसको जो है मतलब नहीं करते हैं तो ज्यादा मात्रा का हम इस्तेमाल करने लगते हैं। उसी के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा संबोधन दिया है और उसकी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आप अवश्य किसानों को सुनाएं, उससे उनको एक मार्गदर्शन जो आएगा कि वो उर्वरक के उपयोग में सावधानी बरतें और उसका सही जो इस्तेमाल हो उसके बारे में संज्ञा।
5: थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, बिना किसी देरी के आइए जरा सुनते हैं इस ऑडियो को।
6: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
5: बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये जानकारी और मुझे उम्मीद है श्रोताओं आपको भी अच्छी लगी होगी। इसी बीच अनिल कुमार सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से,
2: और अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, गन्ने की फसल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे किसान को।
4: हाँ आनंद जी, जो आपने जो फसल के बारे में कहा है गन्ना
2: जी,
4: गन्ना हमारे भारत वर्ष की एक मुख्य फसल है, काफी जो लंबे क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है, लगभग हर राज्य में, कुछ राज्य छोड़ दें जैसे राजस्थान के कुछ हिस्से वहाँ नहीं होता है, बाकी करीब करीब सभी राज्यों में गन्ने का उत्पादन होता है, पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ सकते हैं। तो इससे जो उत्पादन होता है उससे बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पे तैयार होती हैं, जैसे कि गुड़ है, चीनी है, और मीठे से संबंधित जो भी उत्पाद है वो उनका उत्पादन होता है। इसके अलावा बहुत सारे जो है एक तरह से फ्यूल के रूप में भी, जैसे इथेनॉल इससे तैयार हो जाता है, सीरा इससे तैयार हो जाता है, तो बहुत सारी चीजों का उत्पादन इसके द्वारा होता है, और ये एक बहुत ही अर्थ की रीढ़ है हमारे देश के लिए। और हम कह सकते हैं कि जो हमारी मांग है इन उत्पादों की, जैसे कि चीनी है, गुड़ है, है या और चीजें हैं, उनमें हम करीब करीब आत्मनिर्भर हैं। और ऐसी स्थिति भी आती है कि हम अन्य देशों को भी यहाँ से विस्तहन इधर से निर्यात करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये जो फसल है, गन्ने की फसल, ये बड़ी अहम है और साल में दो बार लगाई जाती है, एक बार जो है रबी के सीजन में और एक बार जो है आपके जायद के सीजन में। तो दो सीजन में अलग अलग समय पर लगाई जाती है। ये फसल एक ऐसी फसल भी है कि जैसे एक साल आपने लगाई है, उसके बाद आप जब आप इसको काट लेते हैं तो वही फसल फिर अगले साल के लिए भी वो काम करती है, उसको पेड़ी बोलते हैं। तो जो अन्य फसलें हैं उनको हमने जैसे एक बार लगाया तो अगली वो उनको जब वो पकी तो उनको हमने काट लेते, फिर दोबारा उनकी हम एक तरह से एक बार लगाया तो अगली वो उनको जब वो पकी तो उनको हमने काट लेते फिर दोबारा उनकी हम एक तरह से सोइंग करते हैं, बिजाई करते हैं। लेकिन गन्ने के साथ ऐसा नहीं है, ज्यादातर हिस्सों में यही होता है कि एक वर्ष जो हमने गन्ना लगाया है वो लगभग जब उसकी कटाई होती है तो अगले वर्ष भी उसी खेत में उसी फसल को आगे के लिए हम तैयार करते हैं, उसमें शाखाएं निकलती हैं, फिर उसी तरह से गन्ना तैयार हो जाता है। तो ये मुख्य फसल है।

0: और इसका जो हमें उत्पाद है वो तो मिलते ही, इसके साथ साथ इसकी तूड़ी मिलती है जो एक ऑर्गेनिक के रूप जो हमारे खेत है उनके काम आ जाती है। इसके अलावा इसके ऊपर का जो आल होता है वो उस समय जब इसकी कटाई होती है तो हरे चारे के रूप में काम आता है खास तौर से, और सभी जानवर बड़े चाव से इसको खाते हैं, स्वादिष्ट होता है। तो हम ये देखें कि एक तरह से ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और कभी आपने देखा होगा बहुत से क्षेत्रों में तो जहाँ पूजा होती है वहाँ पर गन्ने को रखा जाता है, और जो देव उठनी जो होती है उस समय पर सभी जगह इसकी पूजा की जाती है, रखा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो बड़ा महत्व है गन्ने का हमारे जीवन में, और महत्व यही है क्योंकि जो हमारे जो खान पान के मुख्य अंग है मिष्ठान है उनमें वो सभी हमें गन्ने के द्वारा ही लगभग प्राप्त होते हैं। तो ये जो गन्ने की फसल में कुछ जानकारियां रही, वैसे तो जानकारियां अनेकों और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे ज्ञात था वो मैं सभी किसान भाइयों के साथ साझा कर रहा हूं।
1: डॉक्टर ए के सिंह जी, मेरा एक और प्रश्न है, गन्ने की फसल में पोषण प्रबंधन के बारे में थोड़ी जानकारी आप दीजिए हमारे श्रोताओं।
0: हाँ, पोषण प्रबंधन
1: जी,
0: गन्ने की फसल एक तरह से एक साल की फसल है लगभग
1: जी,
0: एक साल वो खेत में रहती है 12 महीने 11 महीने के करीब, और इसका विकास होता है और अक्टूबर के आसपास जाके फिर इसमें मीठापन आना शुरू हो जाता है, और नहीं शुरू तो मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास ही होता होगा।
1: ओके।
0: वो धीरे धीरे फिर उसकी जो मतलब अधिक होती चली जाती है मात्रा, और नवंबर में आते आते मतलब जो देव उठान है उस समय तक चीनी का निर्माण पूरी तरह हो जाता है, इसीलिए कि देव उठान पे फिर हम इसकी पूजा
1: करते हैं।
0: ठीक है,
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो फसल एक साल तक खेत में रह रही है तो उसके लिए हमें अच्छे पोषण की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल,
0: अच्छे पोषण में एक तो क्या है कि हमारे खेत के अंदर जैविक तत्व बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए
1: जी,
0: जो उसको पूरे साल भर सहारा देता है, जो आलम्बन देता है, और पानी को रोकने की क्षमता उसमें अच्छी जभी होगी जब में जैविक तत्व होगा। तो जैविक तत्व के लिए पोषण के रूप में आप गोबर की खाद है, कम्पोस्ट की खाद है, या गन्ना लगाने से पहले हरी खाद ले सकते हैं, उससे भी हमारे में काफी जो है अधिक मात्रा में जैविक तत्व उत्पन्न होता है जो कि हमारी फसल को एक अच्छा स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक। इसके बाद फिर आ जाता है कि बहुत सारे ऐसे उर्वरक हैं जिन्हें कि हम ऊपर से देते हैं, जिनमें कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, जिंक है, तो ये सारे पोषक तत्व है। अब इन पोषक तत्वों को जब आप लगा रहे हैं गन्ना, उस समय आप प्रयास करें कि ये सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हम अपने खेत में दें लगाते समय या खेत की तैयारी के समय। उसके लिए बहुत सारे उर्वरक इस समय पर हमारी जो मतलब भारत सरकार ने जो हमारे क्षेत्र में उपलब्ध कराए हैं, उनमें जैसे कि कुछ NPK हैं जिनमें नाइट्रोजन भी होता है
1: जी,
0: फास्फोरस भी होता है, पोटास भी होता है, और कुछ में आपके सल्फर भी होता है। तो ये चार पोषक तत्व मिल गए आपको, जिंक आपको अतिरिक्त रूप में अलग से लगाना पड़ेगा। तो ये आप प्रयास करिए कि जो NPK हमारे आ रहे हैं उनका प्रयोग अधिक करें, क्योंकि हर दाने में समान पोषण होता है। अगर आप अलग अलग जो कोई भी उर्वरक अलग अलग आप इस्तेमाल करते हैं तो उनमें समान पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये प्रयास कीजिएगा कि आप NPK का इस्तेमाल करके इनका प्रयोग करें, तो जब आप खेत तैयार कर रहे हैं आखिरी जो हल चला रहे हैं उस समय पर इनका प्रयोग कर सकें, या जब आप जब जो मतलब लगा रहे हैं गन्ने को जो उसकी पोरियां होती हैं उसका जो कूण है उसके नीचे आप लगा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं, उस समय पर आप ये लगाइएगा। और अभी जैसे अभी का जो समय चल रहा है तो इस समय पर मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा कोई उर्वरक की जरूरत है, फसल तैयार है, धीरे धीरे बारिश हो रही है और स्वतः ही जो फसल का विकास अपने आप होता रहता है। एक और मैं जो वैज्ञानिक जो तथ्य है लोग कहते हैं
1: जी,
0: कि जब एक तरह से जो बारिश होती है और बिजली जो कौनती है तो उससे नाइट्रोजन है वो जो पानी के साथ नीचे आती है, तो नाइट्रोजन मतलब यूरिया। तो ऐसे समय पर जब इस तरह का माहौल रह रहा है तो आप समझिए कि प्रकृति हमारे जो भी जो मतलब इस तरह के पौधे हैं या पेड़ हैं उनको अपने आप नाइट्रोजन दे रही है, उसको अलग से उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो ये एक मैंने थोड़ी हटके बात बताई है, लेकिन पोषण आप अच्छा दीजिए जिससे कि जो मतलब उसका विकास हो। तो ये पहले शुरुआत का हो गया, उसके बाद फिर जब आपकी फसल करीबन 30 दिन की हो जाए उस समय पर आप नाइट्रोजन वाले उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आप यूरिया है आप स्प्रे भी कर सकते हैं यूरिया का, आपके ये जो नैनो यूरिया आता है आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। तो आपका ध्यान रखें, पोषण जरूर दें, लेकिन पोषण का जो मुख्य आधार है वह है जैविक, वह जरूर दें। कोई भी फसल अवशेष खेत से बाहर जाके आग न लगाएं, उसे खेत में ही सड़ाएं, मिट्टी में मिल जाए तो अनेक जीव उससे पलते हैं और वो हमारी मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं, खेत की मिट्टी को। जब खेत की मिट्टी समृद्ध होती है तो वो मैं एक अपनी ओर से उपहार के रूप में अच्छी फसल देती है, अच्छी उपज देती है। हम उसको सहयोग करते हैं, वो हमें सहयोग करते हैं।

0: जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर ए के सिंह जी ने। और इसी बीच मेरा प्रश्न रहेगा, गन्ने की फसल में सिंचाई, जल निकास एवं बुवाई के बारे में थोड़ी जानकारी आप बताइए।
1: ये जो बुवाई बोला ये बंदाई है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
0: अच्छा,
1: सिंचाई के बारे में आती हो, क्योंकि ये इसका बहुत विकास होता है और हमेशा एक साल के लिए खड़ी है, तो खेत में नमी बनी रहे, लेकिन अतिरिक्त नमी भी गन्ने के लिए उतनी अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर से हमें लगता है कि भाई खेत की सतह सूख गई है तो ये नमी की कमी है, लेकिन अगर आप थोड़ा उसे खोद के देखेंगे तो नीचे बहुत नमी है।
0: अच्छा,
1: तो ऐसी अवस्था में थोड़ा ध्यान रख के ज्यादा पानी न दे। पानी जब आपको लगे कि भाई अब जरूरत है, खेत की जो जो जो सूखने की स्थिति है या मतलब जो जो आपके खेत की मिट्टी है उसमें नीचे तक नमी जो खत्म होगी, तब आप जरूर पानी दें। पानी आप ठीक ठीक दें, बहुत हल्का भी न दें और बहुत ज्यादा भी न दें। इसमें एक चीज होती है, जब जो जो जब इसका अच्छा विकास हो जाता है तो ये पानी की मात्रा तो अधिक लेती है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन छांव भी हो जाती है खेत, तो जो जो अपने खेत की मिट्टी है उससे बासपन तो रुकता है, लेकिन जो ऊपर जो जो इसकी हरी पत्तियां उनसे बासपन खूब होता है। तो आप प्रयास करें कि नमी बनाए रखें खेत। और फिर एक चीज होती है पानी का निकास। अभी जैसे कि बूंदाबांदी हो रही है, बारिशें हो रही है, तो ये प्रयास अवश्य करें कि खेत में पानी ज्यादा रुके नहीं। पानी रुकता है तो वो कहीं न कहीं फसल को कमजोर कर, उसको हवामान सही से नहीं मिल पाता, वो पोषण ज्यादा नहीं पल, जो जो अच्छे से ले पाती है। तो पानी के निकास की व्यवस्था आप अवश्य कीजिएगा। अगर आसपास कोई नाला या नाली या ड्रेनेज नहीं है तो आप अपने ही खेत के जो ढाल वाला हिस्सा है वहाँ पे एक खड्डा बनाकर उस पानी को स्टोर कर सकते हैं, और वो पानी धीरे धीरे जिसके अन्य क्षेत्र में भी जाएगा तो वो कोई हानि भी नहीं करेगा, लेकिन फसल भी हमारी स्वस्थ रहेगी जो रहेगी। हो सकता है कि उससे कुछ पौधे खराब हो जाए, आपको लगे उखाड़ने पड़े, तो ये सिंचाई और जो है पानी के निकास के बारे में बात रही। अब बात ये आती है कि आपने पूछा था कि जो इसकी बनाई,
0: जी जी जी।
1: तो गन्ने की फसल जब उसका आकार पूरा होता है तो पौधे इधर उधर झुकने लगते हैं या झूलने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, सीधे नहीं रहते, तो उससे क्या होता है उसके उत्पादन के ऊपर असर पड़ता है, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो उसके लिए आम तौर पर सभी जगह वो क्या करते हैं कि जैसे 8-10 पेड़ हुए उनका एक झुंड बनाया और उसको बांध दिया, उसको बोलते हैं बंधाई।
0: अच्छा,
1: तो उसका फायदा एक तो ये है कि वो टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे, सीधे रहेंगे। दूसरा, जो अपना खेत है उसके बीच में हवा आराम से पास हो सकेगी और एक अच्छा और सीधा साफ सुथरा गन्ना हमें प्राप्त होगा। ऐसा जब आप कहीं लेके जाते हैं तो वो भी उसको जो उनको अच्छा लगेगा जो आपसे खरीदेंगे। दूसरा एक और फायदा है कि जब अगर आप इस गन्ने को बीज के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो सीधा गन्ना हमें मिलेगा।
0: ओके,
1: है ना, तो वो एक आसानी से लोग उसको पसंद करेंगे। तो ये बहुत सारे फायदे हैं। फिर एक चीज और है कि जब इसकी आप जो कटाई करें तो बीच में ही जगह मिलेगी, तो आराम से इसकी कटाई भी आपकी हो सकती है, छिलाई भी अच्छे से हो सकती है, उसमें कोई फिर रुकावट नहीं आएगी। तो इन तीन चीजों का आप विशेष रूप से, वैसे भी लोग इसके बारे में जाने, लेकिन होता कभी कभी ऐसा लगता है अरे बहुत लंबा है, कौन करे, इसके लिए समय नहीं है, तो उसी के पत्तों से ही पौधों को बांधा जाता है, पत्ते तोड़े जाते हैं और उसी से उसको बांध दिया जाता है। अलग से आपको रस्सी की और किसी चीज की जरूरत है नहीं, मतलब जो चीज जहाँ की है वही वो इस्तेमाल हुई, और फिर जब फसल कटेगी तो वही पत्ते उसमें सड़ में आपके खेत में सड़के एक अच्छा जैविक खाद बना देंगे।
0: क्या बात है
1: आनंद जी,
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छी जानकारी साझा करी आपने जी। सो इसी बीच डॉक्टर ए के सिंह जी, मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा।
1: जी हाँ बिल्कुल आनंद जी, खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है
0: जी।
1: खरपतवार हमारे जो मुख्य फसल होती है उसके लिए एक तरह से शत्रु की तरह होते हैं
0: जी जी,
1: जो उसके भोजन को चुरा के खा लेते हैं और उसके साथ भी रहते हैं। आप ये समझिए कि वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर आए और भाग गए।
0: अच्छा,
1: वो उसी खेत में रहेंगे और उसी फसल के साथ रहेंगे, अच्छे से विकास करेंगे और हो सकता है फसल को ढक भी देते कभी कभी, तो वो वहाँ से भोजन खाते रहते हैं। आप जो खर्चा फसल के लिए कर रहे हैं
0: जी जी,
1: वो हो सकता है कि वो खरपतवार ही खा जाए और फसल कमजोर रह जाए। तो इन खरपतवारों का प्रबंधन बहुत जरूरी है। गन्ने की फसल में आम तौर पर हम देखें तो इसको हम लाइन में बोते हैं। लाइन में जब बोते हैं तो उसमें खाली जगह काफी होती है, तो इसकी गुड़ाई आराम से हो सकती है।
0: हो सकती है
1: गुड़ाई के लिए, अगर छोटा रकबा है आप हाथ से कर सकते हैं, अगर रकबा बड़ा है तो आपके जो जो, जो ट्रैक्टर के हल होते हैं उनसे भी की जा सकती है। आजकल तो छोटे छोटे यंत्र आ रहे हैं, उसी साइज के होते हैं और वो दो लाइनों के बीच में निकाल देते हैं और उससे अच्छे से गुड़ाई हो जाती है, मिट्टी उलट पलट जाती है, उससे हवामान अच्छा रहता है खेत के अंदर और जो खरपतवार है वो भी नष्ट हो जाते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है, यही करना चाहिए। और इसमें एक और चीज जो अच्छी हो जाती है। अगर कुछ फसल अवशेष इधर उधर है तो वो भी टूट के अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो भोजन के रूप में उसमें काम करते हैं। तो ये थी यांत्रिक क्रिया जिसके द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं।
0: बहुत
1: दूसरा ध्यान यही रखिएगा कि खरपतवारों का नियंत्रण आपने किया है तो जो भी खरपतवार है उनके बीज न बनने पाए, यह प्रयास करें साल दस साल, क्योंकि खेत आपका है, आपने हर साल उसमें खेती करनी है। अगर इसी तरह बीज बनते रहे तो हर साल उतने ही खरपतवार फिर आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, और अगर बीज बनना आपने रोक दिया तो फिर धीरे धीरे खरपतवारों जो इसमें होने वाले खरपतवार है उनकी संख्या में हर साल कमी आनी शुरू हो जाती है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब बहुत थोड़े बहुत पौधे आपको दिखाई, तो यह प्रयास करें कि खरपतवारों का बीज न बनने पाए। अब आता है कि आज का समय है, कभी कभी श्रम हमारे पास नहीं होता, समय भी का अभाव होता है या यंत्र नहीं होते, तो उस समय पर हम बहुत सारे रासायनिक जो उत्पाद है उनके उपयोग से हम खरपतवारों को नियंत्रण करने का काम लेते हैं। तो उसके लिए जब जैसे जो आपकी पहली अवस्था है उसमें आप ये काम कर सकते हैं, जब भी खरपतवार 4 से 5 पत्ती की अवस्था में हो तो एक दवाई आती है हमारी उत्तम की वीडकिल के नाम से, वीडकिल 508, इसकी 2.5 लीटर मात्रा को आपको लेना है और 200 लीटर पानी में घोल के और खरपतवारों के ऊपर इसका छिड़काव करना है। ये मात्रा 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए है खेत के, और इसमें जैसा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो पानी हम जो उपयोग में ला रहे हैं उसमें कोई मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी का कण जो हमने जो दवा इस्तेमाल करी है वो उसकी कार्य क्षमता को लगभग 30 से 40% तक कम कर देता है। तो ये हमें एक आर्थिक नुकसान भी होता है, श्रम का नुकसान भी होता है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम लगाया और फिर भी हमें वांछित परिणाम नहीं मिल पाए, तो उसके लिए आप प्रयास यही करिए। दूसरा, जब आप स्प्रे कर लें तो फिर इस टंकी को आप बहुत अच्छी तरह से धोएं, सर्फ से भी धो दें और फिर सादा पानी से धोएं, क्योंकि ये जो उत्पाद है वीडकिल ये चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है। अगर इसका थोड़ा सा भी अंश उस टंकी में या उस पाइपलाइन में या उसमें रह जाता है नोजल में, उससे फिर दोबारा आप किसी और चीज का स्प्रे करेंगे तो उसका फसल पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। तो इसके स्प्रे के बाद आप टंकी को अच्छे से साफ करें, उसकी पाइपलाइन को अच्छा साफ करें, नोजल वगैरह को पूरी तरह क्लियर करके फिर आप दोबारा कोई स्प्रे करना, उसके लिए ये टंकी आपकी तैयार हो जाती है, क्योंकि टंकी एक ही होती है, उसी से कीटनाशक हम प्रयोग करते हैं, उसे ही हम पोषण का भी प्रयोग करते हैं, जो हमारे लिक्विड जो फर्टिलाइजर हैं या पोषक तत्व हैं उनका भी हम प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरह से आपको खरपतवार नियंत्रण का ध्यान रखना है। और फिर मैं यही रिपीट करूंगा कि आपने हमारे मेड़ पे बहुत सारे खरपतवार होते हैं, समय पे उनको हटाते रहिए, बीज न बनने पाए। बीज बनेगा तो खरपतवार की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम परेशान हो जाएंगे, बीज नहीं बनेगा तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे और हमारे पूरे क्षेत्र में, और मैं तो कहता हूँ एक ही किसान क्यों, आपके आसपास जो और भी लोग हैं वो भी इसका संज्ञान लें, और अगर इस ओर सभी सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा हो।
0: क्या बात है किसान भाइयों, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं डॉक्टर AK सिंह जी। डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए।
1: गन्ना क्योंकि एक तरह से हम देखें तो पूरे साल की फसल है,
0: जी बिल्कुल,
1: तो बड़ा आसान होता है कीड़ों के लिए वहाँ पर अपना आश्रय बनाना
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्हें कोई रोक टोक नहीं मिलती, फसल काटी नहीं जा रही, तो वो वहाँ पर आके अपना टिक जाते हैं और उन्हें अपने जीवन यापन का एक अच्छा सहारा वहाँ पे मिल जाता है। तो जब ऐसा होता है तो कीड़े भी बहुत सारे आते हैं, अब उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक कीड़ा है जो कभी कभी क्षेत्रों में आजकल देखने मिलता है, वो है दीमक। दीमक जमीन जो अंदर रहता है, तो उसके लिए एक दवा आती है उत्तम युवोटा के नाम से, इसको करीब करीब आप 200 इसकी मात्रा आप करीबन जो 250 ml ले लें, 400 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ समान रूप से खेत पर छिड़काव करें, इससे जो दीमक है उसका एक ठीक ठाक नियंत्रण आपके क्षेत्र में हो जाएगा। इसके अलावा शीर छेदक होते हैं, नीचे जो छेद करने वाले जो आपके कीड़े होते हैं उनका भी नियंत्रण इसी दवाई के छिड़काव से हो जाएगा, दीमक भी होगा और छेद करने वाले जो गन्ने में कीट हैं उनका भी नियंत्रण इसमें से इस दवा से हो जाएगा। अब एक होता है एक सफेद सा बड़ा सॉफ्ट सा ऐसा लगेगा रुई का फाया जैसा है, उसको बोलते हैं मिलीबग। मिलीबग होता है, ये सफेद रंग का भी हो सकता है और काले रंग का भी हो सकता है, तो इसका भी आपको रोकथाम करनी है, क्योंकि ये पौधे पर चिपकी रहती है और फिर उसको जो धीरे धीरे कमजोर करती है। तो उसके लिए एक दवा टोरो आती है, ये 300 ml दवा है। 200 लीटर पानी में घोलकर इसको समान रूप से जो पौधों के ऊपर छिड़काव करें। दीमक के लिए एक और दवा है, एक स्टेम्बो के नाम से आता है, ये करीबन 13 किलो आप 200 लीटर पानी में, ये जो मतलब जो है आपकी 13 किलो मात्रा है, इसको मिला सकते हैं और खेत में आप इस्तेमाल करें, इससे भी काफी आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक तना छेदक होता है, एक शीर्ष छेदक और चोटी छेदक होता है, इसके लिए भी ये स्टेम्बो काम करता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इस तरह से आप अपने कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। कीट का नियंत्रण जब भी आप करें तो ये देख लें कि बहुत ज्यादा अगर उनसे कोई नुकसान हो रहा है तो ठीक है, अगर बहुत थोड़ी सी मात्रा है तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी लोग ये जो इसलिए भी समय से पहले कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि भाई कीड़े ना आए मेरे खेत, तो आप देख आपकी सुविधा के हिसाब से, लेकिन अत्यधिक जो इनका प्रयोग ना करें, जितना जरूरत है उतना ही डालें, साफ पानी का इस्तेमाल करें तो उससे भी आपके ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। और एक बार इस्तेमाल होने के बाद लगभग जो 15-20 दिन तक फिर कोई आप स्प्रे न करें, हड़बड़ी में कि भाई अभी भी दिख रहे, धीरे धीरे उनका असर होता रहता है और फिर वो कीट नष्ट हो जाते हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखें। फिर एक चीज और मैं कहूंगा कि जब भी आप एक खेत में गन्ना लगा रहे हैं तो एक या दो वर्ष बाद फिर उस खेत को बदल दें, क्योंकि अगर लगातार उसी खेत में करते रहते हैं तो एक क्रम बन जाता है, सारे कीट वहीं आसपास इकट्ठे रहेंगे, उनके पास उनको पता है गन्ना आना है, तो उसी तरह के कीड़े वहां पे रह आएंगे। अगर आप एक दो साल में क्रम चेंज कर देंगे, कोई और फसल ले लेंगे बीच में, तो वो एक श्रृंखला टूट जाती है और कीटों की संख्या कम हो जाती है और आगे चल के जो हमारी फसल होगी उसमें कम इसकी जो संक्रमणता आपको देखने को मिलेगी। आनंद जी,
0: सर बेहद ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हमारे साथ आप साझा कर रहे हैं। और बस अब मेरा आपसे इसी विषय पर अंतिम प्रश्न होगा कि गन्ने में रोग नियंत्रण की थोड़ी जानकारी दीजिएगा आप।
1: बिल्कुल, रोग सभी में आते हैं, तो जैसे कि एक तो लाल सड़न रोग होता है, एक उखटा होता है
0: जी।
1: उखटा रोग है जिसमें कि पौधा नीचे से ही सूखने लगता है, और ये कंडुआ रतुआ इस तरह के अनेक रोग होते हैं, लेकिन उखटा मेन रोग होता है। इसके लिए एक तरह से फफूंद नाशी दवाएं हैं, वो सारी काफी कारगर होती हैं। तो उखटा रोग के लिए एक दवा आती है मैंजिम, ये करीबन 500 ग्राम दवा है, 250-300 लीटर पानी में आप इसको घोल के इसका छिड़काव करें तो इससे आपको काफी आराम मिलेगा
0: जी।
1: दूसरा एक जो है आपका जो लाल सड़न रोग है, इसके लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो एजो
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने तिरुक्कुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुक्कुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSC और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
7: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
6: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
7: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोहों में गाने का काम किया।
6: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
8: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
6: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
9: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खूंट, आकाश। समाचार, अहमदाबाद।
6: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
10: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी उत्साह उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
6: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिकी ओपन पुरुष

0: दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
2: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
1: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बरेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ जरीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का हमारा टॉपिक है भैया बहुत ही खास है, डिफेमेशन टॉपिक हम लेकर आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा मेरी मानहानि हुई है, लेकिन आखिरकार मानहानि होती क्या है? किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी झूठी या अपमानजनक बात कहना, लिखना या फैलाना जिससे उसकी इज्जत, प्रतिष्ठा या समाज में सम्मान को नुकसान पहुँचे, उसे आम तौर पर मानहानि कहा जाता है। यानी किसी की छवि को जानबूझकर खराब करना सिर्फ मजाक की बात नहीं हो सकती, इसे कानूनी पहल भी कह सकते हैं। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, थैंक्स।
0: तो सर, हमारा सबसे पहले टॉपिक यही होगा कि मानहानि होता क्या है।
1: देखिए, सरल शब्दों में अगर हम मानहानि की बात करते हैं, यानी डिफेमेशन की बात करते हैं, तो जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा कोई झूठ या उसकी प्रतिष्ठा को या उसकी इमेज को नुकसान करने वाला कोई आरोप लगाया जाए या कोई बयान दिया जाए, उसको प्रकाशित कराया जाए कहीं, वो पब्लिशिंग फॉर्म में, या उसको संचारित किया जाए, यानी उसको प्रचार प्रसार करके उसको संचारित फैलाया गया हो जिससे उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा हो, तो उस परिस्थिति के अनुसार जो भी उसकी रेपुटेशन का नुकसान होता है उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं, यानी कि उसको मानहानि बोला जाता है कि उसकी डिफेमेशन, उसकी इमेज का डिफेमेशन हुआ है।
0: ओके, क्या किसी को बुरा भला कहना ही डिफेमेशन है?
1: देखिए, आमतौर पर मजाक में आजकल लोग आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं या नेता एक दूसरे को, आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप का एक जो है लोगों पे बयानबाजी होती है, राजनीतिक विश्लेषण हम लोग देखते हैं तो उसमें नेता एक दूसरे पे खूब आरोप लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर भाषा जो है वो डिफेमेशन के कैटेगरी में आए। अपमानजनक या अशोभनीय शब्द अगर आप डिफेमेशन मतलब उस पर नहीं बनता है, या कोई ऐसा वर्ड आपने यूज किया जो डिफेमेशन के कैटेगरी में नहीं आता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार डिफेमेशन हो। मामले में ये भी देखा जाता है कि जो व्यक्ति ने जो कथन किया है वास्तव में उस व्यक्ति की रेपुटेशन उससे हर्ट हो रही है या नहीं हो रही है, और कानूनी अर्थ में नुकसान अगर पहुंच रहा है तो डिफेमेशन बनता है। और डिफेमेशन के साथ साथ कुछ ऐसे, कुछ हमारे कानून में कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ ऐसी जो एक पैरामीटर दिए गए हैं, अगर उस पैरामीटर के अंदर वो उसने स्टेटमेंट दिया है तो वो तभी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
0: ओके सर, इसके टाइप्स कितने होते हैं?
1: देखिए, डिफेमेशन आमतौर पर समान सिविल डिफेमेशन और क्रिमिनल डिफेमेशन की बात की जाती है। सिविल एक्शन में कंपनसेशन और हम डैमेजेस मांग सकते हैं, और जबकि क्रिमिनल जो डिफेमेशन होता है क्रिमिनल लॉ में प्रेस्क्राइब उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। तो सीधे तौर पर मैं कहूंगा कि अगर आपका सिविल डिफेमेशन हुआ तो सिविल डिफेमेशन में आप सिविल कोर्ट में वाद दायर करके उसमें हर्जाना मांग सकते हैं, कंपनसेशन मांग सकते हैं। अगर क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ तो क्रिमिनल कोर्ट में आप जो है वाद दायर करके मजिस्ट्रेट से रिलीफ मांग सकते हैं कि इसकी वजह से ये क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ है, इस तरीके से जो है ये अगेंस्ट में इसको पनिशमेंट मिलना चाहिए।
0: सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, आजकल आपने देखा होगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर किसी के खिलाफ गलत पोस्ट करना भी डिफेमेशन हो सकता है?
1: देखिए, ये तो आजकल बहुत ट्रेंड चल गया, हम देखते हैं, आप अगर मोबाइल उठा के देख लेते हैं, आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप ट्विटर देख लीजिए, या आप यूट्यूब देख ली, तो बाढ़ आई पड़ी है तमाम मैसेजेस की, सोशल मीडिया मैसेजेस की। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मैसेज अगर आप देख रहे हैं तो उसको बिना देखे, बिना समझे आप फॉरवर्ड बिल्कुल मत करिए। अगर सपोज करिए कोई आपके पास कोई डिफेमेशन मैसेज आया और आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप भी उसमें बराबर के भागीदार बन जाते हैं, है ना? हाँ, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। परिस्थितियों के अनुसार सोशल मीडिया पर किया गया कोई भी डिफेमेशन पब्लिकेशन मानहानि का आधार बन सकता है। ऑनलाइन होने से कानून समाप्त, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चीजें ऑनलाइन हो गई है तो कानून आपके ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आपने ऑनलाइन भी किसी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए या किसी ने कोई अपशब्द लिखा और आपने उसको फॉरवर्ड कर दिया दूसरे ग्रुप में, तो आप भी बराबर के भागीदार बन जाते हो।
0: ओके, तो मतलब शेयर करना भी
1: हो जाता है। पहले जो है हमारे कोर्ट में एक जो है क्वेश्चन था कि भाई किसी ने अगर अपशब्द लिखे और दूसरे ने फॉरवर्ड किया है तो उसको भागीदार नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर आप गलत चीज का साथ दे रहे हो, डिफेमेशन कर रहे हो और कंटिन्यूस डिफेमेशन कर रहे हो, तो आप भी बराबर के उसमें कल्प्रिट माने जाओगे, आप भी उसमें दोषी माने जाओगे। तो लिहाजा अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसको सोच समझ के वहीं डिलीट कर दिए या उसको आगे फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं करना है।
0: सर, ये भी होता है ना कि जैसे हम केस दर्ज करवा रहे हैं तो आगे से भी पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है, इसकी कोई साइड?
1: देखिए, वो सब साइबर क्राइम जब होता है ना तो जो साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, जो हमारे लीगल जुडिशरी में और पुलिस के पास एक टीम होती है, वो सब ढूंढ लेते हैं कि कौन सी पोस्ट कहाँ करी थी। आईपी एड्रेस से पता चल जाता है, आपका सोशल मीडिया हैंडल से पता चल जाता है कि आपने कब कौन सी पोस्ट करी है, तो वो डाटा आप कितने डिलीट कर लें वो सब फाइंड आउट हो जाता है वो।
0: ओके तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट्सएप ग्रुप में किसी व्यक्ति के बारे में गलत आरोप लगाने पर क्या मामला बन सकता है?
1: यदि कोई लीगल उसमें जो इविडेंसेस हैं, लीगल कोई सब्सटेंस उसके अंदर है जो आपने कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप ग्रुप में किया है उससे किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पे आपके खिलाफ जो है डिफेमेशन का मामला बनता है और एज पर सिचुएशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन 100% हो सकता है। तो इसलिए व्हाट्सएप पे भी आप किसी के बारे में अपशब्द लिख रहे हैं या कुछ ऐसी अशोभनीय बातें लिख रहे हैं तो वो भी लीगल एक जो है डिफेमेशन की कैटेगरी में आती है वो भी।
0: मतलब वही ना सर कि मजाक में भी बोलती है, रोज दिल पर ले गया तो ये बुरा ही है।
1: हाँ तो सोच समझ के आपको कोई भी सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अगर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में भी आप चैट कर रहे हैं तो आपको किसी को डिफेम करने का राइट नहीं मिल जाता है, है
0: बिल्कुल
1: ना? हाँ। तो आपको सोच समझ के पोस्ट करना चाहिए और कोई भी अगर डिफेमेटरी कोई स्टेटमेंट किसी ने दिया है तो आपको उसे आगे फॉरवर्ड नहीं करना है।
0: सर अगर कोई व्यक्ति किसी गलत पोस्ट को या सिर्फ फॉरवर्ड करे तो क्या वह भी जिम्मेदार हो सकता है?
1: देखिए मैंने जैसे बताया अभी आपको, ये फैक्ट्स पर निर्भर करता है, फॉरवर्ड करने वाले की भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, उसकी नॉलेज क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, कंटेंट नेचर ऑफ कंटेंट क्या है। अगर इन सारी चीजों में उसका इंटेंशन मैलाफाइड है और वास्तव में वो भी डिफेमेशन करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति की, तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ भी एक्शन बनता है, इसमें डिफेमेशन का केस बनता है उसके खिलाफ भी।
0: तो सर क्या किसी की फोटो लगाकर कैप्शन लिखना भी गलत है?
1: आपने देखा होगा आजकल खूब जो है एक डीप फेक नाम का वर्ड आपने सुना होगा।
0: जी जी
1: तो डीप फेक वर्ड क्या होता है? देखिए डीप फेक एक वर्ड जो आपने सुना होगा, डीप फेक में ये होता है कि लोग जो है किसी की भी फोटो से कुछ और फोटो बना देते हैं, उसकी वास्तविक फोटो को चेंज करके।
0: ये तो अब चला भी हुआ है। हाँ,
1: तो ये डीप फेक का जो आपने देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स हमारे शिकार होते हैं, पॉलिटिशियंस शिकार होते हैं, बहुत सारे पॉपुलर जो पर्सनैलिटीज है उनके ऊपर उनकी डीप फेक जो है वीडियोज बना दी जाती है। तो यदि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन प्रभावित हो रही है और ये गंभीर कानूनी मुद्दा है तो फिर अगर आपने स्क्रीनशॉट यूआरएल और डेट वगैरह अगर सब आपका एविडेंस के रूप में फाइंड आउट हो गया कि आपने भी उस पार्टिसिपेट किया है उस कैटेगरी में, तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर डिफेमेशन केस बनता है।
0: आजकल तो ये बहुत चला भी हुआ है सर।
1: हाँ बिल्कुल बना हुआ है,
0: एआई का जमाना है।
1: एआई के कुछ नुकसान भी है
0: और कुछ फायदे भी है
1: कुछ, तो जो चीज अच्छी है वो एडॉप्ट करनी चाहिए।
0: करेक्ट, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला क्वेश्चन है, क्या व्हाट्सएप स्क्रीन शॉट कोर्ट में एविडेंस बन सकता है?
1: हाँ बिल्कुल बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट की अभी गाइडलाइंस भी आई है। अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एविडेंस हो सकता है लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी एडमिसिबिलिटी कानून के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हो तभी वो एडमिसिबल हो।
0: अगर पोस्ट बाद में डिलीट कर दी जाए तो क्या मामला खत्म हो जाता है या फिर ये मामला चलता ही रहता है? सर
1: देखिए ऐसा है, आपने ये तो वही वाली बात हो गई, पहले आपने अपराध कर दिया फिर उस अपराध का साक्ष्य मिटा रहे हो आप उसका एविडेंस, मतलब एक तरफ आपने अपराध किया फिर उसका एविडेंस आप मिटा रहे हो, तो इसमें कैसे माफी मिल पाएगी आपको, है ना? तो इसमें ये है कि अगर आपने उस चीज को पब्लिश कर दिया और उसका एविडेंस अभी भी उपलब्ध है, उसका साक्ष्य उपलब्ध है और आपने बाद में अगर उसको डिलीट भी कर दिया है लेकिन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपके ऊपर समाप्त नहीं होता क्योंकि आपने साक्ष्य मिटाया है।
0: ओके
1: आपने अपराध तो कर दिया ना, और फिर आप अपराध करके बाद में उसको डिलीट कर रहे हैं, तो जब अपराध हो गया तो अपराध की तो सजा मिलनी चाहिए ना,
0: मतलब माफी मांगने से भी नहीं होएगा कुछ भी।
1: वो देखिए विक्टिम के ऊपर है, अगर विक्टिम माफ कर देता है
0: ओके
1: ठीक है, या कोर्ट उसको माफ कर देती है लेकिन अपराध तो हुआ है ना।
0: ये तो है सर, मतलब वही है ना, किसी के ऊपर पत्थर मार के सॉरी बोलो तो क्या ही फायदा।
1: तो अपराध आपने किया है, तो अपराध अगर करा है तो आपके ऊपर केस बनता है।
0: ओके
1: ये विक्टिम का, विक्टिम के ऊपर है कि विक्टिम उसको माफ करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है या कोर्ट उसको कोई ग्रांट देती है।
0: अगर सर मान लीजिए उसने कोर्ट में भी मतलब बता दिया उसके बारे में और उसने खुद भी माफ कर दिया तो फिर क्या कोर्ट तक?
1: ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ज्यादा बड़ा अपराध नहीं था तो वो हो सकता है कि उसको माफ भी कर सकते हैं, और लगता है कि वास्तव में एक कॉन्सिक्वेंसेस था तो उसमें पनिशमेंट दे सकती है कोर्ट, या उसपे पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकती है, कम्पनसेशन सकती है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
0: अगर मैंने किसी के बारे में सच बात कही तो क्या ये भी मानहानि हो सकता है सर?
1: देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन के संदर्भ में ट्रूथ जो होता है एक महत्वपूर्ण स्टैट्यूटरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उसके साथ अगर कानून में अनकंडीशन मतलब और दूसरी कंडीशंस भी लगी हुई है, जैसे कि सच है कह देना हर मामले का ऑटोमेटिक डिफेंस नहीं होता है, है ना। अगर आपने कह दिया कि भाई इस आदमी ये आदमी ऐसा है और वो वास्तव में सच भी है, तो आप ये कह के कोर्ट को नहीं कह सकते साहब ये बात ठीक थी और इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, इसका नेचर ऐसा था, बदतमीज आदमी है, ये लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन अगर उससे डिफेमेशन हुआ है या उसका जो है कुछ लीगल इंफ्रिंजमेंट हुआ है उसके राइट्स का, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनता है।
0: मतलब तारीफ करना भी गलत है सर?
1: तारीफ डिफेमेशन में नहीं आता ना, अगर आप उसकी रेपुटेशन को हर्ट कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन हर्ट होने से अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है, उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसके जीने का आप राइट जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, लीगल राइट का इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो आपके ऊपर इन डिफेमेशन का केस बनता है।
0: किसी व्यक्ति की आलोचना करना और मानहानि में क्या अंतर होता है सर?
1: देखिए, फेयर क्रिटिसिज्म जो होता है और डिफेमेटरी एलिगेशंस होती हैं, दोनों अलग अलग कंसेप्ट होती हैं। किसी काम, पॉलिसी या पब्लिक कंडक्ट की उचित आलोचना और किसी व्यक्ति के बारे में रेपुटेशन हार्मिंग फॉल्स एलिगेशन में अंतर किया जाता है। अगर आप उसकी उचित एक आलोचना कर रहे हो, फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो चीज अलग है, लेकिन आप उसका इंटेंशन ही आपकी उसको डिफेमेशन करने की है, जिससे उसके रोजगार पे इफेक्ट पड़े, उसके काम पे इफेक्ट पड़े, उसकी इमेज पे इफेक्ट पड़े, तो निश्चित तौर पे आपको लीगल जो प्रोसीडिंग्स है फेस करनी पड़ सकती है।
0: क्या पब्लिक फिगर की आलोचना करना भी अपराध है?
1: नहीं, देखिए, पब्लिक फिगर की फेयर क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हैं तो अपराध नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म और डिफेमेटरी एलिगेशन के बीच लीगल बाउंड्रीज का ध्यान रखना होता है कि लीगल बाउंड्रीज के अंदर ही अगर हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो चीज तो समझ में आती है, लेकिन उस बाउंड्री से बाहर निकल के अगर आप कर रहे हो तो वो दिक्कत है थोड़ी सी।
0: तो क्या सर बिना किसी के नाम लिए भी बात करना मानहानि हो सकता है?
1: हाँ, यदि परिस्थितियों से लोगों को ये स्पष्ट हो जाए कि ये बात आपने इस व्यक्ति के बारे में कही है, ठीक है, तो केवल नाम ना लेने से आपका मामला स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। ये जरूरी नहीं कि आपने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अगर आपने ये जता दिया एक पब्लिक के बीच में कि उस व्यक्ति के बारे में ही बात हो रही है, भले ही आपने नाम नहीं लिया। अब सपोज करिए आपने किसी देश के, किसी भी देश के, मैं मतलब वर्ल्ड की बात करूं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बात करी और देश का आपने नाम लिया
0: जी,
1: आप किसी देश का नाम ले रहे हो, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हो, तो आपने प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं लिया ना
0: जी, जी,
1: लेकिन आपने देश का नाम लिया और प्रधानमंत्री का नाम लिया।
0: ओके,
1: तो आपने एक क्राइम कर दिया अगर आपने कोई अपशब्द बोले उनके खिलाफ, तो है ना, डिफेमेशन अगर आपने करी है तो क्राइम बनता है फिर वो।
0: अगर किसी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ अपनी राय दी थी, तो क्या ये भी हमेशा बच सकता है या फिर गलत है?
1: देखिए, आप ये कह के कोर्ट से जो है आप जो है कोर्ट को गुमराह नहीं कर सकते। कोर्ट कथन की जो वास्तविकता होती है, नेचर होता है, उसका कंटेक्स्ट होता है और उसके प्रभाव को देखती है कि आपने किस इंटेंशन से, किस प्रभाव से उस चीज को यूज करा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो है सिर्फ अपनी राय दी थी, तो इसको कह के आप नहीं बच सकते।
0: सर, अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्रकारिता में मानहानि से कैसे बचा जा सकता है?
1: देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। आमतौर पर रिपोर्टर्स को ये डिफेमेशन के केसेस बहुत झेलने को मिलते हैं
0: जी जी,
1: क्योंकि रिपोर्टिंग आपने देखा होगा कि अगर आप किसी की भी खिलाफ रिपोर्टिंग कर देते हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या कोई बड़ा बिजनेसमैन हो
0: जी,
1: तो सीधे डिफेमेशन का नोटिस भेज देती है जो विक्टिम होता है या जो जिसको लगता है कि डिफेमेशन हुई है उसकी। तो मीडिया को खासतौर पर डिफेमेशन से बहुत सामना करना पड़ता है। पत्रकारिता में और मीडिया में सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको कोई भी खबर प्रसारित करने से पहले फैक्ट्स की जानकारी करनी चाहिए, उसको वेरीफाई करना चाहिए, रिलायबल सोर्स पर भरोसा करना चाहिए कि कौन से सोर्स से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है। आमतौर पे आपने भी देखा होगा कि लोग आजकल प्रतिस्पर्धा इतनी हो गई है टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनलों पे,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: कि वो खबर चला देते हैं तुरंत ब्रेकिंग कि साहब यहाँ पे ये एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे पहाड़ गिर गया, यहाँ पे कुछ हो गया, और पता चलता है कि वो खबर जो है वो ऐसी कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे
0: जी, जी, जी।
1: तो एक कंपटीशन के दौर पे मीडिया को भी एक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास जो खबर आ रही हो रिलायबल सोर्स से आ रही हो, तभी आप उसे प्रसारित करें, उस फैक्ट्स को वेरीफाई करें कि वास्तव में ऐसी कुछ घटना हैपनिंग वहाँ हुई है या नहीं हुई है, और उसमें संबंधित व्यक्ति का भी आपको पक्ष लेना पड़ता है। अगर आप किसी के बारे में कह रहे हो कि साहब इस आदमी ने जो है धोखाधड़ी कर ली, एक के खिलाफ चला रहे हैं, एक के पक्ष में चला रहे हैं, एक के विपक्ष में चला रहे हैं
0: जी,
1: तो मीडिया को बायस नहीं होना चाहिए, उसको पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुन के दोनों के स्टेटमेंट फैक्ट्स को अच्छी तरह पब्लिश करना ही उसकी जिम्मेदारी है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिफेमेशन का सामना करना पड़ सकता है।
0: सर, अगर किसी की मानहानि हो जाए तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सपोज करिए कि अगर आपके बारे में किसी ने अपशब्द कह दिए या आपको फेसबुक पे कुछ अपशब्द कह दिया है, कुछ गाली दे दी है, कुछ और दे दिया, तो आप सबसे पहले तो उस एविडेंस को इकट्ठा करिए, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, उस पोस्ट को, मैसेज को, कोई न्यूज़पेपर में आया, कोई क्लिपिंग है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई यूआरएल है, कोई स्क्रीनशॉट है, उन सारे फैक्ट्स को आप इकट्ठा करिए और एक अच्छे एडवोकेट से आप लीगल एडवाइस लीजिए। उसके बाद आप उसको एक डिफेमेटरी नोटिस दीजिए और नोटिस के बाद आप सीधे कंप्लेंट केस भी कोर्ट में डाल सकते हैं।
0: सच बताऊं तो सर, इस टॉपिक के बारे में मुझे आज पता चला है कि किसी के मान हानि के बारे में भी अगर हम बोल रहे हैं तो वो भी कोर्ट तक बात जा सकती है।
1: बिल्कुल जा सकती है। अगर आपने फेसबुक पे भी किसी को अपशब्द कह दिए तो आपको कोर्ट का रास्ता देखना पड़ सकता है।
0: क्या मान हानि के मामले में लीगल नोटिस भेजना जरूरी है?
1: जी हाँ, डिफेमेशन के मामले में मोस्टली लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है, लेकिन अगर आमतौर पे अगर डिफेमेटरी नोटिस आपने नहीं भी भेजा, आप सीधे कंप्लेंट केस भी डाल सकते हैं। हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली मामलों में लीगल नोटिस भेजकर एक क्लैरिफिकेशन और अपोलॉजी और विड्रॉल या कंपनसेशन की मांग करना प्रैक्टिकल पहला कदम माना जाता है।
0: ओके।
1: तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप लीगल नोटिस भेजें, उसके बाद आप केस फाइल करें।
0: क्या मानहानि का मामला सीधे पुलिस में दर्ज कराया जा सकता है?
1: देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन की प्रक्रिया समानता कंप्लेंट केस के माध्यम से मजिस्ट्रेट के समक्ष ही शुरू की जाती है, इसलिए केवल पुलिस कंप्लेंट पर निर्भर रहने के बजाय एप्लीकेबल जो लीगल प्रोसीडिंग है उसको आपको समझना पड़ेगा और लीगल प्रोसीडिंग के तहत ही आप सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। तो क्योंकि पुलिस जो है हमारी बड़े कोई मैटर्स होते हैं उनके लिए होती है, लीगल केसेस जो ये डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स हैं और ये, तो ये मजिस्ट्रेट के समक्ष ही जो है कंप्लेंट केस में वाद दायर कर सकते हैं आप इसके लिए।
0: क्या सिविल डेफिमेशन में क्या मांग की जा सकती है?
1: देखिए, जो भी आपका डेफिमेशन हुआ है, सिविल डेफिमेशन होता है, फैक्ट्स के आधार पे जो भी आपका नुकसान हुआ है, जो भी डैमेजेस हुए हैं, जो भी आप जो है कंपनसेशन

0: इंजेक्शन चाह रहे हैं और कुछ परिस्थितियों में इंजेक्शन जैसी रेमेडीज भी मांगी जा सकती हैं, तो एज पर सिचुएशन डिपेंड करता है कि उसमें आपको जो है क्या कंपनसेशन डिमांड करनी चाहिए। और बेहतर होगा कि आप इसे किसी अच्छे, अगर कोई ऐसा आपको कोई आपको फेस करना पड़ रहा है डिफेमेशन, तो आप किसी अच्छे लॉयर से डिस्कस करके और उसको कंप्लेंट केस एक फाइल करें कोर्ट में।
1: डिफेमेशन केस में इविडेंस कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, डिफेमेशन केस में इविडेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कहा गया है, किस टाइम कहा गया है, कौन से प्लेटफॉर्म पे, यूआरएल पे कहा गया है, फेसबुक पे कहा गया है, किसी मैगजीन में छपा है, किसी अखबार में छपा है, उसका कंटेक्स्ट क्या था और रेपुटेशन पे उसका क्या इफेक्ट आया है, ठीक है, तो इन सबको इस्टेब्लिश करना पड़ सकता है। इसलिए डिफेमेशन में जो भी चीज होती है, जो एविडेंस होते हैं, वो बहुत जरूरी होते हैं। तो आपको एक एक चीज को संभाल के रखना है और जो भी फैक्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो है डिफेमेशन आगे कंप्लेंट केस फाइल करना। पब्लिक अपोलोजाइज जो होती है वो अगर पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो रहा है या अप्रोप्रिएट अपोलोजाइज से डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है और इसका इफेक्ट केस की स्टेज और एप्लीकेबल लॉ पर निर्भर करता है। अगर दोनों पार्टी सेटलमेंट कर रही हैं और एक विक्टिम जो है वो अगर इससे संतुष्ट है कि हाँ पब्लिक अपोलोजाइज कर लें या पब्लिकली वो माफी मांग लेता है अपने किए गए कृत्य के लिए या उसने जो उसकी मानहानि करी है, तो पब्लिक अपोलोजाइज से भी डिफेमेशन केस समाप्त हो सकता है।
1: क्या सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर रखना पर्याप्त है?
0: देखिए, स्क्रीनशॉट यूजफुल है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ऑथेंटिसिटी और लीगल एडमिसिबल के लिए आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो स्क्रीनशॉट के साथ साथ कोई ऐसी बात किसी के सामने कही गई हो, कोई विटनेस हो, कोई पब्लिश हुई हो किसी मैगजीन में या कहीं पे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सारी चीजों को जो एविडेंस के तौर पे जब आप प्रेजेंट करोगे तभी आपका केस मजबूत बनता है। तो निश्चित तौर पे देखिए, स्क्रीनशॉट तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ और भी एविडेंस आपको रखने पड़ सकते हैं।
1: क्या गाली देना हमेशा मानहानि है?
0: नहीं, देखिए हमेशा मैं नहीं बोल सकता। हर एब्यूसिव स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली डिफेमेशन नहीं होता। और किस माहौल में कौन सी बात कही गई है और किस इंटेंशन से कही गई है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो सबसे बड़ी चीज आपकी जो नेचर ऑफ कंटेक्स्ट है उसका, प्लस उसमें जो आपका इंटेंशन है, वो सारी चीजों को देख के ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफेमेशन कैटेगरी में है या नहीं है।
1: क्या किसी की रिपुटेशन खराब करने के लिए झूठी खबर फैलाना कानूनी अपराध हो सकता है?
0: देखिए, फैक्ट्स और एप्लीकेबल लॉ के आधार पर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप किसी के खिलाफ झूठी खबर प्रसारित कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो निश्चित तौर पे डिफेमेशन की कैटेगरी में आता है और इसके लिए आपको लीगल जो है प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ सकता है।
1: मानहानि और साइबर क्राइम में क्या संबंध है?
0: देखिए, जो मानहानि होती है ऑनलाइन डिफेमेटरी कंटेंट होता है वो डिजिटल मीडियम का उपयोग करता है, लेकिन हर ऑनलाइन डिफेमेशन को आप ऑटोमेटिकली साइबर क्राइम नहीं कह सकते, ठीक है। तो एप्लीकेबल ऑफेंस और लीगल प्रोविजन फैक्ट्स पर निर्भर करता है कि वो डिफेमेटरी कंटेंट था या वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में जाएगा। दोनों में बहुत अंतर होता है। देखिए, साइबर क्राइम हो गया एक तरीके से, आपसे ऑनलाइन किसी ने फ्रॉड कर दिया, पैसे का नुकसान हो गया, और डिफेमेशन हो गया आपकी इमेज को नुकसान पहुंचाना। तो इसलिए ऑनलाइन अगर डिफेमेशन हो रही है तो उसको आप साइबर क्राइम नहीं कह सकते, है ना। कहीं ना कहीं वो जो है दोनों की एक प्रोसीडिंग्स अलग अलग है और दोनों में जो फैक्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो फैक्ट्स देखने पड़ेंगे कि कौन से फैक्ट्स के अकॉर्डिंग वो चीज लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएगी।
1: अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में झूठी बात व्हाट्सएप पर सिर्फ 2-3 लोगों को बताता है तभी भी एक्शन हो सकता है?
0: देखिए, पब्लिकेशन का प्रश्न और अन्य लीगल रिक्वायरमेंट फैक्ट्स के आधार पर देखे जाएंगे। अगर ऑडियंस की संख्या अकेला है तो निर्णायक फैक्टर, अगर मतलब एक ही आदमी है तो उसको हम कहते हैं कि भाई एक उसको हम नहीं मानेंगे डिफेमेशन, लेकिन अगर पब्लिक ग्रुप में आपने डाला है और व्हाट्सएप ग्रुप पे कई मेंबर्स हैं तो निश्चित तौर पे वो डिफेमेटरी प्रोसीडिंग्स का आपको सामना करना पड़ सकता है।
1: अगर आम नागरिक को मानहानि से बचाने के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: देखिए, पहली चीज तो आपको कोई भी स्टेटमेंट को फॉरवर्ड नहीं करना है, है ना, बिना किसी को जांचे परखे। अगर कोई आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट देख लिया, किसी के बारे में कोई बात किसी ने अपशब्द लिखी और आपने उठा के उसको ऐसे ही फॉरवर्ड कर दिया, तो उस चीज को आपको नहीं करना है। बिना वेरिफिकेशन के किसी पर गंभीर आरोप ना लगाएं, सोशल मीडिया पर हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप अपने काम से काम रखते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा।
1: ये तो है ही सर। और जो ये टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा रहा है और हमारे श्रोताओं को भी पता चला है कि भैया हम किसी के बारे में अपशब्द बोल देते हैं, मतलब किसी की तारीफ भी करते हैं और उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है।
0: जी बिल्कुल ठीक।
1: तो मुझे नहीं पता था कि भैया कानूनी तौर इसके लिए किया जा सकता है, कोर्ट तक पहुंच सकते हैं।

0: सर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगी, आखिरकार रेपुटेशन को लेकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाए तो क्या करना चाहिए? रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया हो तो क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, किसी ने अगर आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया है तो सबसे पहले तो आप एविडेंस इकट्ठे करिए, उसे सुरक्षित करिए, गुस्से में ना आए, उसकी जवाबी उसके पोस्ट का जवाब ना बिल्कुल भी, और फैक्ट्स के अनुसार उचित लीगल रेमेडी जो भी है वो क्वालिफाइड लॉयर से मिलकर आप सलाह लें, ठीक है? तो ऐसा ना करें कि अगर उसने आपको एक गाली बक दी तो आप चार गाली उसको भी फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे दो, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसकी डिटेल पूरी लीजिए और उस बात को लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू अपने एडवोकेट को बताइए, उसको लीगल नोटिस भेजिए, देन आफ्टर आप कंप्लेंट केस फाइल करके उसको पनिश कराइए।
0: सर, आपने जैसे बोला कि गाली दिया उसने सामने वाले ने, तो क्या जब सामने वाले गाली दे रहा है तो क्या अगर दूसरा व्यक्ति भी गाली से ही रिप्लाई कर रहा है तो दोनों के ऊपर?
1: हाँ, तो डिफेमेशन दोनों तरफ से बन सकता है।
0: ओके,
1: आपने भी तो वही काम कर दिया जो उसने करा, तो आप में उसमें डिफरेंस क्या रह गया फिर?
0: जी बिल्कुल करेक्ट।
1: तो कोर्ट आपको रिलीफ क्यों देगी फिर, जब आपने उसका जवाब दे दिया तो कोर्ट में आप किस मुंह कह सकते हैं कि मेरा डिफेमेशन हुआ है?
0: ओके,
1: तो डिफेमेशन तो तब हुआ ना जब उसने आपका डिफेमेशन किया, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आप शांत बैठे हुए हैं, तो आप अपनी लीगल लिमिट्स जो आपकी लीगल बाउंड्रीज है उसको समझिए, है ना, उसके हिसाब से ही आप जो है व्यवहार करिए। अब ये नहीं कि आपने अगर जो है किसी ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में गाली दे दी एक, तो आपने तो उसको 10 बातें लिख के भेज दी, आप पे भी उन पर भी डिफेमेशन हो सकता है।
0: सर मान लीजिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, आमने सामने हम बात कर रहे हैं, आमने सामने गाली दे रहे हैं, तो मतलब हमारे पास प्रूफ ही नहीं है कि हमने इसके बारे में कुछ
1: कैटेगरी में नहीं आएगा ना फिर, तो आपकी पर्सनल एक जो है गॉसिप हो रही है ना बंद कमरे में।
0: ओके ओके,
1: डिफेमेशन तब होगी जब उस इमेज से तीसरे आदमी आपकी इमेज का आपको नुकसान पहुंच रहा है।
0: मतलब प्रूफ होना चाहिए तभी,
1: प्रूफ होना चाहिए, कोर्ट में हर चीज प्रूफ पे ही एविडेंस पे ही डिपेंड करती
0: है। चलिए इस चीज का तो भाई कंफर्म हो गया कि अगर आपके पास प्रूफ है तो देखिए भैया आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है इसने कैसे बोल दिया तो बिल्कुल आप जाइए और केस करिए। बाकी इस चीज के बारे में मुझे भी आज ही पता चला है, आई होप कि आपको भी आज ही पता चला होगा, तो आप किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले या व्हाट्सएप मैसेज करने से पहले, अपशब्द बोलने से पहले एक बार नहीं हजार बार सोचेंगे कि भैया आगे एक्शन भी लिया जा सकता है आप सभी के लिए। तो सर एक छोटा सा मैसेज।
1: देखिए मैसेज बस यही है कि आप लोग जो है अपने लीगल राइट्स को जानें, ठीक है, और कभी भी किसी से कोई भी ऐसा डिफेमेशन का काम ना करें, कोई भी पोस्ट को बिना देखे आप आगे फॉरवर्ड ना करें, और अपने जब आपको लीगल राइट्स पता होंगे तो निश्चित तौर पे आपके व्यवहार में वो चीजें आएंगी, आप क्राइम भी नहीं करेंगे और आप सुधरेंगे और एक अच्छे नागरिक बनेंगे।
0: ये तो है,
1: और जो है ऐसी हमारा कम्युनिटी रेडियो 89.6 आप सुनते रहिए
0: और से यही निवेदन करेंगे कि आते रहिए।
1: मैं तो हर बार ही आऊंगा जब आप बुलाएंगे।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम श्रोताओं अब हम यहाँ से लेते हैं जाने की इजाजत, बाकी आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा है, क्योंकि आप सभी के लिए हम टॉपिक लेकर आते रहते हैं अलग अलग टॉपिक। बिल्कुल सर सही है ना?
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं वेट करता हूँ कि कब जो है आपका ये लीगल टॉक शो आप आए और आप मेरे को इन्वाइट करें, मैं कोई अच्छा सा नया टॉपिक अपने जो हमारे लिसनर्स हैं 89.6 कम्युनिटी रेडियो के उनको एक नई जानकारी उन्हें मिले।
0: जी बिल्कुल, ये तो सही कहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट संडे, करेंगे ढेर सारी बातें।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
5: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और लेकर हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो लेकर, हेलो फरमाइश। हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम है क्योंकि आपको कॉल लगाना अच्छा लगता है, हमें आपसे बातचीत करना अच्छा लगता है और आपकी पसंदीदा गाने सुनने का तो हमें भी मौका मिलता है और तमाम श्रोताओं भी आपकी पसंद की गाने सुनते हैं, है ना। तो ये मौका आज भी आपको मिला है, मंडे टू सैटरडे मिलता है, बट पहले वीक की बात ही अलग होती है ना। मंडे आते ही हमारा कॉल लग जाए, ओ हो हो, वो खुशी तो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। तो चलो बिना किसी बातों को यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और बात करते हैं मेरे फर्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय दी।
0: हेलो जी, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है आपका?
1: गुड आफ्टरनून दी, मैं बहुत अच्छी हूँ दी। मेरा नाम है रुकैया फातिमा।
0: रुकैया फातिमा, क्या बात है, आज तो इतना चहक रही हैं आप। हाँ
1: हाँ दी, मौसम इतना अच्छा हो रहा है दी।
0: अच्छा बताइएगा कैसा मौसम है अभी राइट नाउ बाहर का?
1: दी थोड़ी बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे, पर इस टाइम पे मौसम मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश तो रुकी हुई है, हवा चल रही है,
0: सुहाना मौसम है।
1: हाँ बहुत सुहाना मौसम हो रहा है दी
0: जी। और बताइए,
1: चटपटा खाने का मौसम हो रहा है दी।
0: तो चटपटा क्या बनाने वाले हो आप बताओ?
1: दी अभी तो फिलहाल मैंने कुछ सोचा नहीं है।
0: हाँ
1: लेकिन हाँ जल्दी सोचने वाले हैं, अभी काफी टाइम है ना।
0: ठीक है, सोचो और फिर हमें भी इनवाइट करना, ठीक है?
1: हाँ जी बिल्कुल, आप आइए।
0: थैंक यू, बताइएगा।
1: वेलकम है आपका।
0: फैमिली में सब कैसे हैं आपकी घर में?
1: मेरी फैमिली में तो सभी बहुत अच्छे हैं दी, आप बताओ स्टूडियो में और आपकी फैमिली में सब कैसे हैं?
0: हाँ जी ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज कॉल किया आपने, हमारे शो की फर्स्ट कॉलर बनी है, वीक की भी फर्स्ट है एंड शो की भी फर्स्ट है, क्या सुनना है आज आपको?
1: हाँ दी इस बात से तो मुझे बहुत खुशी हो रही है दी कि मैं पहली कॉलर बनी हूँ। हाँ। और मैं इसी उससे मैं एक सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है दी।
0: बताइएगा
1: दी, सॉन्ग का नेम है दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा ट्रैक चुना है आपने।
1: हाँ दी स्पेशली ये मेरी दोस्त दरक्षा फातिमा के लिए है दी।
0: दरक्षा फातिमा जी के लिए है, वो तो सुनकर ओहो उनके चीक्स तो पिंक हो गए, मुस्कुरा रही है उस समय।
1: हाँ दी, वैसे भी दी मेरी दोस्त ना इतनी अच्छी लगती है, मुस्कुराती भी, और मेरी कॉल सुन ली होगी तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जब एक दोस्त का कॉल आता है ना और दूसरी दोस्त उसको याद करती है तो खुशी के मारे ना आसमान में उड़ने लगते हैं। सबसे अलग होती है, एग्जैक्टली राइट। तो और कुछ कहना चाहती हूँ,
1: जब वो बेस्टी की कॉल सुनेंगी तो उनके चेहरे पे तो और ज्यादा स्माइल बहुत अच्छी वाली आ रही होगी।
0: हाँ जी, और कुछ कहना चाहती हूँ आप?
1: और कुछ तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, पर हाँ मेरे साथ है मेरी सिस्टर सुनने वाली और अफरोज फातिमा, आसिया फातिमा और नजमा आती है, राबिया आती है और आप और सभी सुनने वाले।
0: ओके चलिए सभी के साथ सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको। थैंक यू सो मच डियर कॉल करने के लिए।
1: दी अगर तरफ से पार्टी में सुन रही हो ना तो वो भी कॉल कर ले, मुझे उनकी कॉल का वेट रहेगा।
0: ठीक है, वो भी प्रयास तो कर रही होंगी कि मेरा भी कॉल लग जाए, दुआ कर रही होंगी और मेहनत भी कर रही होंगी कॉल लगाने का। तो चलो एवरीवन सुनते हैं ये ट्रैक और उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से कॉल लगाइए मुझे, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी मस्ती से। और इस खूबसूरत गीत को गाया था आनंद राज आनंद जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर भी आनंद राज आनंद जी हैं एंड लिरिक्स थे समीर जी के। और सुनने वाले सभी श्रोताओं को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार दीदी।
0: आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: गिराम, हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बहुत अच्छे हैं दीदी, और आपका कार्यक्रम सुन रहा है, दूसरा कॉलर बना दीदी सोमवार के दिन, बहुत खुशी होती है दीदी। मैं सोमवार ही कॉल लगाता हूँ जैसे दीदी ज्यादातर आपके कार्यक्रम में।
0: अरे वाह, मंडे टू मंडे ही कॉल लगाते हैं आप, हमें भी जानकर अच्छा लगा कि वीक में आप एक बार कॉल करते हैं हमें।
1: जी हाँ दीदी, हफ्ते में सिर्फ एक ही कॉल लगाता हूँ मैं।
0: जी बताइएगा सर, कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: मौसम तो दीदी आज सुबह अच्छी बारिश हुई और अभी धूप खिली हुई है।
0: अच्छा, अभी धूप है। और बताइएगा, गणेश उत्सव का कैसा चल रहा है आपके यहाँ पर, ये खूबसूरत सा फेस्टिवल?
1: हमारे गांव में तो बहुत उत्साह से गणेश जी को बिठाते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं 10 दिन तक, जो हमारे गाँव के सभी गाँव वाले इकट्ठा होकर पूरे गाँव के गणेश जी को बिठाते हैं, पूरे गाँव के 10 दिन उनका पूजन पाठ करते हैं और उन्हें बड़े उत्साह से शाम के टाइम पूरा गांव का लोग सब इकट्ठा होते हैं दीदी वहाँ पर।
0: अरे वाह, भजन कीर्तन आरती करते हैं, संध्या आरती और मॉर्निंग में। जी तो बताइएगा, आज क्या सुनना चाहते हैं आप
1: दीदी? मुझे गणपति जी का कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए आपके कार्यक्रम में।
0: अच्छा ठीक है, हम एक गीत आपको सुनवाते हैं फ्रॉम द मूवी अग्निपथ से।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
0: मोस्ट वेलकम सर, आपका भी धन्यवाद, आपने हमें कॉल किया। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी अग्निपथ से, दीवा श्री गणेशा दीवा। एंड ये ब्यूटीफुल ट्रैक है और उसके बाद हम बात करेंगे आपसे भी। आप भी मुझे जल्दी से कॉल लगाइए बिना किसी देरी के, हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: हाय पीपल, स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी अग्निपथ से। अब बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हाय दी।
0: हाय, क्या नाम है आपका, बताइएगा।
1: मैं दरक्षा पार्टी में बात कर रही हूँ दी, कैसी हो आप?
0: दरक्षा जी, हम तो ठीक हैं। अभी आपकी दोस्त ने आपको याद किया और देखिए आपका कॉल भी आ गया। हाँ, बड़ी लंबी उम्र है आपकी।
1: मेरी दोस्त जब कॉल करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है बहुत।
0: कितनी खुशी होती है आज बता ही दो, जाहिर करो वो खुशी।
1: मैम बेहिसाब खुशी होती है, उसका कोई हिसाब नहीं है।
0: अच्छा, बेहिसाब होती है। ओके, कोई हिसाब नहीं होता है
1: जी।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसी दोस्ती में मोहब्बत होनी भी चाहिए।
1: हाँ मैम, वो भी बहुत प्यार करती है मेरे से, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ उसको।
0: अच्छी बात है, ऐसी दोस्ती होनी चाहिए हर किसी की।
1: हाँ जी मैम।
0: बताइएगा आज क्या सुनोगी आप डियर?
1: दे मैं आज सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ,
0: हाँ
1: स्पेशली अपनी दोस्त रुकैया फातिमा के लिए।
0: ओके, बहुत प्यारा गाना है। और कुछ कहना चाहती हो आप?
1: हाँ मैम, मेरी सिस्टर है अफरोज फातिमा, नजमा अप्पी, राबिया अप्पी, लाइबा काजमी और आप
0: ओके
1: सभी सुनने वाले।
0: ठीक है, तो हम आपकी सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना। आप अपना ख्याल रखो अच्छे से।
1: ओके मैम, बाय बाय।
0: बाय, टेक केयर। तो चलिए जीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक रक्षा की रिक्वेस्ट पर। और आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6। और अभी आपने सुना ये अमेजिंग सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी एमएस धोनी से। और इस खूबसूरत ट्रैक को गाया था पलक मुच्छल जी ने। एंड अभी हमारे पास कॉल आया था वृंदा का, जो कि अभी ऑन द वे कार में है और एफएम मुरादाबाद सुन रहे हैं। और हमने वृंदा से बात की तो वृंदा शर्मा रही थी एंड उन्होंने गाने की रिक्वेस्ट हमें भी की है कि मैम मुझे बरसात ट्रैक सुनना है। तो चलिए वृंदा की पसंद पर सुनवाते हैं ये ट्रैक बरसात। और बारिश भी हुई है ना, अभी एक डेढ़ घंटा हो गया है बारिश हुई थी मुरादाबाद शहर में, तो ये बरसात वाला गाना भी सुन लेते हैं। और जो हमें इस वक्त राइट नाउ सफर में सुन रहे हैं, तो बस मैं आपसे कहना चाहूंगी कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा, सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिए और अपने प्यारे से चेहरे पर स्माइल भी रखिएगा। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए गाना सुनिएगा, बस मैं आती हूँ वापस।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना बरसात ट्रैक। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े राइट नाउ। हेलो फरमाइश
1: जी। मैम जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, क्या नाम है आपका?
1: एमपी विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके पूरे घर परिवार को हिंदी दिवस एवं गणेश चतुर्थी एवं तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
0: सेम टू यू, आपको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। और आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: थैंक यू मैम। मैम मूवी का नाम है शिकारी और उसमें एक गाना रहेगा, जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना शिवा। ओके मोस्ट वेलकम, आप इंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और ये गाना हम प्ले करने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत इस गीत को गाया है उदित नारायण जी ने, अलका याग्निक जी ने। तो बिना किसी देरी के सुनते हैं और बातचीत करेंगे आपसे भी। आप भी कॉल लगाइएगा, शायद आपका भी ट्रैक प्ले हो जाए।
2: मुझे माफ कर दो विजय,

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी आपने सुना ये अमेजिंग सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी शिकार से उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी की आवाज में, प्यारा सा ट्रैक। इस खूबसूरत गीत को लिखा था प्रवीण भारद्वाज जी ने और म्यूजिक डायरेक्टर थे आनंद राज आनंद जी। अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:46 और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी आपके?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइएगा आप कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है। क्या टाइम हो रहा है इस टाइम?
0: सर समय हुआ है 3:46।
1: आपने मुझे टाइम बता दिया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है।
0: मोस्ट वेलकम। बताइएगा क्या नाम है आपका?
1: हम संभल से छोटे अंसारी हैं जी।
0: जी बताइएगा, और सब खैरियत से हैं आपकी यहाँ पर सर?
1: जी सब खैरियत से है और बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है। मेरी कॉल लग गई आकाशवाणी मुरादाबाद में।
0: जी जी जी, बताइएगा सर, आज आपने हमें कॉल किया है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। बताइएगा आप क्या सुनना चाहेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है गौतम गोविंदा।
0: हाँ जी,
1: शशि कपूर हीरो है इस फिल्म के। ये गीत के बोल है, ओ तेरा बिटवा जवान होए गवा के माँ मेरी शादी करा दे।
0: ओके, और इस खूबसूरत गीत को किसने गाया है जरा बताइएगा?
1: मोहम्मद रफी साहब ने गाया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें और आनंद बख्शी साहब ने लिखा है। और FM मुरादाबाद पे कॉल लगाते रहो, मेहनत करते रहो, जैसे छोटे अंसारी की कॉल लगी है हो सकता है आपकी भी लग जाएगी।
0: बिल्कुल डेफिनेटली सर, आपने प्रयास किया, आपका कॉल लगे है और जो लिसनर से राइट नाउ हमें सुन रहे हैं वो भी कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली उनका कॉल लग जाएगा।
1: हाँ ये है कि पानी पीते रहो और आकाशवाणी मुरादाबाद भी सुनते रहो।
0: हाँ और मुस्कुराते भी रहो, राइट?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मुस्कुराते रहो
0: जी सर।
1: जी क्या नाम है जी? एक हमारे दोस्त है इरशाद अहमद अंसारी है।
0: हाँ जी,
1: उनके भाई है।
0: ओके,
1: ये है बाबू अंसारी और जी खुशी जी भी है और संभल से छोटे अंसारी तो है।
0: ठीक है सर, हम सभी के साथ सुनवा दें गीत आपको, आपकी पसंद का। आपने हमें कॉल किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं ये गाना, उसकी बात करेंगे आपसे भी बातचीत।
2: बिट्टू जवान।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत आशा भोसले और साथ में मोहम्मद रफी साहब जी की खूबसूरत सी आवाज। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका?
1: जी बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: आपको भी प्रणाम। बताएगा अपना शुभ नाम?
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरहिका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राख मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी बताएगा सर, कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: मौसम तो बहन रंगीला है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इस समय हम बगीचे में बैठे ऐसे मुरादाबाद का भरपूर आनंद ले रहे हैं। आज हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को।
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगी, एक नजर में बाल माँ तुझे अपना बना लेंगी वाला गीत सुनना चाहते हैं क्योंकि आज तीजा का व्रत भी।
0: हाँ जी, आज हरतालिका तीज भी है तो उसी उपलक्ष में ये ट्रैक आप सुनना चाहते हैं।
1: जी
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं आपको ये गाना।
1: लाइनें भी कहेंगे बहन?
0: जी बिल्कुल कहिएगा सर।
1: बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है। आप जैसी महिला शक्ति बनकर रेडियो एफएम मुरादाबाद से बोलती हैं तो दुनिया क्या पूरा इतिहास ही बदल देती है।
0: बहुत ही खूबसूरत लाइनें लिखी है आपने।
1: जी बहन।
0: और प्रेजेंट भी किए, थैंक यू सो मच सर। और सुनवाते हैं आपको भी प्यारा से गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: जी बहन प्रणाम।
0: आपको भी प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये अमेजिंग सा ट्रैक कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में। मैं वापस आती हूँ, जब तक आप भी ट्राई कीजिएगा, आपका भी कॉल जल्दी से लग जाएगा।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: कोई मिल गया,
3: कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना एक खूबसूरत सा गीत, रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा ले गई। और जब हाथों में बैंगल्स पहनते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और आज तो हरताली का तीज भी है, एंड जो शादीशुदा होती हैं महिलाएं, जो सदा मतलब अपने हस्बैंड के लिए सदा सुहागन रहने के लिए ये तीज का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इस ब्यूटीफुल तीज फेस्टिवल में माँ पार्वती और शिव जी की पूजा अर्चना आराधना होती है और महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, मतलब पानी भी नहीं पीती हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठकर शायद पूजा करने के बाद ही पानी वगैरह पीते हैं। और कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति होती है, जब कोई भी कार्य हम पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं ना तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलती है। और चलिए अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? सलमान अख्तर जी बात कर रहे हैं। जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर? हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आपकी वॉइस मुझे थोड़ी स्लो आ रही है, प्लीज थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप?
1: हेलो।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइएगा सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: हेलो।
0: यस, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हेलो, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या सर?
1: जी मैम।
0: मैंने कहा क्या फरमाइश है आपकी, बताइएगा।
1: आंखें भरी भरी दिल लगाने की बात करते हो।
0: ओके, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं आप?
1: जी ये वाले ट्रैक सुनना चाहते हैं। और जी इस समय हम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून से वाले कॉलेज से बात कर रहे हैं।
0: हाँ जी, आप हमारे रेगुलर लिस्नर हैं, आप बातचीत करते रहते हैं राइट?
1: जी मैम। और कुछ मित्र है?
0: हाँ जी बताइए।
1: रमा परवीन जी है, अपनम अब्बासी जी है, और पूनम जी है, और मुकेश भाई और फरमान भाई मुरादाबाद से।
0: ठीक है सर,
1: सुनने वाले
0: बिल्कुल आपके सभी दोस्तों के साथ सुनवाते हैं गाना। आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी।

0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपने सुना कुमार सानू जी की आवाज में, और इस खूबसूरत गीत को लिखा था समीर जी ने, एंड मूवी है तुमसे अच्छा कौन है, बहुत ही प्यारा सा ही गाना। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने अगले कॉलर से, वो भी इंतजार कर रही हैं। हेलो फरमाइश जी, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका?
1: मैं
0: जी बताएगा कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो?
0: मैं भी ठीक हूँ मैम, आप बताइए कैसा मौसम है आपकी तरफ, बारिश हो रही है या नहीं?
1: मौसम बहुत अच्छा हमारे यहाँ का।
0: अच्छा ओके, और बताइएगा मैम आज काफी समय के बाद आपने कॉल किया है। अच्छा अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत ठीक है अभी आपकी?
1: जी दीदी तबीयत ठीक है, तबीयत खराब हो गई थी, अब बच्चों की तबीयत खराब है तो उसी चक्कर में हम मुरादाबाद नहीं चल पाए।
0: अच्छा कोई बात नहीं मैम, घर में जब ऐसा माहौल बन जाता है तो सब चीजों को संभालना पड़ता है ना।
1: जी
0: अभी ठीक है आपकी फैमिली मेंबर सब लोग? चलिए अच्छी बात है, हम भी दुआएं करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाएं। बताइएगा आज क्या सुनना चाहती हैं आप?
1: मुझे आपकी पसंद।
0: अच्छा आप मेरी पसंद का सुनना चाहती हो?
1: जी
0: ओके, और कुछ कहना चाहती हैं आप मैम?
1: ये कुछ नाम है।
0: हाँ बताइएगा। अच्छा ठीक है, हम सबके साथ सुनवाते हैं प्यारा सा गाना, आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया, और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। तो एवरीवन एक ट्रैक है बहुत ही प्यारा सा, एंड जुबिन नौटियाल जी की आवाज़ में, तो मैंने कहा मौसम भी खूबसूरत सा है, बारिश भी हुई है, तो ये गाना सुन लेते हैं, बरसात की धुन, बहुत प्यारा ट्रैक है, आपको भी पसंद आएगा उम्मीद करते हैं हम ये।

0: बिल्कुल दोस्तों, आपने बरसात की धुन सुन ली है और ये गाना अभी आपने एंजॉय किया। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिला पूछ रहा था, बड़ी मस्जिद के पास से राजा हसन बोल रहा मैम।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: हम ठीक है, मगर मैं करण को सिराए से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा सर।
1: बस बढ़िया, ऑटो चला रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: अपने करणपुर आया था सवारी लेके।
0: ओके ओके, तो बताइएगा।
1: जी और शुरू थी तो सवारी भी सुन रही थी।
0: अरे वाह, चलिए अच्छी बात है, खुद भी सुनते हैं अपनी सवारी को भी आप सुनवाते हैं, सफर भी कर जाते हैं पता नहीं चलता और अच्छा भी लगता है, राइट?
1: जी
0: आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर, बताइएगा।
1: गाने बोल रहे हैं कि जी

ओके, ये बिच्छू फिल्म का ट्रैक सुनना चाहते हैं आप? ठीक है सर, आप इंजॉय कीजिएगा, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गाना। और एवरीवन, आप भी चाहते हैं कि आपका भी फेवरेट गाना यहाँ पर प्ले हो ऑन ईयर, आपके साथ साथ हमारी तमाम श्रोता आपकी पसंद को सुने, तो आप जल्दी से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 आरजी खुशी के साथ। शो का नाम है हेलो फरमाइश, और इस ब्यूटीफुल शो में आप भी मेरे साथ जुड़ कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपना फेवरेट गाना सुन सकते हैं, किसी को डेडिकेट कर सकते हैं। ये इतना अच्छा सा मौका आपको मिला है, मिस मत कीजिएगा। जल्दी कॉल लगाइए और अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम, मैं रजनी खान बोल रहा हूँ, रेवाड़ी हरियाणा से।
0: जी बताइएगा।
1: मुझे गाना सुना था फिल्म बचपना से।
0: हाँ जी।
1: गाने के बोल हैं, मेरे दिल में जो मांगा मिल गया।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है। बताइएगा अपने बारे में सर, आप क्या करते हैं?
1: मैम मैं यहाँ कंपनी है उसमें जॉब करता हूँ एज ए सिंगल इंजीनियर।
0: ओके, तो आप प्रॉपर वहीं के रहने वाले हैं?
1: नहीं, मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ हाथरस यूपी से।
0: अच्छा, ओके, आप वहाँ पर जॉब करते हैं, राइट?
1: जी
0: सर। तो बताइएगा आप आज ही गाना किन के लिए सुनना चाहते हैं, खुद के लिए या फिर कोई खास है?
1: बस ऐसा होता है आदमी की खुशी, कुछ जो इच्छा होती पूर्ति होती नहीं तो शायद लगता है कि उसको खुश रहना चाहिए मेरे हिसाब से।
0: हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो हम ये ट्रैक सुनवाते हैं आपको। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए सर।
1: शुक्रिया,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं सर की पसंद का ये अमेजिंग सा ट्रैक, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया। और जब दिल की खुशी पूरी हो जाती है ना, तो बात ही अलग होती है ना। अब आप सोच रहे हैं कि काश मेरा कॉल लग जाए, और जब कॉल लग जाता है तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते, है ना, बहुत खुशी मिलती है। चलो अभी गाना सुनो, फिलहाल मैं लौट कर आती हूँ।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: कोई मिल गया,
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में राइट नाउ 4:39। 29 मिनट अभी स्टूडियो की घड़ी में हुए हैं 4:29 राइट नाउ। और अभी आपने सुना रखवाला फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत जो 1971 में आई थी। लता मंगेशकर जी ने इस खूबसूरत गीत को गाया था और म्यूजिक डायरेक्टर थे कल्याण जी आनंद जी। चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: नमस्कार जी। नमस्कार, मैं गांव गोवर्धन जिला वाशिम महाराष्ट्र से रविंद्र पवार बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा, आप कैसे हैं सर?
1: मैं बहुत ही अच्छा हूँ दीदी, आप कैसे हो सब लोग? आप
0: हम लोग बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा महाराष्ट्र का मौसम कैसा है?
1: मौसम दीदी अभी कल परसों के दिन थोड़ी बहुत बारिश हो गई, 15 दिन से बारिश नहीं दीदी। इस साल बारिश बहुत ही कम है हमारे महाराष्ट्र में।
0: अच्छा, बारिश कम हुई है?
1: हाँ, इस साल बहुत ही कम है
0: जी। और आज गणेश चतुर्थी भी है। गणेश भगवान का ये प्यारा सा पर्व आज सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो बताइएगा आप क्या कहना चाहेंगे? स्पेशली महाराष्ट्र का तो पॉपुलर फेस्टिवल है।
1: हाँ दीदी, हमारे महाराष्ट्र में पुणे और मुंबई और हमारे महाराष्ट्र में पूरे जिले में दीदी ये बड़े धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाता है दीदी।
0: जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने।
1: आज हर घर में गणपति आने वाले हैं और मैं गणपति की आप सभी लोगों को और अपने श्रोताओं को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
0: जी हमारी ओर से भी आपको इस पावन पर्व की गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: तो दीदी आज मुझे सुनना है हमसे बढ़कर कौन मेगा।

हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपका वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, गणेश भगवान श्री विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता हैं, तो हम भी बस यही प्रार्थना करते हैं कि पापा आपके जीवन में

0: ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपके सारे विघ्नों को हरे। और चलिए अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश यहाँ पर। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैम अजय कुमार नाम है मेरा।
0: जी अजय, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मुरादाबाद से बात कर रहे हैं, श्यामपुर हादीपुर गांव है।
0: जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम हमारी फरमाइश है वो खिड़की वाली तो कल पुराना।
0: अच्छा ठीक है।
1: मेरे परिवार में कुछ लोग हैं।
0: हाँ बताइएगा।
1: ये जितिन भांजा है, लव कुमार भतीजा है,
0: ओके,
1: और लव अर्नब है बेटा हमारा।
0: अच्छा ठीक है,
1: मिलके सुनना चाहते हैं मैम।
0: ठीक है सर।
1: मैं 3 बजे से ही कॉल लगा रहा हूँ मैम, कह रहे कि तुम्हारी कॉल नहीं लगेगी। मैं डेली कॉल लगाता हूँ आपको।
0: अच्छा
1: लगी थी मेरी, परसों भी बात हुई थी मैम से।
0: अच्छा
1: लग जाएगी।
0: ठीक है ठीक है सर, आपके पूरे परिवार के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना आपको। और दोस्तों आप भी प्रयास कीजिएगा, जब आप ट्राई करेंगे ना तभी तो आपको भी सक्सेस मिलेगी ना। अब आप कॉल लगाएंगे तो डेफिनेटली कॉल लगेगी, जल्दी से लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: दोस्तों अभी आपने एंजॉय किया बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा गीत फ्रॉम द मूवी राजा और रंग से जो 1968 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था मोहम्मद रफी साहब जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, लिरिक्स थे आनंद बख्शी जी के। और अभी बात कर रहे थे अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैडम जी, मैं सनील साहू मधुसूदन नगर जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है मैडम जी, हमारे यहाँ पे बरसात हो रही है।
0: अच्छा, बारिश हो रही है?
1: जी जी।
0: अरे वाह, कब से बारिश हो रही है सर?
1: ये 2 बजे से पानी गिर रहा है, अभी भी पानी गिर रहा है।
0: अच्छा, अभी भी बारिश हो रही है, बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैडम जी, पिक्चर का नाम है दूध का दर्द।
0: अच्छा हाँ जी, बताइएगा इस फिल्म का कौन सा गीत सुनना है? ठीक है, सुनवाते हैं गाना आपको, आप एंजॉय कीजिएगा। जी बताएगा।
1: और अमर सिंह नीले दल वाले पठार से, ये सभी दोस्तों को गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
0: ठीक है सर, सभी के साथ सुनवाते हैं आपका पसंद का ये प्यारा सा गाना। और श्रोताओं आप भी कॉल लगाइएगा बिना किसी देरी के, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू माय ऑल एवरी लिसनर्स. वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर. और अभी आपने अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी जब मैट से, एंड मोहित चौहान जी की बहुत ही प्यारी आवाज दिल को सुकून दे जाती है यार. और अभी वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:56, हाँ जी 4:56. और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे टुमारो मॉर्निंग. तब तक के लिए आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गनगनाते रहिए. और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुस्कुराते रहिए. देखिए, जिंदगी में ना प्रॉब्लम्स, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में ना हो. सबकी लाइफ में होती है, किसी की लाइफ में ज़्यादा होती है, किसी की लाइफ में कम प्रॉब्लम होती है. लेकिन आपको परेशानी में परेशान नहीं होना है, धीरे रखना है, पेशेंस रखना है और हिम्मत रखिएगा, सब कुछ ठीक होगा. खुद पर और ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखिए, विश्वास रखिए. बाकी देखिए, गणेश जी आ गए.

गणेश भगवान जी आ गए हैं, गणपति बापा का यू नो आज ब्यूटीफुल डे है, गणेश चतुर्थी आज सेलिब्रेट की जा रही है और बस हम भी यही कामना करते हैं कि भगवान गणेश आपके सारे विघ्नों को हरे और आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो। ओके बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, कीप स्माइलिंग एंड अगर आप अभी सफर कर रहे हैं राइट नाउ तो बस यही कहेगी खुशी की केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा एंड मुस्कुराते हुए घर पर जा रहे हैं तो कुछ मीठा शीठा भी लेकर जाओ और बाकी बाय बाय, सुनिएगा एक अमेजिंग ट्रैक आप सभी के लिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन में कही।
3: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं, किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर ये सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
2: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
4: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रुपए या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। रूपरेखा सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट के 4 अगस्त 2026 के आदेशानुसार तैयार की गई है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं, तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

वाली इवनिंग है आरजूरी के साथ, आप कनेक्ट है एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:23 हो चुके हैं और आप आरजे रीना के साथ इवनिंग मस्ती शो में कनेक्ट हो गए हैं। और साथ ही साथ भैया आज का स्पेशल डे ना बहुत ही खास है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज ही के दिन बहुत से डेज मनाए जाते हैं। और आज की तारीख, अच्छा आपको नहीं पता है, चलिए मैं बता देती हूँ, आज की तारीख है 14 सितंबर और आज गणेश उत्सव यानी कि गणपति जी का हैप्पी वाला बर्थडे। तो आई नो कि आप सभी के घर में भैया गणेश जी, गणेश पप्पा जी आ गए होंगे। जोरों शोरों से भैया गली मोहल्ले में एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही वाइब है, यानी कि 10 दिन के लिए ना मुरादाबाद के गलियों में भैया अलग ही रौनक रहने वाली है। अगर बात करूं तो अभी मार्केट की, तो अभी मैं भागी भागी आप सभी के साथ आई हूं कनेक्ट होने के लिए। मैंने कहा चलो भैया 5 बज चुके हैं और 5 बज चुके, देखिए ऐसा मन से अपने मन में ना खलबली मचने लग जाती है कि भैया चलो हमारे जो लिसनर है ना वे वेट कर रहे हैं, और उससे ज्यादा तो हम उत्सुक होते हैं कि भैया आप सभी के साथ कनेक्ट होए और साथ ही साथ लोकल फॉर वोकल और देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज तीज भी है और आज हिंदी दिवस भी है, तो आप रेडी है? आज हम ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले आपसे जिसको आपने एक्चुअल में हिंदी में क्या कहते हैं वो आपने मैसेज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। हम कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें, क्योंकि अभी तो भैया ट्रेलर रिलीज हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर के लिए आपने इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप।
3: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर।
2: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी।
3: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
2: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आप सभी के साथ। फिर से हम कनेक्ट हो गए हैं और समय की बात करूं इस टाइम तो समय हो चुका है 5:30 और आप इवनिंग मस्ती शो में आरजे रीना के साथ कनेक्ट है। और आज की तारीख 14 सितंबर अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। और साथ ही साथ आप ऑन द वे हैं, देखिए ऑफिस से बहुत निकलने की सोच रहे भैया कि अब बस टाइम हो चुका है, ऑफिस से निकल लेते हैं। और बहुत सभी ट्रैफिक में होंगे, ट्रैवलर कर रहे होंगे, तो जो ऑफिस अभी नहीं निकले हैं, निकलने वाले हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब आप ऑफिस से निकले तो अपना फोन, चार्जर, लैपटॉप अपने साथ भैया बैग में पैक कर ले। पता चले कि आप आधे रास्ते जाते हैं, आपको याद आता है कि अरे यार धत तेरी की अपना जो फोन है मेरा वो तो मैं ऑफिस में ही भूल गया। ऐसे ही अभी हुआ है, यानी कि हमारे ऑफिस में एक लड़की गई है भैया, उसने अपना फोन छोड़ दिया यहीं। तो मुझे लगा कि आप सभी को ना याद कराना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑफिस से निकल रहे हैं तो अपना सामान अच्छे से पैक कर लीजिएगा। पता चले कि देखिए फ़ोन के बिना कोई नहीं रह पाता है, और ऊपर से जब आज आपके पास फ़ोन मिल भी जाए और चार्जर ऑफिस में रह जाए तो चार्जिंग के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए ये जो दो चीज़ें हैं अपने साथ ज़रूर लेकर निकलिए बाहर। और साथ ही साथ आप ट्रैफिक में हैं तो सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आप अक्सर ये सोचते हैं कि यार कौन देख रहा है, आसपास तो कोई है नहीं,

बता सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, ताकि उस रूट से और भी आने वाले हैं वो थोड़ा जल्दी अपने घर पहुँच जाए। और देखिए, हर किसी को ना बस एक ही उम्मीद होती है कि भैया बस अब ऑफिस से निकल चुके हैं और बस घर पहुँचे और आराम से आराम करें। लेकिन देखिए, आराम के साथ साथ अपने घर वालों को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका इंतज़ार करते हैं। और इसी के साथ साथ हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने घर अच्छे से पहुँचिए, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम कोई आपको डांटने वाला नहीं है। आराम से घर पहुंचिए, जो सामान लेकर आपने जाना है बिल्कुल लेकर जाइए। आज तो वैसे भी पापा घर पर आ गए हैं, तो उनके लिए भी भैया आप 10 दिन के लिए गांठ बांध लीजिए कि जब भी आप ऑफिस से घर जाए तो उनके लिए कुछ न कुछ ज़रूर लेकर जाए, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी घर पर कुछ लेकर जाए। चलिए, इसी के साथ एक गाना सुनवाते हैं आप सभी को, बहुत ही शानदार वाला, और यूं ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: बरांदा तेरा लाल। आए हाय क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। मूवी यानी कि पति पत्नी और वो दो, आए बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया भैया। आयुष्मान खुराना और एक्टर की बात करूं तो भैया तीन तीन एक्टर है इसके अंदर। अगर आपने मूवी नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। और साथ ही साथ अगर आज के दिन की बात करूं तो शुभ सोमवार, सोमवार का दिन है। और समय की बात करूं तो 5:41 हो चुके हैं और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट हैं इवनिंग मस्ती शो में। तो फिलहाल आज हम बात कर लेते हैं गणेश उत्सव, यानी कि आखिरकार मनाया क्यों जाता है गणेश उत्सव, है ना। हर किसी के दिमाग में एक ख्याल आता है ना, मेरे मन में तो ज़रूर आता है ये ख्याल कि आखिरकार ये डेज क्यों मनाए जाते हैं। गणेश उत्सव यानी गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला और बुद्धि विवेक देने वाले देवता माना जाता है। इसीलिए किसी भी शुभ काम की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। प्रथम पूज्य गणेश जी इनका नाम पड़ा। इस दिन घरों में पंडालों में गणपति पप्पा की स्थापना की जाती है, पूजा अर्चना और आरती की जाती है और फिर परंपरा के अनुसार गणेश विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का अगर रंग की बात करूं तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं मुंबई पुणे की गणेश उत्सव की रौनक देश भर में मशहूर है। अब बात करते हैं पापा के सबसे पसंदीदा प्रसाद के बारे में, क्योंकि भैया फेवरेट वाला प्रसाद हर किसी का होता है, है ना। आज से आपका फेवरेट वाला डिश पिज्जा बर्गर जो भी होता है, लेकिन भगवान यानी कि गणेश जी को पापा को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मोदक यानी कि माँ पार्वती जी ने उनके लिए बनाया था जब उनको पहली बार अन्न प्रसारण यानी कि भोजन खिलाया जा रहा था। तो मोदक बहुत ही उनको फेवरेट है। साथ ही साथ लड्डू, जो कि हम अब कहा जाता है कि भैया ज़्यादा मीठे चीज़ मत खाना, लड्डू मत खाना, डायबिटीज़ हो जाएगा तुम्हें, मोटापा बढ़ जाएगा, तो इसीलिए कंट्रोल करके खाना। और देखिए गणेश जी हमारे जो हैं उनको लड्डू मीठे चीज़ें मीठे पकवान ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो थोड़ा मेहनत भी कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे मेहनत कर लेते हैं, वो फिर बताएंगे। और आप सभी ने अपने घर में इको फ्रेंडली गणेश पाजी यानी कि गणेश पप्पा लेके आए हो ना, क्योंकि बहुत ही कहा जाता है कि शुभ माना जाता है। तो आप सब मिलके बोलिए गणपति बाबा मोरिया, हर घर में सुख समृद्धि और खुशियों का आए। और गणपति बाबा मोरिया आप सभी दिल से बोले, क्योंकि हर गली मोहल्ले घर में एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही जज्बा है। साथ ही साथ एक हमारे पास वॉइस मैसेज आता है, आखिरकार सर अपनी वॉइस में हमारे साथ क्या पहुंचाना चाहते हैं, चलिए एक बार वो भी सुनना बहुत जरूरी है।
1: आज तो मैम यहाँ पर ना जो करूला है मुरादाबाद में, करूला संभल रोड वाला डबल फाटक, इतना जाम चल रहा है बहुत ज्यादा,
2: कुछ न कुछ जरूर
1: भाई आधा घंटा हो गया एक जगह से गाड़ी सिर्फ 10 चली है, ये समझ लो इतना जाम चल रहा है। तो थोड़ा अपने दर्शकों को लिसनर को अपने बता देना, ठीक है, थैंक यू।
0: क्या बात है जी, थैंक यू सो मच सर। इनका नाम दिनेश, आई थिंक दिनेश जिनका नाम है। और थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे पास यानी कि अपडेट पहुंचाई है कि करूले की तरफ से दानिश, ओके इनका नाम दानिश जी है, कि उस टाइम भाई अगर करूले की तरफ से आ रहे हैं, डबल फाटक की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको जैसा कि सर ने बोल ही दिया है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, यानी कि जाकर आधे घंटे में थोड़ा सा आपको गाड़ी ना चलाने का मौका मिल सकता है, अदरवाइज़ आप वहीं थम के वेट करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे। इसीलिए अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो थोड़ा सर्च करके ज़रूर निकलिए। देखिए मैं अक्सर आप सभी को बताती हूँ कि जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं लोकेशन सर्च करते हैं, तो लोकेशन में आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर की पट्टी आपको दिखाई देती है ना, ग्रीन कलर की पट्टियों के अंदर ही अगर आपको रेड कलर की पट्टी दिखाई देती है भैया, तो साफ समझ जाइए कि इस रास्ते पर आपको ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो थोड़ा संभल कर और पेशेंस के साथ क्योंकि देखिए ट्रैफिक में हैं आप और पेशेंस रखना इस टाइम बहुत जरूरी होता है। आई नो बहुत से सोच रहे होंगे कि यार और कितना पेशेंस रखा जाए, बहुत देर हो गए हमें यहाँ ट्रैफिक में फंसे फंसे, लेकिन कोई बात नहीं, आपने हॉर्न ज्यादा नहीं बजाना है क्योंकि आप आराम से गाड़ी में हैं और जो बाहर वाला इंसान है ना, कान की सोचिए क्या हालत हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा हॉरर नहीं बजाना है और थोड़ा सा सब्र रखना है आपने, क्योंकि आप उस रूट पर निकल गए हैं तो अब इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है जी, फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है और उसके बाद हम बात करेंगे आज का स्पेशल डे यानी कि हिंदी दिवस के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल आप कनेक्ट रहिए आर्जेरीना के साथ और सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे।
3: Hey, you're tuning to FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।
7: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है कि हर एक पल को ऐसे जियो कि जैसे कि आखिरी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं एंजॉय करते हैं, हम ये सोचते हैं कि आखिरकार कल क्या होएगा। हम पूरी अपनी जिंदगी कल के ऊपर सोच कर छोड़ देते हैं, कल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कल के लिए क्या तैयारियां करें। हम आज को तो भूल ही जाते हैं, मानो ऐसे अपनी जिंदगी से भूल जाते हैं कि जैसे प्यास लगा हमने पानी पिया, बस इतना ही। लेकिन मुझे लगता है कि आज को आप अच्छे से इंजॉय करिए, तब जाकर आप कल के बारे में सोचिएगा, तो आपको बहुत अच्छा फील होएगा, क्योंकि आपने आज को अच्छे से इंजॉय नहीं किया है और कल के बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए आज को इंजॉय करिए, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा, तीसरे दिन के बाद में भी देख लेंगे, लेकिन आज को तो एटलीस्ट आप जियो अच्छे से। आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट है, और समय की बात करूं तो 5:55 हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती शो में आप कनेक्ट है, और आज की तारीख 14 सितंबर, 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस दिन को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं, संस्कृति और अपनेपन से जुड़ी भाषा। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए और उसे बोलने में झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। आज हम पढ़ाई और काम के लिए कई भाषा सीखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी भाषा को पीछे छोड़ देना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होता। हम इसमें हमारी माँ की लोरी, दादी की कहानी, गांव की बोली और अपनेपन, अपने लोगों का प्यार बसता है। तो आजकल आपने बहुत से देखा भी होगा कि भैया आजकल जो हमारा मॉडल ज़माना है, और हम इस मॉडल ज़माने में अपनी हिंदी भाषा को छोड़ते जा रहे हैं। हर कोई इंग्लिश, इनफैक्ट छोटे बच्चों से आप पूछ लो कि 12 यानी कि 12 को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वो बता नहीं पाएंगे। 69 को पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे। इनफैक्ट मैं ही कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ, सच में कभी कभी 43 और 69 में तो मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग से इस चीज़ पर जोर नहीं देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें परफेक्ट होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ हिंदी हमारी मातृभाषा है, जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते हो। और मुझे लगता है किसको आप जितना बढ़ावा देंगे उतनी बहुत ज़रूरी है। हम एक्चुअल मैंने कभी कभी शर्मा भी जाते हैं हिंदी बोलने में कि नहीं यार ये इंग्लिश बोल रहा है, और मैं इसके आगे हिंदी बोलूँगी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अरे क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हो, तो आपकी

जो रिस्पेक्ट है वो तो और भी ऊंची हो गई। तो इसलिए अपनी मातृभाषा को समझिए और इसे जितना हो सके उतना बढ़ावा दीजिए। साथ ही साथ कुछ मैसेजेस है लेकिन उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गाना तो बनता है। रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए तभी मजा आने वाला है, सही बता रहे हम।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

हाय हाय, क्या बात है जी। और समय की बात करूं तो देखिए, दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है और 6:06। ओहो, और आज की तारीख 14 सितंबर, और आरजे रीना के साथ कनेक्ट है आप इवनिंग मस्ती शो में। और साथ ही साथ आज हरतालिका तीज मनाया जाता है। आज देश के कई हिस्सों में हरतालिका तीज का पर्व मनाया जा रहा है। ये त्योहार भगवान शिव और मां पार्वती के प्रेम समर्पण और वैवाहिक जीवन की खुशियों से जुड़ा हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि इस दिन तपस्या और उनके अटूट संकल्प के बाद भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए हरतालिका तीज पर महिलाएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं और अपने वैवाहिक जीवन के सुख शांति तथा पति की लंबी उम्र की कामना करती है। कई अवैवाहिक लड़कियां भी इसे अच्छे जीवन साथी की कामना करती है, इस व्रत को रखती हैं। जिनका शादी नहीं हुआ है वो भी रखती हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और तीज की कथा सुनती हैं। खास बात ये है कि ये पर्व सिर्फ व्रत का नहीं है बल्कि नारी के प्रेम विश्वास और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि भाई, अगर पहले के रिश्तों की बात करूँ ना, तो पहले इंसान रिश्ते अच्छे से बना कर रखते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, अगर एक शब्द भी आपने गलत या कुछ खिलाफ बोल दिया तो भैया रिश्ता वहीं तलाक पे आ जाता है। तो मुझे लगता है कि हम 90s 80s की फोटो तो हम डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन वो जो पहले की संस्कार था, जो पहले की यादें थी, वो भी अपने अंदर हमें ढालना चाहिए। क्योंकि हर रिश्ते को देखिए, रिश्ता चलाने के लिए ना एक को ना एक को झुकना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, पेशेंस, लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। कोई किसी के बारे में सुन नहीं सकता है क्योंकि मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, तुम मुझे गलत नहीं बोल सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज के टाइम में यानी कि कोई किसी की बात नहीं सुन सकता, पेशेंस लेवल बहुत ही कम है। फिलहाल मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। और आप सभी को, जिन महिलाओं ने, विमेन ने आज तीज रखा है, तो आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहे और खुशियों का बौछार बनाते रहे। अब मैसेज की बात करूं तो बांसुरी कॉलोनी करूला मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, सैयद शारिक अली, मिराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड इवनिंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आपका शो इवनिंग मस्ती सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और गाने बहुत अच्छे प्ले करती है हर एक प्रोग्राम में, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी। अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो गर्ज वाली इवनिंग है, कैसी हैं आप रीना जी? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं हरियाणा वालों? अजी बिल्कुल यूपी वाले हैं सर आप तो। अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, वेरी वेरी गर्ज वाली इवनिंग है, वेरी गुड इवनिंग जी। दिशा हमारे साथ कनेक्ट होती है मुरादाबाद से और हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, साथ ही साथ गणेश उत्सव की भी शुभकामनाएं देती है आपको भी जी। और गणेश पप्पा आपकी जिंदगी में हर दुख को खत्म करें, क्योंकि विघ्न हरता है वो दुखों को हर लेते हैं, तो आपके जीवन में भी खुशियां लाए। सेम टू यू जी, आपकी भी जिंदगी में वो खुशियां लेकर आए, क्योंकि सर्वप्रथम पूज्य भगवान जी माने जाते हैं गणेश जी, जो विघ्न हरता है, दुखों को हरते हैं और आपके जीवन में भी खुशियां ही लेकर आए। फिलहाल एक तीज के मौके पर ये गाना तो बनता है ना, हरतालिका तीज है तो इसके ऊपर तो ये वाला गाना बनता ही बनता है। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: प्राथमिक विद्यालयों का संवरता स्वरूप, यूपी में शिक्षा का निखरता रूप,
4: ऑपरेशन कायाकल्प ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की बदली तस्वीर,
3: पीएम पोषण से पौष्टिक भोजन, तो स्मार्ट क्लास से मिल रही है आधुनिक शिक्षा की नई रोशनी,
4: शारदा कार्यक्रम से आउट ऑफ स्कूल बच्चों विद्यालय से जुड़े, समर्थ के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की समावेशी शिक्षा के द्वार खुले।
3: अब यूपी में हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चे का आगे बढ़ने का सपना पूरा होता है।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी

ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਏ ਜੋ ਕੱਲ ਮੇਰੀ।

लेकिन एक थोड़ी सी दुखद ये भी है कि भारतीय टीम ने नवीन से नहीं ली ट्रॉफी। बाकी क्या रहेगा क्या नहीं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लेते एक म्यूजिकल ब्रेक और एक और आप सभी को गाना सुनवाते धाकड़ वाला उसके बाद करेंगे।

हेलो जी, बेपरा की आवाज में बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और समय की बात करूँ तो 6:31 हो चुके हैं और आप अर्जेंटीना के साथ कनेक्ट है इवनिंग मस्ती शो में। देखिए, अब जो महंगाई है ना भैया, रिकॉर्ड तोड़ती ही जा रही है। हर चीज के ऊपर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि कुछ कह ही नहीं सकते, यानी कि सर पर चढ़कर तांडव करने लगी है। देखिए, जहां पर चीनी प्याज की बात करूं भैया, तो 60 रुपए किलो तो मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ यानी कि डेली खाने जाने वाला या खाने जाने वाली रोटी, जी गेहूं की बात कर रही हूँ मैं, यानी कि गेहूं की महंगाई में भी उछाल देखा गया, यानी कि 200 रुपए तक का उछाल गेहूं में। अब देखिए, हर चीज भैया महंगी होती जा रही है, इसीलिए अपने डिमांड को थोड़ा महंगाई की तरफ ना ले जाकर थोड़ा सोच समझ कर खर्चे करिए। और साथ ही साथ फोन की अगर मैं बात करूँ रिचार्ज, तो ये कहा जा रहा है कि वो भी महंगी होने वाली है। अब सोचिए, इंसान रिचार्ज करने से पहले ये सोचेगा कि पहले वाले टेलीफोन ही अच्छे थे, 1 रुपया डालते थे, मिनट के हिसाब से बात हो जाती थी, बातें भी हो जाती थी और काम भी हो जाता था। लेकिन अब नेट खत्म हो जाता है तो रोने लगे।

0: बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuning into FM Muradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

नवजात दुसिन जी की आवाज़ में, दिलजीत दुसिन जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 6:39 हो चुके हैं और आप सभी को पता ही होगा कि अपने मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर दोराहा स्थित पर एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। और आग सिर्फ किससे लगी पता है? सिलेंडर से। आग की ऊंची लपेट और धुआं का गुबार दूर तक दिखाई दिया, जिससे इलाके में हफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस और जो अधिकारी हैं मौके पर वहां पहुंची, आग बुझाने की पूरी कोशिश की गई। और देखिए, मैं सभी से यही कहती हूँ कि जब भी आप अपने घर में सिलेंडर लेकर आते हैं, जब यूज़ करते हैं और यूज़ नहीं करते, तो उसका रेगुलेटर बंद कर देना चाहिए और एक बार ये ज़रूर जांच कर लेनी चाहिए जो आप सिलेंडर लेने जा रहे हो, वाकई में वो ठीक है या नहीं है। अगर वो लीकेज हो रही हैं आपके किचन में या फैक्ट्री में और थोड़ी सी स्मेल आ रही है, तो आपको ज़रूर जांच करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप जांच नहीं करते तो भीषण आग का रूप ले लेती है और जिससे बहुत नुकसान पहुँचता है। अब सोचिए फैक्ट्री में कितना नुकसान पहुँचा है। और साथ ही साथ आज हिंदी दिवस है और इसी मौके पर मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ कड़क सवाल, जिसको हम आजकल अंग्रेजी में इवनिंग, शाम कहते हैं, है ना? तो आपने आज बताना है हमें मैसेज करके कि शाम को हिंदी में क्या कहते हैं। शाम नहीं पता है तो इवनिंग को हिंदी में एक्चुअल में क्या कहते हैं, आपने मैसेज करके बताना है। नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज करके राइट आंसर हमें पहुंचाना है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेना चाहिए ना कि शाम को हिंदी में क्या कहते हैं। सोचिए और मैसेज करिए। नंबर है 9837896896 पर आपने हमें मैसेज करना है कि शाम को हिंदी में क्या कहते हैं। जल्दी मैसेज करिए। एक और गाना आप सभी के बीच बहुत ही शानदार है, पढ़ाइए और मजा आएगा। और ये बताइए कि शाम को हिंदी में क्या कहते हैं।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
3: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
2: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुनीना के साथ। अब कनेक्ट है और समय की बात करूँ तो 6:47 हो चुके हैं और हर चीज की महंगाई बढ़ती जा रही है। अब लहसुन अदरक की महंगाई भी सर पर टांडो करने लगी भैया। हर चीज की महंगाई पता नहीं क्या करके मानने वाले हैं भैया, क्या नहीं करने वाले। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, जो मैंने आप सभी से आज कड़क क्वेश्चन पूछा है उसके जवाब आपने देना है। आई नो बहुतों के आंसर आ गए हैं, लेकिन आपके भी आंसर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप राइट आंसर पहुंचा सकते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन ही कर।

का हमारा कड़क क्वेश्चन यही है कि शाम को हिंदी में क्या कहते हैं। बस इतना ही सोचना है यार, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने आप सभी से, बहुत आसान वाला पूछा है कि शाम को हिंदी में क्या कहते हैं। सोचिए और मैसेज करिए, नंबर है 9837896।

जी बिल्कुल अप्पा आप सभी से डेली मिलने के लिए आ जाते हैं, हम इंतजार नहीं करवाते हैं। फिलहाल आप भी कनेक्ट हो जाए करिए जी अपने शहर का सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। अप्पा फिर मिलांगे, इसीलिए कहते हैं हर लाइफ को एंजॉय करिए, एंजॉय करना सीखिए। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप चाहते भैया सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो 15 सितंबर से आप सभी के पास लकी चांस है। रेलवे की तरफ से यानी कि ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, पैरामेडिकल के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए ही है अभी। और साथ ही साथ जेई अप्लाई कर सकती हैं यानी कि, और अगर मैं बात करूं तो एनटीपीसी यानी कि एनटीपीसी क्या होता है, जो टिकट्स काटते हैं रेलवे में, उनके लिए है। तो आप बिल्कुल अपना जो फॉर्म है फिल कर सकते हैं और उसकी तैयारी, ये मत सोचिए कि मैं फॉर्म भरने के बाद ही करूं, बल्कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है तो अभी से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पहले से ही तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि भैया एक बार में ही पेपर क्लियर हो जाए। तो आप ज़रूर इसके तैयारी करते रहिए। और जो रेलवे यानी कि एनटीपीसी के दो भाग में इनके पेपर होने वाले हैं, तो बस उसी हिसाब से अपना जब जो तैयारियां है वो जारी रखिए। परिणाम देखिए उसी का आता है जो मेहनत करता है, तो मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज का जो मैंने आप सभी से कड़क सवाल पूछा है वो यही कि शाम को हिंदी में क्या कहते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारे पास किन का राइट आंसर आता है, क्या कहते हैं ये। विकी सागर जी का कहना कि शुभ रात्रि। ओके, अगले मैसेज की बात करूं तो बबली अनजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, भैया आज तो राइट आंसर के साथ ये कनेक्ट हो गई हैं। इनका कहना है कि संध्या कहते हैं। ओके, तो आप बनती भैया इवनिंग मस्ती शो के विनर कि शाम को संध्या सांझ कहा जाता है। ललिता कश्यप जी राइट आंसर के साथ कनेक्ट हो गई है कि संध्या कहा जाता है हिंदी में शाम को।

0: कनिका जी का मैसेज आता है, इनका कहना है कि सांझ कहते हैं, बिल्कुल जी सांझ और संध्या एक ही है और आप भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती हैं। प्रदीप जी कनेक्ट होते हैं लाइन पार से, इनका कहना है कि संध्या कहते हैं मैम। और जो मेरी माता श्री है वो हमेशा सांझ और संध्या ही कहती है, तो इसलिए मेरे को याद है कि शाम को संध्या ही कहते हैं।
1: तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार।
0: साक्षी जी कनेक्ट होती हैं दिल्ली से और इनका कहने की भी राइट आंसर होता है संध्या। ओके, और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अपा हम मिलेंगे फिर कल और करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ जिन्होंने आज सोमवार का फास्ट रखा है उनके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं लेती हूँ बाय, जाने की इजाजत। अपा कल मिलेंगे और करेंगे क्या, अरे ढेर सारी बातें करने। अभी के लिए बाय।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओ, आप सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर स्थिरता आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के अथक प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने पर चर्चा हुई। वियतनाम भारत की लुक ईस्ट, आसियान, हिंद प्रशांत महासागर और ग्लोबल साउथ नीतियों में महत्वपूर्ण साझेदार है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
2: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
1: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है। उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही। मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता बढ़ सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी खुशी लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां हम आपको मिलवाते हैं उत्तर प्रदेश के उन खास पहचान से जो परंपरा, स्वाद और विकास का अनोखा संगम है।
1: और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज लेकर आई हूं एक ऐसे स्वाद की कहानी जो दशकों से लोगों की जुबान पर राज कर रही है। एक ऐसा स्वाद जिसके बिना मुरादाबाद की पहचान अधूरी मानी जाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, जब भी मुरादाबाद का नाम आता है तो सबसे पहले याद आती है पीतल नगरी। दुनिया भर में अपने पीतल के बर्तनों और हस्तशिल्प के लिए मशहूर मुरादाबाद आज एक और खास पहचान बना चुका है।
1: बिल्कुल, अब मुरादाबाद सिर्फ पीतल के लिए नहीं बल्कि अपनी मशहूर मूंग दाल के लिए पूरे देश में जाना जाता है।
0: सुबह की हलचल, बाजारों में लोगों की चहल पहल और दुकानों से उठती गर्मा गर्म मूंग दाल की खुशबू, आय हाय हाय,
1: ऐसा लगता है जैसे हर गली कह रही हो मुरादाबाद आए हो तो मूंग दाल चखे बिना मत जाइए।
0: यही कारण है कि आज देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग यहाँ की मूंग दाल का स्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं।
1: और अब उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से इस पारंपरिक स्वाद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिल रही है।
0: मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं
1: और इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है एक जिला एक व्यंजन यानी ODOC योजना, जिसके तहत मुरादाबाद की मूंग दाल को विशेष पहचान दी जा रही है।
0: दोस्तों, आखिर क्या खास है मुरादाबाद की मूंग दाल में?
1: इसका राज छुपा है इसी की पारंपरिक विधि और बेहतरीन मसालों में।
0: सबसे पहले चुनी जाती है उच्च गुणवत्ता वाली धुली हुई मूंग दाल, फिर उसे साफ करके खास तरीके से भिगोया जाता है।
1: इसके बाद धीमी आंच पर दाल को इस तरह पकाया जाता है कि उसका हर दाना मुलायम रहे लेकिन टूटे नहीं।
0: पर शुरू होता है असली जादू।
1: देसी घी या शुद्ध तेल में जीरा, हींग, हरी मिर्च, अदरक और खास मसालों का तड़का लगाया जाता है।
0: जब यह तड़का दाल में मिलता है तो उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है।
1: ऊपर से डाला जाता है हरा धनिया, नींबू का रस और कभी कभी हल्की सी देसी घी की धार।
0: बस यही बनाती है मुरादाबाद की मूंग दाल को सबसे अलग।
1: कहते हैं कि जिसने एक बार इसका स्वाद चख लिया वह दोबारा मुरादाबाद आए बिना रह नहीं पाता।
0: खास बात यह है कि यहाँ की मूंग दाल सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक भी होती है।
1: इसमें प्रोटीन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए यह स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखती है।
0: मुरादाबाद की कई पुरानी दुकानें पिछले 50 से 70 वर्षों से इसी पारंपरिक स्वाद को बनाए हुए हैं।
1: पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है यह कला, आज भी उसी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रही है।
0: सुबह के नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख तक मूंग दाल हर समय लोगों की पहली पसंद बनी रहती है।
1: कई लोग इसे कुरकुरी नमकीन के रूप में पसंद करते हैं तो कई लोग गर्मा गर्म मसालेदार दाल के रूप में।
0: यही विविधता इसे हर उम्र के लोगों का पसंदीदा व्यंजन बनाती है।
1: दोस्तों, किसी भी पारंपरिक व्यंजन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि सही पहचान भी जरूरी होती है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार की ODOC योजना का उद्देश्य यही है कि हर जिले के प्रसिद्ध व्यंजन को नई पहचान मिले।
1: इसी के तहत स्थानीय उद्यमियों, महिला स्वयं सहायता समूहों और छोटे कारोबारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
0: आधुनिक पैकेजिंग, ब्रांडिंग, फूड सेफ्टी मानकों और डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी भी दी जा रही है।
1: अब मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल सिर्फ स्थानीय बाजारों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश और विदेश के ग्राहकों तक पहुँचेगी।
0: इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों की आय बढ़ेगी और महिलाओं के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सोशल मीडिया पर भी अब हैशटैग मुरादाबाद दाल तेजी से लोकप्रिय हो रही है।
1: लोग इसकी तस्वीरें, वीडियो और स्वाद का अनुभव साझा कर रहे हैं।
0: एक समय था जब मुरादाबाद को सिर्फ पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था,
1: लेकिन आज यह शहर अपने पारंपरिक स्वाद, संस्कृति और स्थानीय व्यंजनों के कारण भी नई पहचान बना रहा है।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप मुरादाबाद आएं,
1: वहां के शानदार पीतल उद्योग को जरूर देखिए,
0: शहर की ऐतिहासिक विरासत को जानिए
1: और सबसे जरूरी,
0: मुरादाबाद की मशहूर मूंग दाल का स्वाद जरूर चखिए,
1: क्योंकि यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं
0: बल्कि मुरादाबाद की मेहनत, परंपरा और मेहमान नवाजी की पहचान है।
1: और जब स्थानीय स्वाद को विकास का साथ मिलता है
0: तो एक जिले की पहचान पूरे देश की शान बन जाता है।
1: विकास का प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
0: सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
3: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
2: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: मैं हूं आपके साथ आपकी आर्जरीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। टॉक शो में कनेक्ट हो गए हैं जी ढेर सारी बातें करने के लिए। और कहते हैं अपना घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, उसमें जुड़ी होती है उम्मीदें, सपने और पूरी जिंदगी की कमाई। लेकिन सोचिए अगर वही सपना किसी बिल्डर की लापरवाही, देरी या धोखाधड़ी की वजह से अधूरा रह दे तो क्या करें? क्या कानून आपके साथ खड़ा है? और एक खरीदार के तौर पर आपके अधिकार आखिर का है? तो श्रोताओं, आज का प्रोग्राम हमारा बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं, तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी आपके बारे में, हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
5: देखिए मैं पहले तो आपकी कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज से लीगल टॉक जो आपने चलाई है, खास तौर पे जो अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है।
6: बिल्कुल।
5: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का, कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ, जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
6: मतलब वो ये जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता
5: है। बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
6: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है।
5: देखिए खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं सपनों का घर बनाऊं, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका। फिर गुणवत्ता, उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं, तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
6: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
5: बिल्कुल।
6: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए।
5: देखिए आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट लें, 2 लाख में प्लॉट लें, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में। तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा, ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसका लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई हैं उसको ध्यान से पढ़िए, भुगतान की क्या योजना है, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए। और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को, उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है। रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
6: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
5: देखिए वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज्ड बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं करता, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है, वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
6: क्या बात है, क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
5: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है। हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको डीपली चेक करें उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
6: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
5: देखिए ये प्रॉब्लम बहुत आम हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, बिल्डर जो है उसका पैसा भी उसको पहुंच चुका है और वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा है, तो

0: दोनों पक्षों की रजामंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन कीमत और भुगतान की शर्तें एग्रीमेंट के अनुसार ही तय होती हैं, जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ होता है।
1: तो श्रोताओं बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है आप सभी के साथ। देखिए बातों के साथ गाने के तड़के ना लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि काम की बातें होती हैं, तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या हर प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है?
1: देखिए, कई जो परियोजना होती है उसके लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है हमें सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ श्रेणियों में जो है कानून की तरफ से छूट भी दी गई है। तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो रेरा मैंडेटरी है, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी हैं कि वहाँ पे कुछ जो है क्लॉज ऐसे हैं कि उसमें कानून में छूट भी दी गई है।
0: सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, रेरा क्या है और खरीदार को इसे क्या फायदा मिलता है?
1: देखिए, रेरा एक रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, और इससे एक खरीदारों को ये फायदा मिलता है कि रेरा में कोई बिल्डर जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको अपने काफी सारे जो पेपर्स हैं, जो अपना लैंड बैंक है, जो प्रोजेक्ट वो ला रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो सारी रेरा में जो ये जो रेरा संस्था जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है उसको अवगत कराना पड़ता है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खरीदार है उसके लिए भी एक जो है फायदे की चीज है, और उसको भी एक बचाने का उद्देश्य है रेरा का, कि अगर कोई भी बिल्डर ऐसी सिर्फ ब्राउचर्स पे या एडवर्टाइजमेंट के बल पे अगर वो जो मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो बिना रेरा के

0: तो वो रोक लग जाती है उसपे। और सबसे बड़ी चीज, अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे पैरामीटर उसके पूरे हैं, कागज पूरे करके वो अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, तो खरीदारों का उस पर भरोसा भी बढ़ जाता है।
1: अगर बिल्डर रिफंड देने से मना कर दे तो क्या करें?
0: देखिए, अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म्स कंडीशन ऐसे तय हुई है कि बिल्डर्स पैर एग्रीमेंट में कि कुछ रिफंड अगर आपका क्लेम निकलता है तो आप उससे डिमांड करते हैं, तो पहले तो लिखित मांगे, दस्तावेज को सुरक्षित रखें, और अगर उसके बाद भी बिल्डर उसको टाल रहा है या कुछ लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है, तो जो भी आपकी कानूनी विधिक जो भी आपके पास राइट्स हैं, आप किसी अच्छी एडवोकेट से राय लेके उसको आप जो है सू भी कर सकते हैं कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, रेरा में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है।
1: श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम अगले एक कॉमन क्वेश्चन है सर, क्या कब्जा लेने के बाद भी शिकायत की जा सकती है?
0: जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपसे बिल्डर ने जो है आपको परमिशन दे दिया है और उसने जो एज पर एग्रीमेंट अगर उसने कोई भी क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया है, या उसने जो चीज आपको रिटर्न में दी है उस चीज को आपको प्रोवाइड नहीं कराया है, या क्वालिटी लो क्वालिटी यूज करिए, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
1: सो एक बहुत ही, ये मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चन है, बिल्डर द्वारा वादा की गई सुविधाएं ना मिलने पर क्या अधिकार है?
0: देखिए, बिल्डर ने अगर कोई भी चीज आपको कमिट करी है और रिटर्न में कमिट करी है, तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को अपने कंज्यूमर को, जो आप जो एंड यूजर है उनको वो प्रोवाइड कराए, उसको फुलफिल करे, और खरीदार उन सुविधाओं की उससे मांग भी कर सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो आवश्यकता होने पर आप कानूनी कार्रवाई भी बिल्डर के खिलाफ भी कर सकते हैं।
1: क्या मौखिक वादा अदालत में मान्य होता है?
0: देखिए, अदालत में कोई भी चीज मौखिक नहीं होती है, है ना, सब चीज लिखित, दस्तावेज अधिक मजबूत साक्ष्य होते हैं, इसलिए हर महत्वपूर्ण बात को लिखित रूप में लेना जरूरी होता,
1: मतलब जो लिखित है उसको मतलब ट्रस्ट किया जाता है।
0: कोई देखिए, कोर्ट में कोई भी चीज वर्बली नहीं होती है, हर चीज आपको रिटर्न में ही अगर होगी तो अदालत उसी पे संज्ञान लेती
1: है। बिल्कुल श्रोताओं, तो देखिए, मौखिक यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कितना भी ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो मान्यता नहीं।
0: बिल्कुल, अगर कोई आपको ट्रस्ट कहे कि मैं आपको जो है पैसे डबल कर दूंगा, या आपको इतने लाख में इतना प्लॉट दे दूंगा, या बिल्डर की तरफ से कोई आपको प्रलोभन या कोई स्कीम दी जाती है, तो कोई भी अगर उसका प्रोजेक्ट है या कोई भी प्रपोजल है, तो आप सारी चीज उससे रिटर्न में मांगिए, उसकी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं कल को आपको पोजीशन की दिक्कत आती है या रिफंड की दिक्कत आती है, तो कोर्ट कोई भी चीज को वर्बली नहीं मानती है,
1: मतलब रिटर्न में होना चाहिए,
0: हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। बिल्कुल,
1: क्या बात है। खरीदार को कौन कौन से दस्तावेज संभाल कर रखना चाहिए?
0: देखिए, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हम अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट को हमें संभाल के रखना चाहिए, कोई बुकिंग कराते हैं हम किसी प्रोजेक्ट की तो बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, जो भी हमें पेमेंट्स हमने करी है उस पेमेंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर हमने कैश दिया तो कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक के स्टेटमेंट्स होने चाहिए, बिल्डर की तरफ से कोई हमें रिसिप्ट अगर इशू करी गई है तो वो होनी चाहिए, कोई ईमेल हमने करी है या बिल्डर की तरफ से कोई ईमेल हमारे पास आई है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, और आजकल जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो अप्रूव्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट्स भी आप ऐसे जो उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं, कोई किसी समाचार पत्र में या किसी न्यूज़पेपर में कोई अगर उसने प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट दिया उसको भी कॉपी आप संभाल के रख सकते हैं कि क्या प्रपोजल दिया था उसने, तो ये सारे जो पेपर्स हैं जितनी भी रिकॉर्ड्स की चीजें आपको संभाल के रख।
1: अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई बोल रहा हो अगर हम उसकी वीडियो बना के अगर दिखाए तो वो क्या मान्यता की जाएगी?
0: नहीं, बिल्कुल, अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बिल्डर तरफ से या बिल्डर खुद उस चीज को कमिट करके अगर आपको कह रहा है और आपने उसका कोई रिटर्न में या आपने वीडियो कोई साक्ष्य उसका बनाया और कल को वो उसे ब्रीच करता है या हटता है, तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं,
1: तो मान्यता है।
0: बिल्कुल है मान्यता।
1: क्या बिल्डर मनमानी मेंटेनेंस की फीस ले सकता है?
0: देखिए, ऐसा है, बिल्डर अगर अपनी परियोजना को जो है पूरा कर लेता है और जो है उसमें आपके एक एग्रीमेंट में सब चीजें निश्चित उसमें लिखी हुई है कि अगर उसमें कुछ चार्जेस उसमें लिखे हुए हैं कि भाई मेंटेनेंस फीस मैं आपसे इतनी लूंगा, तो अगर एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ है मेंटेनेंस का डिक्लेयर है उसमें, तो वो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता।
1: अगर बिल्डर परियोजना अधूरी छोड़ दे तो खरीदार क्या करे?
0: देखिए, कई बिल्डर्स क्या करते हैं, हमने देखा है कई केसेस भी आते हैं कि बिल्डर ने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट ही बीच में खत्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया या अधूरा बना के छोड़ दिया, तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, जितने भी सभी खरीदार हैं वो मिलकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, और जो भी आपके पास उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो आप ले सकते हैं, आप मिलकर एक कमेटी बना के सोसाइटी की तरफ से एक ये आप अपना क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप उसको बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में सू कर सकते हैं।
1: बहुत से सर डरते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं शिकायत या नहीं कर सकते हैं।
0: नहीं देखिए, आपका पैसा आपको रिकवर करना है तो ये तो आपका राइट है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको तो केस तो या सू तो करना ही पड़ेगा, रिफंड कैसे मिलेगा नहीं तो आपको।
1: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है?
0: देखिए, अगर आप परिस्थिति के अनुसार हाँ है, यदि मामला उपभोक्ता विवाद के दायरे में आता है तो हाँ बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर फोरम में आप केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, बस रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारी जो ये बातचीत है वो जारी रहेगी। बस आपने रेडियो की ट्यूनिंग हमें कनेक्ट करके रखना है, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: तुम मजा
3: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेन देन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया, लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित। गणेश चतुर्थी पर राजधानी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दशम गणपति महामहोत्सव का भव्य उद्घाटन, 2100 शंखों की गूंज से बना ऐतिहासिक रिकॉर्ड। और अरुण जेटली स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी में 1,25,000 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत दिल्ली सरकार के प्रत्येक विभाग सेवा से जुड़े हुए अलग अलग कार्यों पर काम करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर एक विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य परीक्षण शिविर भी आयोजित किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से लगभग 25,000 वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजधानी के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र और विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। वहीं राजधानी में 70 लाख पेड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक वार्ड में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
5: ग्रीन दिल्ली क्लीन दिल्ली के अपने मिशन के तहत पूरी दिल्ली में हमारे एनवायरनमेंट विभाग द्वारा जो 70 लाख पेड़ पौधे लगाने का टारगेट था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हर वार्ड में अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ करके प्लांटेशन करने का भी हमारा इस पखवाड़े में पूरा प्लान बन चुका है।
4: इसके साथ ही मेरे सपनों का भारत विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चित्रकला, भाषण और रील बनाने की प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। दिल्ली के लगभग 5,000 स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इस अभियान के दौरान यमुना सफाई से जुड़े हुए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
3: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने 17 सितंबर को आयोजित होने वाले मेगा रक्तदान शिविर की तैयारियों की समीक्षा की। श्री सिंह ने इस अवसर पर दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टरों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री सिंह ने सभी नागरिकों को रक्तदान अभियान में शामिल होने के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रेरित और जागरूक करने पर बल दिया। इस शिविर में दिल्ली सरकार के 11 अस्पतालों के ब्लड बैंक अपना सहयोग देंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी संबंधित विभाग और एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन, स्क्रीनिंग, रक्त संग्रह, मेडिकल सहायता, सुरक्षा, एम्बुलेंस सेवाएं, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और अन्य जरूरी सुविधाओं के संबंध में सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और दिल्ली वासियों से अपील की कि वे आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान करें और सेवा पखवाड़ा का सार्थक बनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अगले एक वर्ष में राजधानी में 2,000 आधुनिक शौचालय बनाए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली नगर

0: निगम और पर्यटन विभाग 1,000 शौचालयों का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा बनाए जाने वाले 1,000 शौचालयों का पूरा धन मुख्यमंत्री विकास कोष से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के सिंगलपुर गांव स्थित लेबर चौक पर नवनिर्मित आधुनिक शौचालय ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस बीच दिल्ली सरकार ने पहले चरण में 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक बनाने के लिए लगभग 266 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद शेष 500 सार्वजनिक शौचालय ब्लॉक दूसरे चरण में बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने बताया कि 93 शौचालय ब्लॉक्स दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, 90 उत्तर पश्चिम, 72 पश्चिम क्षेत्र, 51 दक्षिण, 49 दक्षिण पूर्व में, 40 नई दिल्ली, 39 मध्य दिल्ली क्षेत्र में बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य को 14 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महापौर प्रवेश वाही ने आज स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा के लिए रोहिणी और प्रशांत विहार क्षेत्रों में निर्माणाधीन कॉम्पैक्टर का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए। श्री वाही ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई, जिसके बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू की गई और निजी कंपनी पर 10,00,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली सचिवालय में सिख समाज सहित अलग अलग समाजों और वर्गों से आए लोगों से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि बैठक के दौरान सभी से उनके क्षेत्र और समाज से जुड़े विषयों पर बातचीत कर उनके सुझावों को जाना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को देश के आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाना और लोगों के लिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों को समझना आसान बनाना है। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि ये पहल लोगों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। इससे वे महत्वपूर्ण फैसलों, उनके प्रभाव और आगे की कार्यवाही को अपनी परिचित भाषा में आसानी से समझ सकेंगे। नगर निगम ने आज हिंदी दिवस और राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले कवियों और साहित्यिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि हिंदी देश की विविधताओं को जोड़ने वाली सशक्त कड़ी है, विरासत को एक व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कार्यक्रम के अंतर्गत कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता से संविधान सभा तक हिंदी भाषा ने भारत की चेतना को स्वर दिया है। दिल्ली मेट्रो को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत का सर्वोच्च राजभाषा सम्मान कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार दिल्ली मेट्रो को लगातार दूसरी बार प्रदान किया गया है। नवी मुंबई में आज आयोजित हिंदी दिवस समारोह और 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ विकास कुमार को ये पुरस्कार दिया गया। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि पर ही अस्थायी रूप से रोक लगा सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण के म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। बैंकों को अचानक ग्राहक की बताई गई प्रोफाइल के लिए अनुपयुक्त या अज्ञात साइबर फ्रॉड नेटवर्क से जुड़े अंतरण की पहचान करने के लिए एआई आधारित लेनदेन की निगरानी प्रणाली का इस्तेमाल करना होगा। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रस्तावित प्रक्रिया में ग्राहकों को किसी लेनदेन का औचित्य साबित करने के लिए 20 कैलेंडर दिवस का समय मिलेगा। इसके लिए उन्हें पहचान का प्रमाण, उसका संदर्भ या ऐसे दस्तावेज देने होंगे जो ये दिखाते हों कि फंड कहां से आया है। इसके बाद बैंकों के पास स्पष्टीकरण और सहायक प्रमाण को देखने के लिए 10 कैलेंडर दिन होंगे। अगर खाता धारक का स्पष्टीकरण ठीक है तो रोक तुरंत हटानी होगी। यदि ग्राहक 20 दिन में जवाब नहीं देता या स्पष्टीकरण से साइबर धोखाधड़ी का संदेह दूर नहीं होता है तो बैंक को एनसीआरपी सीएफआरएमएस पोर्टल के जरिए प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकार पुलिस को सौंपना होगा। संबंधित राशि को हमेशा के लिए फ्रीज नहीं रखा जा सकता, उसके बाद जिम्मेदारी कानून प्रवर्तन एजेंसी की होगी। प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपनी मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन 1033 को प्रौद्योगिकी के उपयोग से उन्नत बनाएगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों को तेजी से और बेहतर सहायता मिल सकेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि उन्नत 1033 हेल्पलाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग और स्मार्ट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: राजधानी के पीतमपुरा स्थित नेताजी सुभाष प्लेस के डीडीए ग्राउंड में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणपति महोत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर आधिकारिक उद्घाटन और बप्पा की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पंडाल में रक्षा मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 2100 श्रद्धालुओं ने एक साथ शंखनाद किया। इस महाशंखनाद के जरिए आयोजन समिति ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया है, जिससे पूरा परिसर गणपति बप्पा के जयकारों और दिव्य ऊर्जा से सरोबार हो उठा। मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा की तर्ज पर सजे इस भव्य महोत्सव को देखने और बप्पा के दर्शन करने के लिए पहले ही दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये महोत्सव 24 सितंबर तक चलेगा। मेट्रो से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी और सुगम विकल्प है, जहां से पंडाल पैदल दूरी पर स्थित है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। तीसरा और अंतिम मुकाबला इसी स्टेडियम में बृहस्पतिवार को होगा।
4: श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त हासिल करने के इरादे से कल मैदान पर उतरेगी। वहीं अफगानिस्तान की टीम भारत के खिलाफ क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। पहले T20 में भारतीय टीम का प्रदर्शन दमदार रहा। बल्लेबाजी में अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 32 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली थी। अभिषेक के आगे अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से बेबस दिखाई दिए थे। वहीं ईशान किशन ने 33 गेंदों में 42 रन का योगदान दिया था। हालांकि संजू सैमसन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे और वो केवल 10 रन बनाकर आउट हुए थे। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम पूरे T20 में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में बरकरार रखती है या फिर टीम मैनेजमेंट वैभव सूर्यवंशी को मौका देती है। प्रादेशिक समाचार के लिए नवीन सक्सेना।
0: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस दौरान सरकार 13,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया। लोगों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की। और अरुण जेटली स्टेडियम में कल भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा 2020 मैच इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
6: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
5: अरे वही अपना 60 रुपया।
6: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
5: तो देख दो तरीके हैं, पहला आधी दाढ़ी करा ले
6: और दूसरा
5: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
6: ये लो यार UPI ने तो बचा लिया।
5: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
8: हर लेन देन अब है आसान।
9: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ

0: नहीं सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz पे, मुझे यानी आनंद को। और आप सभी को सबसे पहले हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है, यूं तो इतिहास के पन्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है 14 सितंबर की तारीख, लेकिन आज जैसे कि आते ही जिक्र किया हिंदी दिवस, अब इस खास मौके पे हम अपने मुरादाबाद के लोकल टैलेंट को अगर ना आपसे रूबरू कराएं तो फिर कैसे चलेगा यार। तो आज की जो ये शाम है ना, ये जो महफिल है वो सज रही है कुछ शानदार आवाजों से, एंड ऑफकोर्स एक आवाज ऐसी जिनको आप जानते हैं और अब बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज वो अपने दूसरी नई आवाज को लेकर आए हैं हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले सर का और उनके साथ जो दूसरे जनाब हैं उनका भी वार्म वेलकम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार।
6: नमस्कार
5: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिएगा सर।
7: नमस्कार साथियों, मैं मनोज बनू, जैसा कि आप जानते ही हैं, आनंद जी जानते हैं,
5: बिल्कुल सब जानते हैं, पूरा मुरादाबाद जानते हैं अब आपको।
7: ये मेरी खुश नसीबी है, आज फिर हाजिर हैं आपके सामने। हिंदी दिवस है,
5: आपको शुभकामनाएं सबसे पहले तो जनाब।
7: उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।
5: जी जी,
7: हालांकि एक अलग बात है कि हिंदुस्तान में हिंदी दिवस एक दिवस मनाना या पखवाड़ा मनाना, तो ऐसी स्थिति में, मगर ये है चूंकि एक जब सरकार ने हमारे लिए ये एक चीज रखी। दरअसल क्या हुआ था कि इस दिन में जो हिंदी के लिए किए गए थे प्रयास, उनका एक फलीभूत आंसर आया था और राजभाषा के रूप में इस तिथि में जो कि 14 आज है, तो उसको सर्व मान्यता मिली थी।
5: अच्छा,
7: हालांकि ये प्रयास है कि अब इसको मातृभाषा होना चाहिए था और राजभाषा तक इसे सीमित नहीं रहना चाहिए था।
5: बिल्कुल बिल्कुल नहीं,
7: लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी जैसा चल रहा है, जो चीजें हैं, सकारात्मक सोच के साथ हम इस हिंदी दिवस को, हिंदी पखवाड़े को मना रहे हैं और FM मुरादाबाद 89.6 MHz पर आनंद जी के साथ, तो
5: तमाम श्रोता भी हमारे साथ शामिल हैं,
7: सभी साथ हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है। और आज हमारे साथ एक बेहद अजीम शख्सियत है जो कविता से, शायरी से ताल्लुक रखते हैं।
5: अरे वाह क्या बात है।
7: और ये इनका नाम जनाब राशिद सैफी साहब हैं, और मैं ये चाहूंगा कि इनका परिचय
5: खुद दे, ज्यादा बेहतर है ना,
7: तो बहुत अच्छा,
5: बहुत अच्छा रहेगा और हमारे मुरादाबाद की जनता को मजा आएगा।
7: जैसा कि साहिल सैफी साहब ने कहा था, एक शेर याद आ रहा है,
5: जरूर इरशाद,
7: बेहतर तो है कि हम ही से करिए हमारी बात, दुनिया बयां करेगी तो होगी बयालत। तो जो राशिद साहब अपने बारे में जानते हैं वो हम जान ही नहीं सकते, इससे बेहतर यही है कि अब वो आपसे मुखातिब हों, आपसे रूबरू हों। तो राशिद साहब,
8: नमस्कार सभी सम्मानित मुरादाबाद वासियों, मैं राशिद मुरादाबादी, वैसे मेरा नाम राशिद सैफी है, लेकिन मैं साहित्य की दुनिया में राशिद मुरादाबादी के नाम से जो है लिखने की कोशिश करता हूं, और मैं एक बहुत ही छोटा सा कलमकार, छोटा सा साहित्यकार अपने आप को मानता हूं। जो भी विचार और भाव मन में आते हैं वो मैं आप सभी लोगों के समक्ष, आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अब से थोड़े पहले दौर में जो शायरी और जो ये सब लेखन होता था वो काफी टिपिकल फारसी और उर्दू की उसमें शब्दों में, वर्डों में होता था, वो भी बहुत अपनी जगह अच्छा था
5: जी।
8: लेकिन आज की जनरेशन जो है, आज की जनरेशन उन टिपिकल वर्ड्स, जो टिपिकल वर्ड्स थे फारसी के, उर्दू के, उनसे कहीं हद तक, बहुत हद तक जो है अनभिज्ञ है, अनजान है।
7: तो किनारा भी कर चुके हैं,
8: और कहीं ना कहीं हम लोगों की भी ये असफलता है, नाकामयाबी है कि हम उनको वो ज्ञान नहीं दे पाए उस भाषा का, और उर्दू का या फारसी का। तो कहीं ना कहीं आज जो हम लोग आम बोलचाल में हम बात करते हैं, हिंदी और उर्दू उसमें सब मिक्स होते हैं, मतलब एक हिंदी ही है हम उसको बोलते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है, ये कोशिश रहती है कि कहीं ना कहीं जो जो हिंदी, उर्दू और फारसी के जो टिपिकल वर्ड्स थे वो आज की जनरेशन के सर के ऊपर से गुजर जाते, तो उन वर्ड्स को आज की आम भाषा में, आज के आम शब्दों में ढालकर शायरी लिखने का मेरा प्रयास और कोशिश रहती है। तो तभी वो आज की जनरेशन उसको समझ पाती है, उसका मोटिव समझ पाती है, उसका मतलब, उसका आंसर, अर्थ समझ पाती है।
7: बिल्कुल सही
8: तो
7: बात।
8: मेरी ये कोशिश हमेशा, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आनंद सर के साथ में यहाँ FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं यहाँ पर आने का मुझे मौका मिला है। हमारे सहयोगी मनोज मनु जी जो है वो उन्होंने मुझे इस सौभाग्य को दिया है, अवसर दिया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आनंद जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं मुरादाबाद वासियों तक अपनी बात को रख सकूं।
5: बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपका जितना प्यारा नाम है उतनी प्यारी आपकी बातें भी हैं, और इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जब दो सेम प्रोफेशन के लोग मिलते हैं तो मजा आता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो जाता है। तो आज मनु जी आप अकेले नहीं है हमारे साथ, आज राशिद जी को भी आप ले आए हैं। तो हिंदी दिवस की बात चाहिए है ना, इतना बढ़िया माहौल है, तो इस मौके पर एक छोटा सा म्यूजिकल गीत तो होना चाहिए, प्रोग्राम को थोड़ा और स्पेशल बना देगा। तो श्रोताओं आपको एक बार फिर से, हमारे सभी श्रोताओं को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज गणेश चतुर्थी भी है तो आप सभी को गणपति बाप्पा मोरया, हैप्पी गणेश चतुर्थी हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को
7: शुभकामनाएं,
5: हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलिए अब बात गणपति जी की हुई है, हिंदी दिवस है, तो इस खास मौके पे एक प्यारा सा गीत हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पे। थोड़ी सी देर में वापस लौटेंगे मनु जी और राशिद जी के साथ, आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत और इस गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। आज हमारे स्टूडियो में राशिद भाई हैं, मनु जी हैं। हिंदी दिवस का मौका है, इस खास मौके पे हमने इनको क्यों आमंत्रित किया? ऑफ कोर्स आज इतना अच्छा मौका है और कविता शेर व शायरी तो हमेशा बनी रहती है हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम के जरिए, लेकिन आज हिंदी दिवस के मौके पे कोई अच्छी सी कविता जो इस हिंदी दिवस को और स्पेशल बना दे और जो आजकल की जेन जी जनरेशन है उनको कुछ नया एक मैसेज भी मिले। राशिद जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, कोई बढ़िया सी अगर आपके पास कविता हो, पोइट्री हो, जो आप सुनाना चाहें आज के इस ओकेजन पे।
1: जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह ही मैंने ये एक कविता हिंदी के ऊपर लिखी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, मतलब ताज़ा फ्रेश कंटेंट।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बढ़िया।
1: इसमें मैंने कोशिश की है कि हिंदी के ही शब्द ज्यादातर मैं यूज करूँ।
2: वाह वाह, स्वागत है भैया, स्वागत है।
0: क्या बात,
1: तो पेश करता हूँ
0: इरशाद भाई।
1: हमारी चेतना की पावन आस है हिंदी।
0: क्या बात है,
1: हमारी चेतना की पावन आस है हिंदी, बसी है करोड़ों दिलों की सांस है हिंदी।
0: अरे वाह,
1: बसी है करोड़ों दिलों की सांस है हिंदी, और विदेशी भाषाएं होंगी अपनी जगह पर।
0: क्या बात है,
1: विदेशी भाषाएं होंगी अपनी जगह पर, भारत की आत्मा का निवास है हिंदी।
2: क्या बात है,
1: भारत की आत्मा का निवास है हिंदी, और शब्दों के नीर से बुझाती साहित्य की प्यास। शब्दों के नीर से बुझाती साहित्य की प्यास, अमृत घोले मन में ऐसा एहसास है हिंदी। अमृत घोले मन में ऐसा एहसास है हिंदी। सियासत ने तो खींच दी है सरहदे मन में, सियासत ने तो
2: बेशक
1: खींच दी है सरहदे मन में, सबको जोड़े जो मगर ऐसा विश्वास है हिंदी।
0: क्या बात है,
1: सबको जोड़े जो मगर ऐसा विश्वास है हिंदी। और अगला है कि सदियों से रही सनातन की यही परंपरा।
0: क्या बात है,
1: सदियों से रही सनातन की यही परंपरा, हमारी संस्कृति हमारा इतिहास है हिंदी।
0: क्या बात,
1: हमारी संस्कृति
0: हमारा इतिहास है हिंदी। क्या बात है,
2: आपने उपयोग किया, वाह वाह वाह।
0: और मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ इनकी जोरदार ढेर सारी तालियां हैं, इतना अच्छा आपने माहौल बना दिया है।
1: बहुत शुक्रिया,
0: तो मैं सिर्फ आपके लिए तालियां ही बजा सकता हूँ भाईजान, इतना अच्छा माहौल आपने बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मनु जी, आप बहुत कमाल के शख्स को लेकर आए हैं, मतलब मजा आ गया, आपने इतने टैलेंटेड बंदे से रूबरू कराया, आपके लिए तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ अर्ज चाहेंगे साहब?
2: हाँ क्यों नहीं, दरअसल जैसा कि हिंदी दिवस की कंडीशन है तो हिंदी दिवस
0: अच्छा हिंदी दिवस को आपने मुझे आती बताया एक पखवाड़ा।
2: जी हिंदी पखवाड़ा
0: जो आपने बताया, तो मुझे ये नहीं पता था, मुझे तो बस मैंने आज चेक किया, अच्छा 14 सितंबर को हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं, तो इसकी शुरुआत जैसे आपने बताया ये मतलब कितने टाइम पहले शुरू हो जाता है ये पखवाड़ा?
2: ऐसा होता है कि ये 7 सितंबर से
0: अच्छा
2: लेकर के
0: 14
2: दिन तक, यानी कि जो बीच के दोनों सप्ताह हैं वो हिंदी पखवाड़े के रूप में डेडिकेटेड होते हैं, और जितने भी ऑफिस होते हैं उसमें इसे एक पर्व के तरह मनाया जाता है। और ऐसा क्यों हुआ और कब से मनाया गया, ये 1949 से इसकी शुरुआत हुई जब राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थान मिला।
0: जी जी,
2: तो उसी के खुशी में, उसी की प्रसन्नता में इसको सेलिब्रेशन किया जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है
2: ना। हालांकि जैसे राशिद भाई ने कितनी अच्छी ये जो शब्दावली इनकी थी, तो मैं एक बात बताता चलूं, ये जो वास्तव में हिंदी है, जैसे इन्होंने कहा कि हाँ विदेशों की भाषाएं हैं अपने अपने आप में अलग होंगी, तो जो हिंदी शब्द है इसकी व्युत्पत्ति भी फारसी भाषा से हुई थी राशिद भाई, है ना। और ये कितने खुशी की बात है कि आप एक उर्दू दां होते हुए हिंदी को इतनी तरजीह दे रहे हैं, और इतनी अच्छी शब्दावली में आपने ये शब्दों को प्रयोग करते हुए इतना बढ़िया ये सुनाया है कि वास्तव में इसकी सार्थकता हो गई है।
1: जी जी, कोशिश यही थी मेरी कि मैं जिस भाषा में भी मैं लिखूं उस भाषा के शब्दों के साथ न्याय होना चाहिए, ये मेरी सोच है।
0: क्या बात,
2: नहीं बिल्कुल,
0: बहुत खूबसूरत, और वो बिल्कुल आपने न्याय सुनाकर कर दिया है, और हम भी बहुत ज्यादा खुशनसीब है कि आज हमने आपसे सुनी ये बहुत खूबसूरत जो आपने चार पंक्तियां लिखी भी आप ही ने आई।
1: जी जी बिल्कुल,
0: क्या बात है, ऑर्गेनाइजर भी यही है।
2: सही याद है, जब ये कवि हैं तो कवि हमेशा अपनी ही कविता सुनाता है, और अगर उसे किसी व्यक्तित्व की किसी व्यक्ति की अलग से कोई रचना, कोई लाइन या कोई शेर अगर पसंद आता है जो कि एक मौके के ऊपर आना होता है, जैसे मौका महल पर बोलते हैं, तो उसमें उन शायर का नाम लेना
0: जिक्र होता है,
2: जरूरी हो जाता है, ताकि ये एक पता चल सके कि हाँ भाई ये जो शेर है या जो ये कहा गया है ये उन विशेष व्यक्तित्व के द्वारा कहा गया उनका है, और बाकी जो कहा जाता है वो अपना खाकसार का होता है।
0: तो मैं आपको भी डायरी देख रहा हूँ खुली हुई है, आप क्या सुनाने वाले हो?
2: तो मैं दो दोहे रखता हूँ,
0: पहले दोहे सुन लेते हैं साहब।
2: जी जी जी, इसी हिंदी के जो हम ये त्योहार मना रहे हैं,
0: हिंदी दिवस का एक पर्व ही हो गया हमारे लिए, तो सर
2: जी बिल्कुल सही बात है, पर्व की तरह ही मनाते हैं हम
0: जी।
2: तो हिंदी के उत्थान की बात करती है ये रचना। हिंदी यदि पाती रहे जनमन में आकार, निज भाषा उत्थान के हों सपने साकार, और लाए निज व्यवहार में हिंदी का उपयोग, लाए निज व्यवहार में हिंदी का उपयोग, संप्रेषण जिसका खरा समझ सके सब लोग।
1: बहुत
0: क्या बात।
2: और एक ये दोहा जो मेरे दिल के बहुत करीब, माँ जिस बोली में गढ़े लोरी प्यार दुलार, राशिद भाई
1: जी जी,
2: माँ जिस बोली में गढ़े लोरी प्यार दुलार, भाषा वही स्वदेश की इसमें कैसी रार,
1: इसमें कैसी रार, बहुत
0: क्या
2: भाषा वही स्वदेश की इसमें कैसी रार। और बहुत वसी है इसका एरिया, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, ये विश्व पटल तक जाती पहुंचती है। जैसा कि मैं बताऊं कि ये हमारी जो हिंदी भाषा है
0: जी,
2: ये पांचवी सबसे बड़ी भाषा है जो बोली जाती है विश्व में। तो देखें दो लाइनें
0: जी,
2: विश्व पटल पर हैं सभी, विश्व पटल पर हैं सभी, हम बस हिंदी जात, इसीलिए सब कीजिए बस हिंदी की बात,
1: हिंदी की बात,
2: और सीखी हर भाषा तभी जब हिंदी थी ज्ञात, भूले से मत भूलना हिंदी की सौगात,
1: हिंदी की सौगात। बहुत क्या
0: बात है, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने जो है इस कार्यक्रम को खूबसूरत बना दिया है। बातें जो है ये लगातार चलती रहेंगी, काम करते हैं प्रोग्राम को और थोड़ा सा बेहतरीन बनाने के लिए। एक छोटा सा नगमा पेश करता हूँ मैं अपनी ओर से आप सभी के लिए श्रोताओं, और लौट कर आते हैं, और अभी फिलहाल इनको जाने नहीं देंगे, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें सुनेंगे। अब बात हिंदी दिवस की चली रही है तो थोड़ा सा टाइम और लेंगे सर का, क्योंकि बहुत बिजी पर्सनालिटी है ये, बड़ी मुश्किल से इनको जो है हम बुलाते हैं, ये बहुत मुश्किल से अपना टाइम दे पाते हैं, तो आज इस टाइम का पूरा इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं। तो आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ आपको पसंद आ रही है इनकी परफॉर्मेंस,
3: अरे

0: भाई बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करके, एंड मुझे उम्मीद है आपको भी जरूर आनंद आ रहा होगा इस प्रोग्राम में। और बाकी हिंदी दिवस के मौके पर तमाम सारी बातें हो रही है, एंड कविता बहुत सारी पोएम्स ऑफ कोर्स हिंदी के हम पढ़ते हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं और हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। हिंदी में तो आप जो भी बोलो ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है वो हमारे दिल के बहुत करीब है। हिंदी भाषा से हमें इतना प्यार है, शुरू से ही हम हिंदी को सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज भी हम हिंदी में जब हम बात करते हैं तो वो भी एक शुद्ध हिंदी है। बट कभी पता नहीं क्यों मनु भाई, राशिद भाई, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि जब हम किसी से संवाद करते हैं, हम दिल्ली जाए, मुंबई जाए, तो लोगों को लगता है कि अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम ज्यादा एडवांस दिखेंगे, हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और ऐसा है भी, एक्चुअली मैंने देखा भी, अगर आप, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, तो क्या ये चीज सच है और यह क्या लोगों को करना चाहिए भारत में रहते हैं जबकि विदेशी लोग हमें इतना पसंद करते हैं, हमारे कल्चर को, हमारे रिचुअल्स को?
1: जाहिर सी बात है, बात क्या है कि इसके पीछे हमें बहुत थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जब अंग्रेजी शासन के गुलाम थे हम लोग, तब उनका जो एक पूरा आवरण था, उन्होंने इस प्रकार का तैयार किया कि जो इंग्लिश बोलता है, जो इंग्लिश मेथड से कपड़े पहनता है,
0: जी जी,
1: तो वो ही एप्रिसिएशन में आए और वो अच्छा इंटेलिजेंट लगे जैसे, तो और किताबों तक में उन चीजों को बताया गया है, जैसे जे फॉर जेंटलमैन, उसे कोट के साथ, टाई के साथ, इसके साथ दिखाते थे, और एक किसान को धोती कुर्ते के साथ दिखाया जाता था, क्योंकि ये एक मानसिकता बने कि जो अंग्रेजी भाषा है वो ज्यादा प्रीशियस है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से राष्ट्र ऐसे हैं जो केवल और केवल अपनी भाषा में बात करना पसंद करते हैं, या फिर सामने वाला जो उससे कन्वर्सेशन कर रहा है, जो बात कर रहा है, उसकी भाषा में अगर वो इजी है तो उसकी भाषा में बात करते हैं।
0: ओके,
1: मीडियम बनाने के लिए इंग्लिश को उसे नहीं रखते, तब जबकि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसे स्वीकार ज्यादातर किया जा चुका है, लेकिन अभी भी ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा नहीं है। लेकिन चूंकि हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन बहुत समय तक रहा, तो उसका कुप्रभाव ये पड़ा कि जो हमारी मातृभाषा थी
0: जी,
1: उस पर उसका इन्फ्लुएंस आने लगा।
0: ओके,
1: ऐसी कंडीशन में अब देखिए आपके जो महत्व है वो इसका कितना महत्वपूर्ण है, और जैसे आप बता रहे थे कि विदेशों में बहुत इसे अप्रिशिएट किया जाता, तो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें जो डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है
0: जी जी,
1: उसके 10वें संस्करण में लगभग 30 से 35 शब्द जो भारतीय हिंदी से भी और उससे जोड़े गए, जिसे हम भारतीय अंग्रेजी बोलते हैं, वो शब्दों को उसमें शामिल किया गया है
0: जी।
1: तो ऐसा नहीं है, ये अपना बहुत अच्छा, बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार ऐसा एक राज्य रहा जिसने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। जी हाँ, जी हाँ। तो खैर कभी कभी बात आती है मन में कि पखवाड़े भर के लिए हिंदी पे जज्बात, पखवाड़े भर के लिए हिंदी पे जज्बात, जब वोटों पर आप बने तब बनती है बात।
0: क्या बात है,
1: और हिंदी के हित के लिए पखवाड़ा पर्याप्त, हिंदी के हित के लिए पखवाड़ा पर्याप्त, फिर दिन 350 घुट अंधियारा व्याप्त। लेकिन हमें ये सोचना नहीं है, हम ये महसूस करते हैं कि जो पर्व होता है वो किसी विशेष दिवस, विशेष उत्थान के लिए बनाया जाता है, तो ये हम पखवाड़ा बड़े जोश खरोश के साथ, सकारात्मक तरीके से, और ये महसूस करते हुए कि हिंदी का वर्चस्व अपना बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। कारण ये नहीं है अन्य भाषाओं को छोटा दिखाना नहीं है, हिंदी ने बहुत शब्दों को आत्मसात किया है और बड़े प्यार से, बड़े तरीके से, बड़े सलीके से चलती है। और मैं अपने जाति, अपना जो है स्वयं अनुभव जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे एक उर्दू और हिंदी के बीच में इसे डिवाइडेशन किया गया है, मगर वास्तव में हिंदी और उर्दू दोनों एक से ही चीज है,
2: बिल्कुल,
1: जिनको एक सामान्य रूप से, सामान्य बोलचाल के लिए इस तरह से तैयार किया गया है कि हम गैर हिंदी भाषी के साथ भी उतना ही कन्वीनियंट, उतना ही सरल उसको समझ सकें जैसे कि हम अपने हिंदी भाषी के साथ समझते हैं। राशिद भाई, मैं सोचता हूँ कि ये बात गलत नहीं है, बहुत सारे शब्द लिए हैं।
2: बिल्कुल सही है आपकी बात। मैं इस संबंध में आनंद भाई कहना चाहूंगा
0: जी जी राशिद भाई,
2: जैसे कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जब उनको हम पढ़ाने के लिए स्कूल में डालते हैं या घर से पहले से ही शिक्षा हम देनी शुरू करते हैं
0: जी,
2: तो सबसे पहले हम उसको ABCD 1 2 3 ये सिखाते हैं
0: राइट,
2: ठीक है। और इसी ट्रैक पर आगे चलते हुए वो बच्चे, आज के बच्चे जो हैं, वो 19 29 39 49 79
1: बिल्कुल सही,
2: ये सारी संख्याएं नहीं जानते।
0: सच बात,
2: ये बड़ी बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य है हमारा।
0: मैं इसमें चीज यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूंगा, कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, हम घड़ी में टाइम बताते हैं तो जैसे कभी 9:39 बताना हो तो वो नहीं एकदम दिमाग में क्लिक करता है, वो 9:49 एकदम आता है।
2: वो ठीक है, वो अपनी जगह है कि हम दूसरी भाषा को भी आत्मसात करें, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है,
0: मातृभाषा है,
2: 1-2-3 के साथ में हम छोटा बड़ा भी तो सिखाएं,
0: बिल्कुल
2: काका गावी तो सिखाएं।
0: सही बात है।
2: तो हम जो हिंदी जो इंग्लिश की जो काउंटिंग है ये 1-2-3, तो अगर हम 29, 39, 49 बता रहे हैं तो हम उसको 29, 39, 49 ये भी तो हम बताएं कि हिंदी में बेटा इसको ये भी कहते हैं,
0: ये भी कहते हैं,
2: तभी तो हमारा बच्चा जो है ये समझेगा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है।
0: एग्जैक्टली।
2: तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग इंग्लिश जरूरी है हमें बाहर काम करने के लिए भी या बाहर जाने के लिए भी, लेकिन हमारी मातृभाषा हमारा प्रथम है हमारे।

0: जो वर्ड्स हैं, हिंदी के जो शब्द हैं, उनसे भी बच्चों को अवगत कराना पड़ेगा।
1: एग्जैक्टली, हमारी हिंदी में इतने वर्ड्स हैं जो शायद अगर हम निकालने बैठे तो हमारा समय कम पड़ जाएगा। अनलिमिटेड शब्द
2: समय की नहीं है, बात समय की नहीं है, बात ये है आनंद,
0: बात अपनी पहचान की,
2: पहचान की भी बात है। दूसरी चीज ये है कि जो साइंटिफिक है, आप संस्कृत का देख लीजिए, हिंदी का देख लीजिए, जो वचनी है, जो शब्दावली है, जो हमारी खड़ी बोली का उसका सिस्टम है, उसकी मात्रा है, वो इतनी क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से है कि आप जब उनको डिफाइन करते हैं तो उसका अपना ही एक अलग इतिहास है,
1: सच में,
2: है ना। हालांकि मैं इस मामले में कहना चाहूंगा और बात पहुंचनी भी चाहिए कि जो हिंदी वर्तनी में संख्याएं लिखी जाती थी, एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, वो मतलब वो तो हाथी के पैर में सबका पैर, तो जो सरकार के अपने निर्णय होंगे उसको देखना होता है सबका। लेकिन बात ये है कि हाँ, हम दूसरे को आत्मसात करें ये अच्छी बात है, लेकिन हमारा अपना अस्तित्व उसके संकट में ना आए, क्यों?
1: मैं भी अग्री करता हूँ, सहमत हूँ।
0: सरकार
2: सेकेंडरी नहीं बताएंगे तब तक हम मॉडर्नाइजेशन में, इंग्लिश मीडियम में अपने आप को जो है उस तरीके से रख नहीं पाएंगे, सेट नहीं कर पाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं मंशा रही है।
0: ये विडम्बना ही है,
2: बिल्कुल विडम्बना है।
0: देखिए पूरे विश्व में 175 देशों में उनकी जो मातृभाषा है वो उनकी प्राथमिकता है, यानी फर्स्ट उनकी लैंग्वेज जो है मातृभाषा है, और हमारे यहाँ हमारी मातृभाषा जो है वो सेकेंडरी है, तो ये एक विडंबना ही कही जा सकती है हमारे देश के लिए।
2: लेकिन हम उम्मीद करें
0: जी
2: कि ये राजभाषा के साथ साथ मातृभाषा भी बने, यही प्रयास भी है,
0: उम्मीद भी कर रहे हैं मनोज जी हम और आप, और हम कोशिश भी कर रहे हैं इसमें, हम अपने शब्दों के माध्यम से, हम अपनी कविताओं के माध्यम से, हम ये कोशिश कर रहे हैं, इस प्रयास में है कि हमारे देश के अंदर जो हमारी मातृभाषा हिंदी है उसको ही प्राथमिकता दी जाए।
1: बहुत बढ़िया, आप जैसे लोग हैं जो ये कवि सम्मेलन और इतने बड़े बड़े चीजों में आप लोग पार्ट करते हैं, और ये जो ऑर्गेनाइज होती है ना, इससे कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन को पता चलता है कि हाँ, आज भी कुछ चीजों को इम्पोर्टेंट दी जाती है, और बहुत जरूरी है। तरह तरह की चीजें जो होती है, काव्य पाठ होते हैं, बहुत सारी कविताएं होती है, बहुत सारे सेशंस लगाए जाते हैं ना, तो ये बहुत जरूरी है।
0: देखिए आनंद जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी आपके ये बैनर पर लगी, FM मुरादाबाद के ऊपर आपने लिखा है रेडियो बजाते रहो गुनगुनाते रहो। ये जो स्लोगन हिंदी का आपने ऊपर रखा है, मेरा दिल देखकर इसको बार-बार हो गया, खुश हो गया।
2: देता है
1: नहीं, बहुत जरूरी है ना। देखिए सर, हम जो है हम हिंदी में रेडियो चला रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमारी चीजों में वो झलकना भी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: है ना। एडवांस दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी चीजों को मत भूलो।
0: हाँ बिल्कुल, अपनी पहचान न भूलें।
2: हम अपनी जड़ों से कट गए तो कहाँ के रहेंगे
0: जी।
1: सही बात है। अच्छा, चलते चलते बहुत सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं, आज हिंदी दिवस का मौका, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। तमाम सारे श्रोता साथी आपको सुन रहे हैं, कुछ गांव में सुन रहे हैं, कुछ घरों में सुन रहे हैं, कुछ अपनी दुकानों में सुन रहे हैं, और कुछ चलते फिरते अपने कानों में ईयरबड्स लगा के भी सुन रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप क्या संदेश दोगे जाते जाते राशिद भाई, मैं पहले अगर आपसे पूछूं।
0: देखिए मेरे शहर के सम्मानित सभी मेरे शहरवासियों से मेरा जो है निवेदन है
1: जी,
0: कि हिंदी जो भाषा है उस भाषा को, उसकी पहचान को हम ना भूलें, हम अपने बच्चों में हिंदी के प्रति जागरूकता जगाएं, क्योंकि हिंदी एक बहुत ही आसान जो है भाषा है, बहुत प्रेम वाली भाषा है, तो इसका, इससे हम अपने बच्चों को अनभिज्ञ ना रहने दें, क्योंकि ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारा इतिहास है, तो ये हम अपने बच्चों को जरूर हिंदी से अवगत कराएं। हिंदी आज जो है बच्चों के से अगर हिंदी के कुछ शब्द बोलो तो वो समझ नहीं पाते, हिंदी के कुछ शब्द जो है अगर बोलो उनसे तो समझ नहीं पाते, और संस्कृत में तो बच्चे भी पीछे हो जाते हैं। हालांकि सरकार ने अब एक और पहल की है कि पहले 8 क्लास तक जो है संस्कृत थी, अब वो 9 क्लास में भी संस्कृत को ले आए हैं, सरकार ले आई है, तो अच्छी बात है। लेकिन संस्कृत के साथ साथ हिंदी को भी महत्व जो है, बल्कि मैं सरकार को जो करना है वो तो करेगी, लेकिन हम जो आम जनमानस है हमें भी जो है अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, हिंदी से भी अपने बच्चों को रूबरू कराना पड़ेगा कि हम हिंदी वासी हैं, हम हिंद के निवासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं।
2: सही बात है,
0: तो हमको हिंदी जो है।
2: अच्छा, एक बात मैं महसूस करता हूँ राशिद भाई, कि कई बार लोग ये समझ बैठते हैं कि हिंदी और उर्दू ये अपने आप में अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो ओरिजिन हिंदी का भारत में हुआ है वही उर्दू का भी ओरिजिन भारत में ही हुआ है।
0: बिल्कुल, मैं यही,
2: और इसलिए इन दोनों में कोई अलग वो नहीं है। हालांकि
0: हिंदी की वकालत इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू एक ही है,
2: एक ही है।
0: हिंदी के अंदर भी बहुत सारे हम रोजमर्रा की बातचीत में उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं,
2: बिल्कुल,
0: तो हिंदी ही तो हमारी भाषा हुई।
2: नहीं, बिल्कुल सही,
0: हमारी भाषा हिंदी।

0: तो वही हम वो टिपिकल उर्दू के शब्दों में नहीं बोल बोल रहे, हम तो आम जो भाषा है उसमें बोल रहे हैं, उसी में उर्दू के शब्द भी समाहित हैं और हिंदी के शब्द भी समाहित हैं।
1: भाई मैं जहां तक महसूस करता हूँ वो ये चीज है कि जैसे विदेशी आए
0: जी,
1: ठीक है, जिनका बेस फारसी अरबी और ये रहा
0: जी,
1: तो उनका जो उर्दू, जैसे उर्दू आपने जुबान कही
0: जी,
1: ये उर्दू तो शाब्दिक अर्थ इसका लश्कर होता है,
0: बिल्कुल
1: है ना, जबकि भाषा हमारी हिंदी है, चूंकि वो हिंदी जो शब्द मिला है ये भी हमें उधर से ही मिला है,
0: से ही मिला है,
1: हमारे राष्ट्र का नाम तो भारतवर्ष
0: रहा जी, जी, जी,
1: तो ऐसी कंडीशन में ये जो उर्दू है ये लश्करी जुबान का मतलब ये हुआ कि इसने सारी जुबानों को आत्मसात किया
0: जी,
1: और जो उसका बेस रहा, जो प्रारंभिक बेस था उर्दू का, वो फारसी अरबी तुर्की इस तरीके का उसके लफ्ज रहे, और जहां तक हिंदी का जो कि यहीं से ओरिजिन माना गया, तो इसका संस्कृत पाली देवनागरी इस तरीके की भाषाओं में से लिया गया, मगर अब वो समय है जब सब मिलकर रहते हैं, तो वो दोनों चीजें जो उर्दू है वो फारसी अरबी और तुर्की वाली उर्दू नहीं रही
0: जी, जी।
1: और जो ये हिंदी है वो मतलब निष्ठ संस्कृत वाली या पाली वाली
0: वो नहीं रही,
1: हिंदी नहीं रही, और ये दोनों आपस में एक हो चुकी है,
0: एक हो चुकी
1: है, हमें ये मान के चलना चाहिए और इसके उत्थान में हमें अग्रसर होना चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके।
0: मेरा ये मानना है कि उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं है, अलग अलग नहीं है दोनों भाषा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: एक ही भाषा है।
2: बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छी लंबी चौड़ी डिबेट थी, मैं तो मजे ले रहा था बस बैठ के, आपस में लगे हुए थे दोनों राशिद भाई और मनोज भाई, मैं बस सुन रहा था और सीख रहा था, और बहुत सारी चीजें आपको भी श्रोताओं जानने को मिलेगी, और ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बहुत ही सही और सरल चीजें हैं जो अफकोर्स मुझे भी लग रहा है कि रेडियो के माध्यम से आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी सोच में सही चीजें नहीं आएंगी तब तक बदलाव नहीं
1: होगा, बिल्कुल तो सोचने के लिए भी एक जरिया होता है
2: बिल्कुल
0: सोचेगा तो तभी इंसान जब उस तक बात पहुंचेगी,
2: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा जो मकसद है बातों को रखने का वो बहुत पॉजिटिव और सरल और सकारात्मकता की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, बेसिकली चाहे वो राशिद भाई के अल्फाज हो या फिर मनोज भाई के या फिर मेरे, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि कुल मिला के आज हिंदी दिवस के मौके पे हम सिर्फ हिंदी को महत्व दें, और सिर्फ आज ही ना, हमेशा अपने शब्दों में हिंदी का इस्तेमाल करते रहें, हिंदी हमारा गर्व है, हमारा प्राउड है, तो हम इससे माना नहीं है, जहां मौका मिले वहां चौड़े में हिंदी में बोलो भाई हम हिंदुस्तानी हैं, क्यों जी,
1: बिल्कुल सही बात है, अंग्रेज ताकि अंग्रेज पूछे डिक्शनरी खोल के कि हिंदी का ये मीनिंग क्या होता है,
2: यू आर इंजन। चलिए गाइस फिलहाल रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, एक अच्छे से गीत के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत धन्यवाद राशिद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनु जी, आप लोग आए बहुत अच्छा लगा, और हम चाहेंगे आप आगे भी ऐसी तशरीफ लाते रहे। सर आप पहली बार हमारे स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा राशिद जी?
0: देखिए
2: मनु जी तो घर के आदमी है हमारे, आपसे पूछना चाहूंगा।
1: सही,
0: देखिए मैं यहाँ आकर बहुत ही मतलब ऐसा फील कर रहा हूँ कि ये जो माध्यम है आपका FM मुरादाबाद,
2: हाँ जी हाँ जी,
0: इसके जरिए बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं,
2: एब्सोल्युटली
0: बहुत सारी क्रिएटिविटी हम कर सकते हैं,
2: जरूर
0: लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं,
2: रेडियो का मकसद ही यही है, रेडियो आज भी जिंदा क्यों है, क्योंकि वो सही और राइट चीजें करता है,
0: बिल्कुल
2: है ना, आज भी लोगों को पसंद है
0: जी जी, बहुत सारे समाज में हमारे जो चीजें हैं उनके
2: करने में हम हेल्प कर सकते हैं,
0: बिल्कुल बहुत सारी हम वो कर सकते हैं, तो मैं सलाम करता हूँ आपको, आपके अल्फाजों को।
2: अरे सर हम भी आपको सलाम करते हैं, और आप यहाँ आए, इतने कीमती वक्त आपने दिया, इतने अच्छे अल्फाज आपने रखे, और आप जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि अच्छे कहते हैं ना स्पीकर बनने से पहले लिसनर बनना जरूरी है,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
2: है ना, तो वो हम लिसनर बन के आपको सुन रहे थे आज, बहुत मजा आया, और मैं चाहूंगा आप दोबारा भी जरूर आए हमसे मुखातिब होने, तो बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी, और बहुत बहुत थैंक यू मनु भाई, और गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें ऑफिशियली फॉलो कर सकते हैं इंस्टा हैंडल पे FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से ऑफिशियल आईडी है, अगर मुझे देखना चाहते हैं ढूंढना चाहते हैं तो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिल रहा हूँ आपको, सोशल मीडिया पे आप ढूंढ सकते हैं, अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, कुछ अच्छे गानों के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, और वंस अगेन आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, नमस्कार।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता
1: वैश्विक नेता
0: मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमेरिकी विश्लेषक ने कहा, दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
5: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
4: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
5: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
4: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
6: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा है। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि यह घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की सहअध्यक्षता करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में 2 दिन के हिंदी दिवस और 6ठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
9: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
4: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
10: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
4: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में पांचवें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
11: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
4: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
12: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाग जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखो स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
13: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक

0: की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्योहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बाप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग साराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसबी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बेस्ट ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।

0: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार आज तो मेरे साथ बड़ा अजीबोगरीब किस्सा हुआ भाई। मोबाइल लगा दिया चार्जिंग पे, 2 घंटे लगा के सो गया और जब उठा सोचा 100% हो गया होगा, देखा तो एक भी नहीं था क्योंकि स्विच ऑन करना भूल गया था। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? ऑफ कोर्स यार, जरूर हुआ होगा। हेलो हाय, कैसे हालचाल, गुड इवनिंग, बंदे के नाम आनंद है। आपके साथ भी ये चीज होती रहती होगी। लेकिन अभी मुद्दे की बात पे आते हैं। आज की शाम आपको ढेर सारी बातें बताने और कुछ नई नई जानकारियां लेकर मैं अकेला नहीं हूँ, स्टूडियो में मैं आ ही गया हूँ, लेकिन मेरे साथ अखिल भाई भी आए हैं। हेलो भैया, कैसे हो?
2: मैं बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो आनंद?
0: मैं बहुत ही हैंडसम हूँ यार, आजकल फाउंडेशन थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है मेरा।
2: अच्छा, एक बात बताओ, तुम अपने साथ ये छाता क्यों लेके आए हो?
0: यार छाता इसलिए लेकर आया था क्योंकि बाहर मौसम गड़बड़ आ रहा था।
2: मौसम गड़बड़ आ रहा था या सिर्फ आंधी तूफान चल रहे थे?
0: यार आंधी तूफान तो ही चल रहे हैं, ये तो मुरादाबाद की जनता भी जानती है। लेकिन हाँ, एक बात फैक्ट है कि आंधी तूफान अभी हम दोनों चलाने वाले हैं। तो अभी जो है हम आपके साथ कब तक रहेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता है, जब तक ये घड़ी की सुइयां हमें बाहर ना निकाल दें इशारे कर करके, तब तक। तो आज की शाम हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो आप चिपक के बैठिए हमारे साथ। तो अखिल भाई और आनंद आपके साथ हैं।
2: चिपक के बैठने का मतलब ये है भाई साहब, थोड़ी सी थोड़ी दूरी तो बना के रखनी
0: पड़ेगी। चिपक के आपको नहीं कह रहा, मैं रेडियो वालों को कह रहा हूँ कि आप अपने रेडियो सेट पे चिपके रहो, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो अपना कान रेडियो पे और ध्यान सड़क पे, दोनों को जो है लगा के रखना।
2: और सड़क पे भी ना, गड्ढे पे ज्यादा ध्यान देना भाई साहब, गड्ढा कहाँ है
0: यार। वो वाटर लॉगिंग की वजह से हो रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा पानी हो जाता है अपने मुरादाबाद में, सच बता रहा हूँ मैं। चलो फिलहाल बातें ये जो है वो चलती रहेंगी। ऑफकोर्स हम आए हैं तो कुछ पहले गाने बजाते हैं फिर लौट के आते हैं। सो आप कहीं मत जाओ, कुछ कहना चाह रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ जाओ। मैं आपको मिलता हूँ रेडियो वाला आनंद के नाम से, अखिल भाई आपको मिलते हैं FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से।
2: अखिल आनंद के नाम से भी मिलते हैं।
0: अच्छा, इनका अपना भी है।
2: ये नहीं चाहता कि दूसरे बंदे का भी भाई बोल दो।
0: देखो अगर आपने आनंद को फॉलो किया तो वहाँ कुछ ऐसी रील्स मिलेंगी जिनमें इनका भी इंस्टाग्राम दिख जाएगा।
2: फॉलो कर लेना।
0: ठीक है, चलो गाने बजा रहे हैं फिर आ रहे हैं।

0: एक बार फिर से स्वागत है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज पे, जो है आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सही कहा ना आनंद?
1: बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल सही कहते हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
0: और आज का जो शो है ना, सिर्फ फिल्म देखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो फिल्म खत्म होने के बाद ये पूछते हैं, अरे भाई इसका पार्ट टू कब आएगा। ऐसा हुआ है कोई मूवी तुम्हें?
1: मेरे साथ तो अभी रिसेंटली हुआ है। मतलब मैं अगेन रिपीट करूंगा, मैं अभी जब हनुमान अंश देखकर आया, वो मैंने पहली बार कोई मूवी थी, वो भली स्पिरिचुअल मूवी है, बट मैंने इतने ध्यान से देखी, वो मुझे कॉन्सेप्ट उसकी एक ही चीज मुझे बहुत अच्छे से दिमाग में आई, एंड आई डोंट नो क्यों मैं इतना कनेक्टिविटी फील कर पाया उस मूवी से। और अब ऐसा लग रहा है कि इसका सेकंड चैप्टर बना डालो। मतलब जिन्होंने भी ये मूवी बनाई है, क्या नाम है, चतुर्वेदी जी, विशाल चतुर्वेदी जी, आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज इसका पार्ट टू जल्दी ले आओ यार।
0: ले आएंगे। मगर मैं अभी जो बात चल रही थी वो ये चल रही थी कि
1: इसका पार्ट टू कब आएगा ना, ऐसे कुछ आप पूछ रहे हैं।
0: हाँ, मैं नहीं, मैं, अरे आनंद तुम समझे नहीं, मैं ये कह रहा था, मैं उन लोगों की बात कर रहा था जो फिल्म देखने के बाद ये कहते हैं कि इसका पार्ट टू कब आएगा।
1: तो मैं कुछ उसी में हूँ।
0: हाँ, मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिल्म में पहले ही पूछ लेते हैं शुरू होने से पहले कि भाई इसका विलन कौन है, उसका हीरो कौन है,
1: पूरी स्टोरी पहले जानने के लिए उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है। वो मैं भी करता हूँ, मतलब कोई मूवी स्टार्ट नहीं हो, मैं उसका पहली पंडित बन जाता हूँ, एस्ट्रोलॉजर, इसमें ये हो सकता है, ये नहीं हुआ होगा, अच्छा इसमें ये कब होगा। बहुत से लोग मुझे कहते हैं बेटा चुप होके बैठ जाए, देखने आया ना भी पता लगेगा, इतना दादा क्यों बन रहा है अभी से, इसने पैसा लगाया करोड़ों का, पहले देख तो सही होगा क्या, तो चुप होके बैठ, देख और देखने दे, तो हो जाता है कभी कभी। एनीवेज, आगे क्या कहना चाह रहे थे अखिल जी आप?
0: मैं ये कहना चाह रहा था कि एक मूवी, एक गाना है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है, जब सुनाओगे वो कौन सा गाना?
1: मैं गाना सुनाऊंगा नहीं, मैं उसको सिर्फ बजाऊंगा। सो ये आपका टास्क है, आप उसे पहचान लो। ये
0: हाँ, ये सब पहचान लेंगे यार, एकदम हमारे श्रोता जो है बहुत ही तेज है।
1: बताओ।
0: ये
1: अब हम ये हम नहीं बताएंगे, ये हमारे लिसनर के ऊपर छोड़ दो। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं, पाजी हो जाओ। लोगों ने गाड़ियां रोक ली अपनी, चलाते चलाते, अरे यार ये तो वही है। दिमाग में आ रही है, बट समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो है।
0: कभी कभी गाड़ी निकल जाने के बाद याद आता है। अच्छा, यार इस
1: चलो एक और एक इसका एक और क्लू देता हूँ, दिस इज योर हिंट। ये किसकी आवाज है जरा बताओ?
0: मिक्का पाजी की।
1: क्या बात है यार, सलमान खान जी पे मिक्का पाजी भी इतने बढ़िया जचेंगे, कभी मैंने सोचा नहीं था यार। खैर एनीवेज, आपको अगर समझ में आए कौन सी फिल्म है तो आज हम इसी की बात

0: ये नाम लौट के आएंगे फिर बताएंगे, अभी फिलहाल ये गाना तो नहीं, कोई और से गाना आपके लिए लगा रहे हैं, ये सुनो और हम वापस आ रहे हैं, ठीक है अखिल जी?
1: बिल्कुल।
0: चलो जी, आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
1: बजाते रहो
0: गुनगुनाते रहो।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस टू, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद,

0: यार ये जो गाने अभी आपने सुने ना, ये तो वो गाने थे जिनको सुन के हम भी कभी कभी खुश हो जाते हैं, और जब ऐसे गाने बहुत टाइम के बाद सुनते हैं तो मजा आ जाता है। एनीवे अखिल भाई, आप क्या कहना चाहोगे? आज मूवी का पंचनामा आप कर रहे हो, ऑफ कोर्स
1: मूवी का पंचनामा क्या, लोगों ने अब तक तो गेस कर ही लिया है कि
0: आई डोंट नो, बहुत लोग ऐसे हैं जो गेस नहीं कर रहे होंगे, तो हम बता ही देते हैं यार उन्हें आज हम कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं। आजकल जिम नहीं जा रहा हूं तो बॉडी नहीं बन पा रही है, गार्ड मेरे आसपास कोई होता नहीं है, तो
1: अच्छा अब तो तुमने बता ही दिया कि बॉडी गार्ड की बात चल रही थी। मगर आनंद एक बार मतलब मैंने देखा था तुम्हारी एक रील में कि तुम चल रहे हो, तुम्हारे पीछे दो बॉडी गार्ड चल रहे हैं, उसकी कहानी क्या थी?
0: यार वो मैं एक इवेंट में गया था, और मुझे, मैं सच बताऊं तो गाइस, मुझे ना एक्चुअली ये चीजें बहुत कम अच्छी लगती है, आई डोंट नो क्यों, मैं उस पर्सनैलिटी में बिल्कुल नहीं आता हूं कि जिनको ये शो ऑफ करना है कि उनके साथ बॉडी गार्ड घूमे ये वो इन ऑल दैट। अगर आप फेमस हो तो आप एकदम स्टाइलिश, एकदम झुमरू बाबा बन के घूमो, आई एम नॉट झुमरू बाबा यू नो, या फिर आप बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बन ठन के चलो, ठीक है यार, अपना अपना सबका एक स्टाइल होता है, अपने अपना सबका एक यू नो रहने का तरीका होता है। किसी को सिंप्लिसिटी पसंद आती है, किसी को थोड़ा सा ओवर फैशन पसंद आता है कि हाँ लाइक जैसे भैया मतलब लगना चाहिए, कोई निकला तो फुल ऑन वाइब आए ऐसी वाली, तो मुझे लगता है वो वाइब आपके काम से आनी चाहिए। एग्जैक्टली तो अभी जो आपने पॉइंट पूछा कि आप बॉडी गार्ड आपके साथ हूँ, एक इवेंट में गया था और एक मैम ने मुझे बहुत पुश किया कि नहीं तू जा, मैंने कहा जब सब जा रहे तो मैं भी इस हवा का मजा ले लूं, एंड मैं इतनी तेज भागा बॉडी गार्ड भी मेरे साथ साथ भागने लगे। फिर बाद में किसी ने बताया भाई जब आप ऐसे जाते हो ना रैंप वॉक पे बॉडी गार्ड के तो स्लो मोशन में जाना होता है, भैया पहली बार था ना, मैं उनको कहा सर पहली बार था ना, बहुत जोश आ गया इसलिए मैं तुरंत भाग गया तो मेरे को पता ही नहीं था, बट अभी सी वो कहते ना हर चीज आपको सिखाती है, तो बस अब आज हम बॉडीगार्ड की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बॉडीगार्ड जरूर देखूंगा, क्या पता इसमें मुझे कुछ आइडिया मिल जाए।
1: और इस बॉडीगार्ड मूवी की खास बात ये बताऊं कि हाँ। ये जो मूवी है ना ये डब मूवी है मलयालम फिल्म की,
0: मतलब किसी और के ऊपर सीक्वल बना है इसका।
1: हाँ, मतलब मलयालम फिल्म में पहले भी मूवी आ चुकी थी,
0: ऑल राइट,
1: उसके बाद उसका सीक्वेंस उसके ऊपर देख के बनाया।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। आपने कितनी बार देखी है ये मूवी?
1: ये मैंने देखी है डेढ़ बार, एक बार पूरी देखी और दूसरी बार जब मैं देख रहा था तो आधी में से ही उठ गया था किसी काम की वजह से।
0: ओके, वेरी नाइस। इसमें जो स्टार कास्ट है बहुत अच्छी है, करीना कपूर, सलमान खान, बाकी के लोग मुझे नहीं पता है गाइज, मैं इन दो चेहरे को जानता हूँ, और इनका गाना एक बहुत पॉपुलर था जो हम सभी का बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत रोमांटिक नंबर है, थोड़ी देर में बजाएंगे। बताइए आप कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक कितने गए?
1: मैं बस यही कह रहा था, चलते चलते ये पूछना चाह रहा था, अगर तुम बॉडीगार्ड रखते हो तो तुम उन्हें सैलरी क्या दोगे?
0: अगर मैं बॉडीगार्ड रखूंगा तो उन्हें सैलरी क्या दूंगा? मैं अगर रखूंगा ही नहीं, पहली बात तो खुद की इतनी बॉडी बना लूंगा कि सब मेरे को अपने यहाँ पे हायर करें।
1: मैं तो सोचा था तुम ये ना कह दो कहीं कि मैं अपनी सारी सैलरी उन्हें दे दूंगा।
0: हाँ भाई अभी इतना मेरे बजट से बाहर है, आई होप ऐसा हो जाए तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, और फिलहाल मेरी तरफ से गाना ये क्या था यार,
1: ये तेरी मेरी के
0: बाद अच्छा वो हम दोनों की बात करके चली गई है शायद, चलिए कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ।

0: बहुत अच्छा आनंदमय गाना है, लेकिन तेरी मेरी दो लफ्जों में बयान ना हो पाए, समझ नहीं आया।
1: ये एक्चुअली उसने दिल की बात बिल्कुल सही सही बोल दी, उसने साफ साफ बोल दिया भाई साहब, दो बातों में तो तेरी मेरी कहानी हो ही नहीं सकती भैया।
0: क्या बात है, चलो
1: टाइम लगेगा।
0: चलो एक काम करते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, बढ़िया सा गाना बजाते हैं, फिर लौट कर आते हैं।

0: भाई ये गाने सुन के सच में मजा आ रहा है। अखिल भाई के साथ चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, पता नहीं क्या क्या लेकर आए हुए हैं। पूरी इन्होंने मेरी ये आगे की टेबल भर दी। इतना खाना तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, मतलब वो भी जंक फूड वाला। तो वैसे खाना तो नहीं खा,
1: कभी
0: लेकिन
1: कभी चीट डे कहते हैं ना, उसे चीट डे हो जाना चाहिए कभी
0: अपने साथ,
1: कुछ
0: है ना, दुनिया के साथ आप इंसाफी की बात करो, लेकिन खुद के साथ बेईमानी कभी कभी जरूरी है। किसी को पता नहीं है, जूते पड़ेंगे, जूते बता रहा हूँ आपको, इसलिए मुद्दे की बात पे आते हैं। एनीवे, वेलकम बैक है, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, आनंद और अखिल के साथ बातें वही हो रही हैं जो आपका दिल चाह रहा है, फिल्मी फिल्मी वाली। तो भैया आप कह रहे थे बॉडीगार्ड मूवी के बारे में।
1: मैं बस ये कह था, अभी तो हमने खूब सारी बातें करी हैं बॉडीगार्ड की,
0: ऑफकोर्स यार जरूरी है।
1: तो बॉर्डर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, अगर आनंद तुम्हें किसी का बॉडीगार्ड बनाना का मौका मिले, किसी भी हीरो का, तो तुम कौन से हीरो का बॉडीगार्ड बनना चाहोगे?
0: शाहरुख खान का बन जाऊंगा, मुझे दुबई जाने का बहुत मन है, तो एटलीस्ट उसका बॉडीगार्ड बनके मैं यूं ही तो पहुंच जाऊंगा। और दूसरी बात, वैसे मुझे किसी हीरो का बॉडीगार्ड क्यों ही बनना है, मैं तो कटरीना कैफ
1: हीरोइन का बॉडीगार्ड बनना है तुम्हें।
0: वैसे कटरीना कैफ के तो ऑलरेडी विक्की से है ही बात, नहीं तो मैं उसका कृति सेनन का बन जाऊंगा
1: क्या
0: बॉडीगार्ड। पूरी बात पूछा करो यार, क्या क्या मतलब क्या होता है यार।
1: मैंने कहा यार क्या पता तुम सोच रहे हो रिश्ता विश्ता आ गया हो तुम्हारे लिए।
0: अरे यार जब आएगा तो मैं सबको बता दूंगा यार, मैं बहुत ही सच्चे और खुले दिल का इंसान हूँ।
1: तो बिल्कुल, और जब शाहरुख खान की तुमने बात ही करी है ना, मुझे शाहरुख खान की
0: समझदार हो आप, इसलिए मैंने शॉर्टलिस्ट किया ये बंदा। हाँ बताओ बताओ बताओ।
1: मुझे शाहरुख खान साहब की एक मूवी तुम्हें याद है, तुमने देखी परदेश?
0: परदेश, अच्छा हाँ देखी है
1: भाई। अभी उसको ना मतलब 1997 की फिल्म जो सुभाष घई जी ने डायरेक्ट की,
0: सुभाष घई की फिल्मों की तो मैं क्या बात करूँ। और जो तुम मूवी की बात कर रहे हो ना यार, ये मूवी तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। और इसकी जो स्टोरी है, ये फॉरेन कंट्री में भी जाके इन्होंने शूट की है, बहुत अच्छी स्टोरी है, गंगा की कहानी है इसमें, महिमा चौधरी जो गंगा का रोल करती है, बहुत अच्छी मूवी है। और बहुत अच्छा इसका एक गाना भी है जो बहुत बड़ा फेवरेट है हमारा,
1: क्योंकि कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना भारत और अमेरिका के बीच में जो कल्चरल रेफरेंस है उसके ऊपर घूमता हुआ है।
0: एग्जैक्टली, और इसका ये गाना तो सबका फेवरेट होगा ऑफकोर्स। अगर आपने नहीं सुना है तो चलिए मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूँ आपके लिए। मैं कह रहा हूँ भाई से पीछे से बजा दो, नहीं तो पास कर लेगा।
2: तस्वीर से तो निकल के सामने आ,
0: अगर सच में तस्वीर से आ गई तो आप क्या बोलोगे इसे? महिमा चौधरी अगर निकल के बाहर आ गई
1: तो मुझे तो पैर छूने पड़ेंगे भाई साहब।
0: आप पैर छूओगे, मैं तो बोलूंगा मुझे गोदी में ले चलो।
2: मेरी महबूबा, मेरी महबूबा।
0: गाड़ी में बैठे लोग अपना क्रश याद कर रहे हैं और हमें गालियां पड़ी उनकी बीवियों से। बेटर यही है कि कोई और गाना बजा दो इज्जत के साथ। और इसमें क्या चीज है जो आपको अच्छी लगी?
1: मुझे तो बस इसमें एक्चुअली जो जिस तरीके से डायरेक्शन सुभाष घई साहब ने किया था और किस तरीके से

0: भारतीय मूल के लोग जो हैं विदेश में अपनी बदलती जिंदगी और अपनी जड़ों से जो रिश्ते हैं, जो उनकी जुड़े हुए रिश्ते हैं, उसके ऊपर जो पर्सपेक्टिव शो हुआ था, जो बनाया था, वो मुझे सबसे
1: अच्छा मुझे जो एक चीज पर्सनली लगती है यार अखिल जी, कि जो सुभाष घई की मूवी हो या और भी जो पहले के लोग मूवी बनाते थे, उनकी मूवी के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। चाहे करण जौहर की बात करो या सुभाष घई की बात करो, उनकी फिल्मों में मतलब कुछ मैसेज भी होता था, लाजमी लेसन जिसे कहते हैं ना, कुछ लेसन देना। अब इसमें देशभक्ति का भी गाना था, आपको याद है?
0: हाँ,
1: कौन सा गाना था? ये राइट, आई लव माई इंडिया कुछ गाना था।
0: हाँ,
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया।
0: उदित नारायण के बेटे की उसमें
1: आवाज थी, आदित्य नारायण।
0: आदित्य नारायण का उन्होंने एक्ट भी किया है इस मूवी में।
1: अच्छा, छोटे से बच्चे का रोल करता है।
0: और एक पता, इस मूवी से मुझे एकदम बात याद आई, एक गाना था जो सोनू निगम साहब ने था, ये दिल
1: मैं वो ढूंढ रहा हूँ,
0: उस गाने निकालता हूँ। यह आनंद ये थी,
1: निकाल रहा हूँ मैं,
0: कि वो गाना शाहरुख खान ने एयरपोर्ट मतलब जहाँ वो स्टे कर रहे थे, जिस होटल में, उस होटल से ट्रेवल करते हुए, मतलब उस होटल से ट्रेवल करते हुए एयरपोर्ट तक के बीच में शूट किया है पूरा गाना। मतलब
1: ये कहाँ पर शूट हुआ था ये
0: और
1: गाना?
0: उसी दिन उनकी फ्लाइट थी वापस इंडिया आने की।
1: ये बात यही है ना,
0: बिल्कुल सही,
1: बहुत एनर्जेटिक गाना है यार। चलो हम भी डांस कर रहे हैं।

0: होगा ना, गाड़ी छोड़ के भाग जाएंगे।
1: अरे यार चलो गाना सुन लेते हैं। अब यार जब ये गाना हमने सुन ही लिया है तो क्यों ना अखिल भाई इसको पूरा ही सुनवा दे अपने लिसनर को।
0: हाँ यार ये मतलब मजा आ जाएगा।
1: तो आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मैं और अखिल भाई वापस आ रहे हैं इस गाने के बाद, जल्दी से आपको मिलेंगे। आप सुनते रहिए ऐसे ही
0: FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़,
1: रेडियो बजाते रहो
0: गुनगुनाते रहो।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र ₹100 में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: सच में यार, ये गाने सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं फाइनली अब ऐसे मूड में हूँ कि बस जल्दी से मुझे गेट खोल के बाहर निकाल दो, ऑन ईयर से ऑफ ईयर कर दो अखिल भाई। ऐसा लग रहा है कि बस जाके कुछ जल्दी से खा लूँ यार, क्योंकि जो तुमने मंगाया वो मैंने खाया नहीं है।
1: क्यों नहीं
0: खाया यार?
1: मतलब ये चिप्स भी खा सकते हैं?
0: नहीं, चिप्स यार वो उसमें मसाला ज्यादा है यार, तो आजकल डाइटिंग करने का मूड है वैसे भी।
1: मसाले से मुझे याद आया, पिक्चर का भी ट्रेलर आया, उसका भी खास मसाला भाई।
0: जोन सी फिल्म की बात कर रहे हो तुम?
1: मैं बात कर रहा हूँ दृश्यम की।
0: अच्छा, वो आ गई है या आने वाली है आपको?
1: अभी आने वाली है, तीसरा पार्ट आने वाला है उसका।
0: मैंने सुनी है यार वैसे।
1: दृश्यम अजय देवगन की ना अल्टीमेट भाई साहब। अच्छा। 2 अक्टूबर, अगर तुम्हें कुछ याद हो ना हो, 2 अक्टूबर जरूर तुम्हें जिंदगी में याद हो जाएगा।
0: गांधी जी की वो थी,
1: गांधी जी के अलावा अगर याद है ना, गांधी जी जयंती के अलावा
0: और क्या था? तो
1: वो 2 अक्टूबर को अजय देवगन बताएंगे ना क्या था।
0: अच्छा, अजय की कुछ
1: ये मूवी देख के आना एक बार।
0: अच्छा अच्छा,
1: अभी तक देखी नहीं तुमने?
0: मैंने एक भी सीक्वल नहीं देखा ना। आज ट्रेलर देखता हूँ।
1: तुम्हें ना कहाँ थे आनंद, तुम कहाँ?
0: अवेलेबल है?
1: हाँ, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इसकी भी खास बात ये है कि ये भी मूल रूप से मलयालम फिल्म की ही डब है, मतलब उसके ऊपर ही एक उसकी कॉपी है, ये उसका रीमेक कह सकते हैं एक तरीके से।
0: तो अखिल भाई एक बात बताओ, इसमें क्या ऐसा तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने वाला है, इस वाले में क्या लग रहा है कि
1: इस वाले में अगर जैसे तुमने मतलब अगर तुमने देखी नहीं है तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि फर्स्ट, हाँ इन शॉर्ट, कि ये एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर है पूरी मूवी।
0: ओके।
1: और वो पहली मूवी में वो पहले मर्डर मिस्ट्री से बचता है, पता ही नहीं चलता है कि वो जो मर्डर किया है उसकी बॉडी कहाँ छुपा के रखी है। अच्छा, सेकेंड में क्या है, सेकेंड भी उसी मर्डर को कंटिन्यू करते हुए, उसी मर्डर मिस्ट्री को कंटिन्यू करते हुए उसमें भी जो कूप्स, जो भी उसमें घटनाएं घटी हैं वो भी अभी तक वो पकड़ नहीं पाए। मतलब सब ने जितने भी जो कॉप्स थे उसको मूवी में कॉप्स, वो अभी तक उस चीज को पता नहीं कर पाए। और थर्ड पार्ट अब क्या है, जो फर्स्ट और सेकंड में कॉप्स नहीं ढूंढ पाए और जितने सारे लिंक्स उन्होंने बनाए, तो शायद मुझे जहां तक लग रहा है उस थर्ड पार्ट में वही एक फेज होगा कि भाई अब तो ये लड़का पकड़ में आएगा।
0: अच्छा, ओके।
1: अब तो ये हीरो पकड़ में आएगा। मगर अजय देवगन का ये ना चेहरे से इतने मासूम है कि पता ही नहीं चलता उन्होंने इतना किस तरीके से मास्टरी जो है अपने पीछे छुपा रखी, इतनी बड़ी मास्टरी कि आखिर सच है क्या। और ये ऑडियंस के लिए भी अभी तक एक वो है, क्वेश्चन मार्क है।
0: ओके, क्या बात है। लेकिन मुझे 2 अक्टूबर से सिर्फ ये याद आता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं को सिर्फ दो अक्टूबर आते ही गांधी जी, रघुपति राव।

0: राजा राघव राजा राम, वो स्कूल में कराते थे ना अपन के। ये कौन सी फिल्म का सीक्वल है?
1: ये कौन सी फिल्म का सीक्वल नहीं है, मगर ये मेरे ख्याल से काजोल और शाहरुख है इस सीन में, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा।
0: मैं कुछ नहीं पता भैया, हम यही कर लेते हैं,
1: कुछ कुछ होता होगा, कुछ कुछ होता।
0: हाँ चलो, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो अब भैया चलने का समय हो गया, रघुपति राघव राजा राम, हमें इजाजत दीजिए प्रभु महान, हम निकलने का करते हैं यहाँ से काम। तो अखिल भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
1: बस बस जाने से पहले कुछ सुनाना चाहूंगा
0: प्लीज, कोई मतलब ऐसी शायरी जिसे सुन के मैं शर्मिंदा हो जाऊं, ऐसी वाली सुना दो और मैं यहाँ से भाग जाऊं, पानी पानी हो के। सो प्लीज,
1: पानी की बोतल तो है तुम्हारे पास,
0: गो फॉर इट अखिल भाई प्लीज।
1: किससे बहुत है फिल्मों,
0: हाँ
1: मुझे हंसी आ रही है आज बहुत। किससे बहुत है फिल्मों के कहानी बहुत है, हर किरदार की अपनी निशानी बहुत है, पर्दे पर जो दिखे जरूरी नहीं सच वही हो, क्योंकि जिंदगी खुद एक फिल्म है और कहानी बहुत है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया हो गई एंड। क्या बात
1: तो
0: है?
1: दोस्तों आप इसी तरीके से हमसे मिलते रहें, हमें सुनते रहें और सुनने के बाद मुस्कुराते भी रहें।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अखिल भाई की ये शायरी सुन के वाकई में मुझे मजा आ गया है, और सच बताऊं इनकी शायरी सुन के मेरे अंदर से आवाज आ रही थी।

0: करिए ना, अभी तुमने ना स्टूडियो से बाहर निकलो सारी ईश्वर
1: तो आप नीले ढाबे पे चाय पीने गए थे, नीलकंठ ढाबा। आज कौन से ढाबे पे जा रहे हो?
0: हाँ जी, मैं उसी ढाबे पे जाऊंगा। मैं कल
1: तो ऐसा लगता है गाइस वो इन्हीं का ढाबा है, झूठ बोल के अपना प्रचार करना चाहते। प्रचार से मुझे याद आया, वैसे आजकल आप भी अपना प्रचार करा सकते हो हमारे एफएम पे, है ना भाई? आजकल फेस्टिव सीजन है,
0: लोकल को वोकल हम करने को तैयार है। और इसके लिए आप संपर्क करें 9971717969। एक बार फिर से सुन लीजिए इसके बीच में,
1: बताओ
0: 9971717963 पे।
1: चलो
0: आप डीएम करें और आपको डिटेल्स भेज दीजिए।
1: चलो आप इनको फोन भी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी ये नंबर इनका है या किनका, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो। आप फोन करके परेशान कर दो या ना करो, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। फिलहाल सिर्फ काम से कॉल कर दो यार, काम के लिए कॉल करो। और एडवर्टीजमेंट के लिए हम यहाँ बैठे हैं। कोई भी आपको कभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आपको लग रहा है कस्टमर नहीं आ रहा है, या जो भी आपको लग रहा है बिजनेस ग्रो करना है, नया नया खुला है, तो रेडियो है भाई।
0: ज्यादा टेंशन नहीं लेने का साहब, जाइए सिर्फ चाप खाइए, क्योंकि ग्रिल्स तंदूरी जंक्शन का लोगो ही ये है, उनकी टैगलाइन ही यही है, आइए आप खाइए चाप।
1: चलिए मैं भजन के साथ जा रहा हूँ गाइस, आपको बस भगवान अच्छी नींद दे आज रात। बाय।

क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? आप दर्द को नजरअंदाज ना करें। इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट। रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रुपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत, अभी कॉल करें 9412504190। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: ジョーカ
1: ー。शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।